फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 14.7 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 28वीं तिथि, तदनुसार 18 जून 2026। इस समय सुबह के 5:57 हुए हैं। हमारा आज का प्रसारण अब आरंभ होता है।

फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 14.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। 6 बजने को हैं। कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित होगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवा टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। इससे पहले फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान श्री मोदी ने विभिन्न सत्रों में हिस्सा लिया तथा कई विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सम्मेलन में वैश्विक शासन, आर्थिक विकास और ग्लोबल साउथ के देशों से जुड़े मुद्दों पर भारत का पक्ष रखा गया। उन्होंने विकासशील देशों की आर्थिक मजबूती और वैश्विक संपर्क बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्स, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फोन डेर लेयन, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी सहित कई नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
1: मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सीफेरर दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सीफेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
0: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CETA इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। इसके साथ ही दोगुने अंशदान से संबंधित सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो जाएगा। इससे भारत को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर तत्काल शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। वस्त्र, चमड़ा, समुद्री उत्पाद, इंजीनियरिंग और प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र को विशेष फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये समझौता लागू होने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और ओडिशा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी। झारखंड से राज्यसभा की 2 सीटों के लिए आज मतदान होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वैद्यनाथ राम, कांग्रेस उम्मीदवार प्रणब झा और निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी चुनाव लड़ रहे हैं। झारखंड विधानसभा में मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। मतगणना शाम 5 बजे शुरू होगी और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 95 रन से हरा दिया। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में अब भारत का मैच 21 जून को दक्षिण अफ्रीका से होगा। फीफा विश्व कप में इंग्लैंड ने अपने पहले मैच में क्रोएशिया को 4-2 से हरा दिया। कप्तान हैरी केन ने 2 गोल किए। ग्रुप के में पुर्तगाल और कांगो का मैच 1-1 से ड्रॉ रहा। इस मैच के साथ क्रिस्टियानो रोनाल्डो विश्व कप खेलने वाले सबसे उम्रदराज आउटफील्ड खिलाड़ी बन गए। अर्जेंटीना ने अल्जीरिया को 3-0 से हराया। लियोनेल मेसी ने हैट्रिक लगाकर विश्व कप में 16 गोल पूरे किए और मिरोस्लाव क्लोजे के कीर्तिमान बराबरी की। ऑस्ट्रिया ने जॉर्डन को 3-1 और नॉर्वे ने इराक को 4-1 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 107.7 MHz पर यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। 6:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए चिंतन।
3: ज़ैन फकीर लिंची से किसी ने पूछा, तुम्हारी साधना क्या है? उसने कहा, भूख लगती है तो खाना खा लेता हूँ, और जब प्यास लगती है तो पानी पी लेता हूँ, और जब नींद आती है तो सो जाता हूँ। तो पूछ

0: बेचने वाले ने कहा, लेकिन ये तो सभी साधारण लोग करते हैं। इस पर लिंची ने जवाब दिया, मैं कौन सा असाधारण हूं, मैं साधारण से भी साधारण हूं। उस आदमी ने फिर पूछा, फिर फायदा क्या है? लिंची ने कहा, फायदा बहुत है, संतुष्ट हूं, और क्या फायदा। आज अपने सामने हर एक आदमी का चेहरा हम रखें तो कुछ उल्टी ही तस्वीर नजर आती है, कोई भी हमें संतुष्ट नजर नहीं आता है। एक आपाधापी है सबके पास, कोई किसी बात के लिए भाग रहा है तो कोई किसी बात के लिए। औसत आदमी के पास चाहे जो कुछ भी हो पर संतोष जरा नहीं है। आदमी ने अपने हिस्से में जो भी पाया है उसे वो कम लगता है। हर आदमी ज्यादा से ज्यादा पाना चाहता है, ज्यादा से ज्यादा जोड़ना चाहता है, इसलिए सार्वजनिक जीवन में बेचैनी भी बहुत ज्यादा है। आदमी ने अपने आसपास ऐसे हालात पैदा कर रखे हैं कि उसे जरा भी शांति नहीं मिलती। कभी हम विचार करें तो लगता है कि लालसा ने, चीजों के प्रति मोह ने और एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ ने सबको परेशान कर रखा है। कोई भी आदमी अपनी मौजूदा स्थिति से संतुष्ट नहीं है। वो जो है या जिस हाल में है, कम से कम उस हाल से वो संतुष्ट नहीं है। वो किसी और की तरह की स्थिति और जगह पाना चाहता है। ये चाह उसके भीतर लगातार बनी रहती है और यही कारण है कि वो न तो आज संतुष्ट दिखता है और न ही उसके भीतर आगे भी संतुष्टि आएगी, ऐसा दिखाई देता है। सुनी हुई बात है, अफ्रीका के एक गांव में यूनेस्को की तरफ से नल लगाए गए, पानी के नल लगाए गए। उस गांव में अब तक एक कुआं था, लेकिन कुछ ही दिन बाद गांव के बूढ़ों ने आकर खबर दी कि हम क्षमा चाहते हैं, ये पाइपलाइन अलग कर दी जाए क्योंकि हमारे गांव की सारी जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई है। वे लोग बहुत हैरान हुए। व्यवस्था करने वाले लोगों ने कहा कि ये क्या पागलपन की बात कर रहे हो। जवाब में गांव के बूढ़ों ने कहा, इस पाइप की वजह से गांव की पुरानी और मौलिक चीजें चली गई हैं, अपनापन चला गया है। कुआं तो हमारा प्राण था, वहां हम मिलते थे, वहीं सुबह हमारी स्त्रियां मिलती थीं, सांझ हम वहां बैठकर गपशप करते थे। कुआं तो बर्बाद हो गया, वहां अब कोई जाने वाला नहीं रहा। अब तो हर एक घर में पानी पहुंच गया तो वहां कोई आता ही नहीं, तो पूरी कम्युनिटी फीलिंग खत्म हो गई, यानी हमारा जो एक समूह था, हम जो एक साथ जीते थे, वो खत्म ही हो गया। एक एक आदमी अलग अलग हो गया, इसलिए हम ये जो पाइप है उसे बिल्कुल नहीं चाहते हैं। नए और पुराने तरीके के जीवन से हम अच्छी तरह वाकिफ हैं। सुविधाएं जिस गति से बढ़ रही हैं, आदमी की जिंदगी उसी अनुपात में सिकुड़ती जा रही है। आदमी बहुत ज्यादा आत्म केंद्रित होता चला जा रहा है। सिर्फ अपना परिवार ही एकमात्र धुरी रह गई है। सामाजिक जीवन में पहले जैसी जीवंतता नहीं है। सालों पहले किसी सामाजिक आयोजन में, संयुक्त परिवार के आयोजन में लोग आत्मीयता के साथ जुटते थे, पर आज ऐसे आयोजन सिर्फ औपचारिक हो गए हैं। अभिव्यक्ति की कमी से दर्द बढ़ रहा है, पीड़ा बढ़ रही है और उसी अनुपात से संतुष्टि घट रही है। भगवान बुद्ध ने एक प्रसंग में कहा, तुम चलो, कितनी ही भूल करो चिंता नहीं है, चलें इतना ही काफी है। हम सोचें कि हमें संतुष्टि क्यों नहीं मिलती, क्योंकि हम संतुष्ट होना नहीं चाहते हैं। हम अपनी पहुंच से कहीं ज्यादा चीजें पाना चाहते हैं। अपने अच्छे विचार हमने खो दिए हैं। एक दूसरे से स्पर्धा ने हमारी संतुष्टि छीनी है। संतुष्टि तो तभी मिल सकती है कि जो हमारे पास है उसी का आनंद उठाएं। ये कठिन तो है, असंभव नहीं।
1: ये था आज का चिंतन। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है, FM 100.7 MHz पर। 6:10 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे अनूप जलोटा के गाए भजन। ये पारंपरिक भजन शांक नील ने संगीतबद्ध किए हैं।

0: अब एफएम रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे तीन विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल तीन विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम एफएम रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, यह योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र छोटे अतरमुड़ा रायगढ़।
1: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।

0: मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदर्शन।
1: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
2: अरे गोपाल जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
3: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
2: अरे पगले खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
3: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
2: गोपाल आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
3: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
4: अपनी दुकान व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: संदेश से पहले अनूप जलोटा के स्वर में पारंपरिक भजन आप सुन रहे थे। संगीतकार थे शांक नील। अब भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है FM 107.7 MHz पर। 6:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम कृषि चर्चा। नवीन बाग लगाने की तैयारी विषय पर वरिष्ठ वैज्ञानिक व प्रमुख उद्यानिकी डॉक्टर BS राजपूत से ये वार्ता सुनिए।
2: किसान भाइयों नमस्कार। जैसा कि अभी जो है मई और जून का जो है समय चल रहा है और इस समय जो है किसान भाई उद्यान की फसलों के लिए जो नए बगीचे लगाने चाहते हैं उसकी तैयारी का उपयुक्त समय है। तो जो भी किसान भाई जो है नए बगीचे लगाने चाहते हैं वो इस समय जो तैयारियां हैं वो किस प्रकार से करना है, तो उसमें सबसे पहले जो है जो स्थल का चुनाव आता है कि बगीचे के लिए जो है किस प्रकार की जो है खेत का चयन करें। जब खेत का चयन हो जाता है उसके बाद जो है बात आती है कि जो मिट्टी का नमूना जो है मिट्टी का सैंपल। जब अपन बात करते हैं बगीचे वाल लगाने के लिए जो है मिट्टी का सैंपल कम से कम 3 फीट गहराई से लिया जाता है, क्योंकि जो है पेड़ पौधे हैं उनकी जड़ें 4 से 5 फीट गहराई तक जाती हैं। तो इसके लिए जब मिट्टी का नमूना लेना है अपने को 1 एकड़ जमीन से 6 जगह से मिट्टी के नमूने लेने हैं, 3 फीट गहराई तक जो है खोदना है और खोदने के बाद उसमें से एक जो गड्ढा है उसमें से आधा जो है किलो मिट्टी प्रति गड्ढे के हिसाब से मिट्टी लेना है अपने को और पूरे जो है इस मिट्टी को ऐसे एक नीचे से ही नहीं लेना, ऊपर से कुरचते हुए नीचे 3 फीट तक पूरी मिट्टी लेना है जो है, जिससे जो है जो लेयर है जो मिट्टी की सभी लेयर उसमें जो है जो परत है वो उसकी मिट्टी आए और उस मिट्टी को फिर इकट्ठा करना। इकट्ठा करने के बाद जो है उसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद टोटल जो है ऐसे 3 किलो मिट्टी अगर अपन ने ली है उसमें से आधा किलो मिट्टी को जो है रखेंगे, बाकी मिट्टी को जो है वहीं पे जो है हटा देते हैं, डाल देते हैं जो है। तो इस प्रकार से नमूना लेके और इस नमूने को फिर जो है अपन एक जो कपड़े की थैली है उसमें जो है रख के उसमें किसान की जानकारी, कृषक का नाम है, उसका मोबाइल नंबर है और इसी के साथ साथ खेत की जो जानकारी है, कौन सा खेत है जो है, इससे पहले कौन सी उसमें फसल लगाई गई है और आने वाले समय में अपन कौन सा बगीचा उसमें लगाना चाहते हैं, ये संपूर्ण जानकारी जो है अपने को जो है उस थैली में जो है मिट्टी के सैंपल के नमूने के साथ डाल देना है और नमूना फिर आप जहां चाहें वहां पे जो है उसको मिट्टी परीक्षण करा सकते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र में भी करा सकते हैं आप, मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला है जो है कृषि विभाग की उसमें भी करा सकते हैं, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में भी करा सकते हैं, जहां पे आप कराना चाहें वहां करा सकते। इसके बाद जो है बात आती है कि जो है अपने को गड्ढे जो है खोदना है, उसका लेआउट जो है बनवाना है। लेआउट किसी भी बगीचे का जो है लेआउट है वो जो है प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि बगीचा अपन जो है एक बार लगाते हैं और वो 50 साल 60 साल 30 साल लंबा समय तक चलता है, तो इसकी प्लानिंग जो है किसान भाइयों की बहुत अच्छी जो है कृषि एक्सपर्ट के साथ बैठकर ही जो है उनको बनाना चाहिए, उन्हीं से जो है हेल्प लेना चाहिए। तो अपन अगर सपोज आम का बगीचा लगाना चाहते हैं तो आम के बगीचे को उसमें जो है दो प्रकार की जो है किस्में हैं, जो है एक सघन जो है किस्में हैं, जो है जो डार्क किस्म बोलते हैं जिसको, जैसे आम्रपाली की अगर बात करेंगे तो उसको अपन जो है ऐसे 2.5 से 5 मीटर की दूरी पर लगा सकते हैं जो, तो इसमें अपन ऐसे 4 मीटर है 5 मीटर है इस हिसाब से जो है गड्ढे से गड्ढे की दूरी ले सकते हैं जो है, और लाइन की दूरी। अगर दूसरी वैरायटी लगाना चाहते हैं, अगर आपका जो है लंगड़ा है या और दूसरी वैरायटी है, तो 5 से 7 मीटर की जो है दूरी लेनी पड़ेगी इसमें। तो इस प्रकार से अपन जो है अगर और कोई जो है अमरूद की अगर अपन पौधे लगाना चाहते हैं तो उसमें 6 से 7 मीटर की दूरी जो है लेना है। इस दूरी पे अपने को जो है 3 फिट गहरा और 2 फिट जो है चौड़ा गड्ढा अपने को खोदना है, और उस वो मिट्टी को पूरी को अपन संपूर्ण मिट्टी को बाहर निकाल लेना। आम की बात करें तो अपने रायगढ़ जो है डिस्ट्रिक्ट के हिसाब जिले के हिसाब से जो है ऐसे अपने यहाँ लंगड़ा है जो है, आम्रपाली है, मल्लिका है जो है, दशहरी है, इस प्रकार की जो किस्में हैं जो है वो अपन लगा सकते हैं।
1: नवीन बाग लगाने की तैयारी विषय पर डॉक्टर B.S. राजपूत से अभी आप वार्ता सुन रहे थे। ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 MHz पर। 6:35 हुए हैं। समय है कार्यक्रम विवरण का। कार्यक्रम विवरण में हमारे आज के प्रसारण के शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा हम आपको बता दें। कार्यक्रम विवरण के ठीक बाद 6:40 पर रामचरितमानस भाग 46 का प्रसारण आप सुनेंगे। देशगान आप सुन सकेंगे 6:50 पर। 7:05 पर हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम एक ही फिल्म से के अंतर्गत गुलाम फिल्म के गीत। प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम झरोका का समय होता है 7:35 का। 7:45 पर आप सुनते हैं लोक संगीत का कार्यक्रम बाजे मांदर। छत्तीसगढ़ी गीतों का फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो संगवारी आप सुन सकेंगे 8:30 पर। 9 बजे से विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित होंगे। कार्यक्रम लोक संगीत हम लेकर आएंगे 10:10 पर। 10:30 पर आपकी पसंद के फिल्मी गीत प्रसारित किए जाएंगे कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। 11 बजे से शाम 5 बजे तक विविध भारती के कार्यक्रम आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से। इस बीच 11:55 और 9:55 पर आकाशवाणी रायपुर से प्रादेशिक समाचार का अनुप्रसारण आप सुनेंगे। शाम 5 बजे हमारे केंद्र से प्रसारित होता है प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ। गजलों का कार्यक्रम शामे गजल हम आपको सुनवाएंगे शाम 5:10 पर। 5:30 पर ग्रामीण महिलाएं अपना कार्यक्रम घर द्वार सुनेंगी। कार्यक्रम में आज के गोट का विषय है योग से रहें शारीरिक और मानसिक रूप से फिट। कम बर्बादी ज्यादा पोषण यही है सतत पाक कला का मिशन। चर्चा का है ये विषय और योजना अटल पेंशन योजना के बारे में आप जानेंगे। रांधबो कुटुबो के अंतर्गत रागी के व्यंजन इस विषय पर चर्चा आप सुन सकेंगे। फिल्म संगीत हम आपको सुनवाएंगे शाम 6:20, शाम 7 बजे और रात्रि 8:30 पर। शाम 7:20 पर किसान भाई अपना कार्यक्रम किसान वाणी सुनेंगे। कार्यक्रम में आज की बात का विषय है सब्जियों के प्रमुख कीट एवं व्याधियों का जैविक नियंत्रण अपनाएं। जहां सवाल वही समाधान, बस एक कॉल पर किसान कॉल सेंटर, यह विषय आज की नसीहत का। 19 शासकीय भर्ती परीक्षाएं पास कर अनोखा रिकॉर्ड बनाने वाली चारू पांडे से विशेष भेंट वार्ता आकाशवाणी रायपुर से प्रसारित की जाएगी रात्रि 8:15 पर। 9 बजे से 10 बजे

0: 9 बजे से विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित होंगे। सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विरासत थीम पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी रायपुर से आप सुनेंगे 9:25 पर। 10 बजे विविध संगीत हम आपको सुनवाएंगे और रात्रि 10:30 पर आप सुन सकेंगे अपने पसंद के फिल्मी गीत। कार्यक्रम होगा आपकी फरमाइश। कार्यक्रमों की रूपरेखा अभी आप सुन रहे थे।
1: श्रोताओं, आकाशवाणी रायगढ़ की ईमेल सेवा के माध्यम से अधिक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। आप भी हम तक अपने सुझाव और फरमाइश ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, अनुरोध, तरुणों की पसंद, पत्र मिला और लोक रंजनी के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप ईमेल भेजते हैं उसका नाम सब्जेक्ट फील्ड में लिखना आवश्यक है। कार्यक्रम के नाम के बिना ईमेल शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com shrotarayagarh यानी shrotarayagad@gmail.com।
0: ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है FM 107.7 MHz पर। 6:40 हुए हैं। प्रस्तुत है रामचरितमानस गान भाग 46। स्वर रविंद्र साठे का है और आकाशवाणी की इस प्रस्तुति के संगीत निर्देशक हैं सतीश भाटिया।

पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने श्री राम अवतार की कथा सुनाते हुए ब्रह्म के निर्गुण तथा सगुण रूपों की व्याख्या की। जो निर्गुण अर्थात अरूप, अव्यक्त और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेमवश सगुण हो जाता है। जिस प्रकार जल और ओले में कोई भेद नहीं, दोनों जल के ही रूप हैं, उसी प्रकार सगुण और निर्गुण भी तत्वतः एक ही हैं। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को समझ पाने में असमर्थ होता है, इसी कारण वो प्रकाश पुंज पुराण पुरुष श्री रामचंद्र पर एक मानव की भांति मोह के आवरण में लिपटे होने का आरोप लगाता है।

अभी रविंद्र साठे के स्वर में रामचरितमानस गान भाग 46 का प्रसारण हो रहा था। आकाशवाणी की प्रस्तुति के संगीत निर्देशक सतीश भाटिया। रामचरितमानस गान अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 14.7 मेगाहर्ट्ज पर। 6:50 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम देशगान। समूह स्वर में द्वारिका प्रसाद तिवारी का लिखा ये देशभक्ति गीत सुनिए।

समुस्वर के गाए द्वारिका प्रसाद तिवारी लिखित इस देशभक्ति गीत के साथ ही कार्यक्रम देशकान अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है FM 107.7 MHz पर। 6:55 होने को हैं। अब आप समाचारों का अनुप्रसारण सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। अथ वार्ताः। फ्रांस देशस्य यात्रावधौ स्वकीय प्रवासस्य चरमे सोपाने प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ह्यः रात्रौ पेरिस नगरं सम्प्राप्तवान्। पेरिस नगरे आगमन समये विश्रांति निलये एकत्रिताः भारतीय समुदायस्य सदस्याः उत्साहपूर्वकं तदीय भव्यं स्वागतम् अकुर्वन्। अद्य प्रधानमन्त्री प्रमुख विपणीनां मुख्य कार्यकारिभिः सह चर्चां करिष्यति। तदनन्तरं सः यूरोप महाद्वीपस्य प्रमुख प्रौद्योगिकी मञ्चे विवाटेक शिखर सम्मेलने भागं ग्रहीष्यति, तत्र च स्वसम्बोधनं प्रदास्यति। सायंकाले असौ एकस्मिन् सामुदायिक कार्यक्रमे भारतीय प्रवासिभिः सह संवादं विधास्यति। G7 देशैः वैश्विक स्थिरतायाः सुरक्षा सहयोगस्य अथ सीमापार संघटित अपराध निवारणस्य उद्देश्येन विभिन्नाः प्रमुखाः घोषणाः विहिताः। मुख्य वक्तव्ये नेतृभिः अमेरिका ईरान देशयोर्मध्ये संजातं संधि निश्चयम् अभिनन्दितम्। अन्य घोषणापत्रे G7 देशैः मादक द्रव्यस्य अवैध कार्यं निरोद्धुं संकल्पो विहितः। अस्मिन् अभियाने ब्राजील दक्षिण कोरिया देशौ अपि सहमतिं प्रदर्शितवन्तौ। फ्रांस देशस्य एवियन नगरे चलायमाने G7 शिखर सम्मेलने प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सर्वहितकारी सतत आर्थिक विकासः इत्याख्ये मुख्य विषये आयोजितायां महत्वपूर्ण कार्यगोष्ठ्यां भागं भजते। सत्रेऽस्मिन् G7 देशाः सहभागी राष्ट्राणि अन्ताराष्ट्रिय मुद्रा कोषस्य OECD इत्यस्य च प्रतिनिधयः उपस्थिताः सन्ति। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्यारभ्य मध्यप्रदेशस्य ओडिसायाः च पञ्चदिवसीयायां यात्रायाम् अस्ति। प्रथमदिवसे सा मध्यप्रदेशस्य बैतूल नगरे आध्यात्मिक जागृत्या जनजातीय समाजस्य सशक्तिकरण कार्यक्रमे भागं ग्रहीष्यति। द्वितीय दिवसे सा ओडिसायाः रायरंगपुरे चिकित्सा शिविरस्य ग्रामीण जल आपूर्ति परियोजनायाः च उद्घाटनं विधास्यति। तृतीय दिवसे राष्ट्रपतिः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह पहाड़पुरे कौशल केन्द्रस्य निरीक्षणं करिष्यति, सहैव रायरंगपुरे जनसभां च संबोधयिष्यति। चतुर्थ दिवसे सा जून मासस्य 21 दिनांके जबलपुरे अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसोत्सवे भागं ग्रहीष्यति, सहैव रानी दुर्गावती विश्वविद्यालयस्य दीक्षांत समारोहे अध्यक्षतां विधास्यति। यात्रायाः चरमे सोपाने सा क्यूनो राष्ट्रिय उद्याने सहरिया जनजातीय सदस्यैः चीता अन्वेषकैः च सह संवादं विधास्यति। संयुक्त राष्ट्र संघस्य खाद्य संस्थाभ्यां खाद्य एवं कृषि संघटनेन अथ विश्व खाद्य कार्यक्रमेण च विज्ञापितं यत् आगामिषु मासेषु युद्ध जलवायु परिवर्तन धन न्यूनता कारणात् विश्वस्य 13 प्रमुख क्षेत्रेषु बुभुक्षा संकटं अधिकं गभीरं भविष्यति। संयुक्त प्रतिवेदनस्य अनुसारं सम्प्रति जगति 66.2 कोटि जनाः तीव्र खाद्य सुरक्षया पीडिताः सन्ति। अस्यां सूच्यां सुडान, दक्षिण सुडान, यमन, फिलिस्तीन, नाइजीरिया, सोमालिया चेत्यादयः देशाः अत्यधिक संकटग्रस्ताः सन्ति। प्रतिवेदने चिन्ता प्रदर्शिता यत् 20-22 परं मानवीय सहायतायै प्राप्यमाणं धनं 60% न्यूनं जातम्। WFF संस्थायाः कार्यवाहक निदेशकः कार्ल स्काउ महोदयः अवोचत् यत् यदि शीघ्रं किमपि कार्यान्वयनं न क्रियते तर्हि कोटिशः जनाः दुर्भिक्षस्य गर्ते पतिष्यन्ति। हॉकी क्रीडायां नीदरलैंड देशस्य राइडरेम नगरे प्रचल्यमाणायाः FIH प्रो लीग स्पर्धा मालिकायाः द्वन्द्वे भारतीय पुरुष हॉकी दलेन जर्मनी दलं 3-1 इत्यांकान्तरालेन पराजितम्। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत करेंगे। इससे पहले फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान श्री मोदी ने विभिन्न सत्रों में हिस्सा लिया तथा कई विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सम्मेलन में वैश्विक शासन, आर्थिक विकास और ग्लोबल साउथ के देशों से जुड़े मुद्दों पर भारत का पक्ष रखा गया। उन्होंने विकासशील देशों की आर्थिक मजबूती और वैश्विक संपर्क बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर भी बल दिया।
2: मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
1: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं ने संतुलित आर्थिक विकास, महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला और बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण से जुड़ी तीन महत्वपूर्ण घोषणाएं अपनाई। बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल माहौल संबंधी घोषणा का भारत सहित ब्राजील, मिस्र और दक्षिण अफ्रीका जैसे कई देशों ने समर्थन किया। इसमें ऑनलाइन सुरक्षा बढ़ाने, डीप फेक और बच्चों के शोषण जैसी चुनौतियों से निपटने पर जोर दिया गया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CETA इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। इसके साथ ही दोगुने अंशदान से संबंधित सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो जाएगा। इससे भारत को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर तत्काल शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। वस्त्र, चमड़ा, समुद्री उत्पाद, इंजीनियरिंग और प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र को विशेष फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये समझौता लागू होने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। राष्ट्रपति आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। झारखंड से राज्यसभा की 2 सीटों के लिए आज मतदान होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैद्यनाथ राम, कांग्रेस उम्मीदवार प्रणब झा और निर्दलीय उम्मीदवार परिसिमल नथवानी चुनाव लड़ रहे हैं। झारखंड विधानसभा में मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। मतगणना शाम 5 बजे शुरू होगी और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ प्रो लीग हॉकी मैच में भारतीय पुरुष टीम ने मौजूदा विश्व चैंपियन जर्मनी को 3-1 से हरा दिया। भारत की ओर से मनदीप सिंह, शिलानंद लाकड़ा और नीलकांत शर्मा ने गोल किए। ये मनप्रीत सिंह का 413वां अंतर्राष्ट्रीय मैच था। उन्होंने भारत के लिए सबसे अधिक मैच खेलने का कीर्तिमान बनाया। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 95 रन से हरा दिया है। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में अब भारत का मैच 21 जून को दक्षिण अफ्रीका से होगा। आयुष मंत्रालय ने कहा है कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले योग संगम कार्यक्रम के लिए देश भर में 1,70,000 से अधिक आयोजकों ने पंजीकरण कराया है। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि योग संगम स्वास्थ्य के माध्यम से एकता का उत्सव है। इसके तहत देश भर में हजारों स्थानों पर लोग एक साथ योग करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य योग को जन जन तक पहुंचाना और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 14.7 MHz पर 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही फिल्म से। कार्यक्रम एक ही फिल्म से में आज आप सुनेंगे गुलाम फिल्म के गीत। गुलाम फिल्म के गीतों को लिखा समीर इंदिवर और विनु महेंद्र ने, संगीतबद्ध किया है जतिन ललित ने, आवाजें कुमार सानू, अलका याग्निक, उदित नारायण। आरंभ में फिल्म का पहला गीत कुमार सानू अलका याग्निक के स्वर में सुनिए। समीर का लिखा गीत है, जतिन ललित का संगीत।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: आयुषा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
2: आकाशवाणी रायगढ़ से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और कार्यक्रम में आज की फिल्म है गुलाम। गुलाम फिल्म का अगला गीत आमिर खान और अलका याग्निक के स्वर में है। इसे लिखा है नितिन

0: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
1: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
2: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
1: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
0: आकाशवाणी से।
3: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
4: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
5: देश की सुरीली धड़कन
6: विविध भारती,
4: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
5: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत।
4: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक, मायने रखते हैं आपके ट्वीट।

0: वीर सैनिकों की जय माला
1: और हंसी का हवा महल। बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
0: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
2: सखी सहेली,
0: बॉम्बे टॉकीज और
3: सेल्यूलॉइड के सितारे।
0: हम क्या कहें, आपको याद सब है जरा जरा,
4: मुझे याद सब है जरा जरा।
1: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
0: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन
1: मन का सुकून, दिल की आरती,
0: सुरीली संदली।

0: गुलाम फिल्म के इस गीत में आवाज़ें थीं कुमार सानू और अलका याग्निक की। समीर का लिखा गीत था और जतिन ललित का संगीत। अगला गीत उदित नारायण और अलका याग्निक के स्वर में है, विनू महेंद्र का लिखा हुआ। ये आप सुनेंगे इस संदेश के बाद।
1: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
2: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
1: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
3: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए

उदित नारायण और अलका याग्निक का गाया गुलाम फिल्म का ये गीत समीर का लिखा हुआ था और जतिन ललित ने संगीतबद्ध किया था। इस गीत के साथ ही अब कार्यक्रम एक ही फिल्म से अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है FM 14.7 MHz पर। 7:35 हुए हैं। लीजिए सुनिए प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम झरोखा। श्रोताओं, कार्यक्रम झरोखा में आप सभी का स्वागत, स्वीकारिए मेरा नमस्कार। कार्यक्रम झरोखा में आज हम ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे, आपको जानकारी देंगे जो भोजन, स्वास्थ्य, पर्यावरण और हमारी संस्कृति से गहराई से जुड़ा हुआ है। विषय है सतत गैस्ट्रोनॉमी दिवस। प्रतिवर्ष 18 जून को विश्व भर में सतत गैस्ट्रोनॉमी दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य लोगों को यह समझाना है कि हम क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं और भोजन कहाँ से आता है। इसका प्रभाव केवल हमारे स्वास्थ्य पर ही नहीं बल्कि पर्यावरण, कृषि और आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ता है। दोस्तों, गैस्ट्रोनॉमी शब्द का संबंध भोजन की कला और संस्कृति से है, जबकि सतत का अर्थ है ऐसा विकास या व्यवस्था जो वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करे लेकिन भविष्य की पीढ़ियों के संसाधनों को नुकसान न पहुंचाए। इस प्रकार सतत गैस्ट्रोनॉमी का अर्थ है ऐसी खाद्य व्यवस्था और खान पान की आदतें अपनाना जो पर्यावरण के अनुकूल हों, स्थानीय समुदायों को लाभ पहुंचाएं और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करें। आज दुनिया की बढ़ती जनसंख्या के साथ खाद्य उत्पादन की मांग भी बढ़ रही है, लेकिन इसके साथ ही भूमि, जल और ऊर्जा संसाधनों पर दबाव भी बढ़ता जा रहा है। भोजन की बर्बादी, रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग और प्राकृतिक संसाधनों का दोहन पर्यावरण के लिए गंभीर चुनौती बन रहे हैं। ऐसे में सतत गैस्ट्रोनॉमी हमें जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन का संदेश देती है। दोस्तों, इसका पहला सिद्धांत है स्थानीय और मौसमी खाद्य पदार्थों को प्राथमिकता देना। जब हम अपने क्षेत्र में उत्पादित फल, सब्जियां और अनाज खरीदते हैं तो पर्यावरण परिवहन पर होने वाला खर्च और प्रदूषण कम होता है तथा स्थानीय किसानों की आय भी बढ़ती है। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है दोस्तों, भोजन की बर्बादी को रोकना। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार दुनिया में उत्पादित भोजन का एक बड़ा हिस्सा बर्बाद हो जाता है, जबकि लाखों लोग आज भी पर्याप्त भोजन से वंचित हैं। इसलिए हमें उतना ही भोजन लेना चाहिए जितनी आवश्यकता हो और बचे हुए भोजन का उचित उपभोग करना चाहिए। सतत गैस्ट्रोनॉमी का संबंध हमारी पारंपरिक खाद्य संस्कृति से भी है। भारत में मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, रागी और कोदो जैसे पोषक खाद्य पदार्थ सदियों से हमारे भोजन का हिस्सा रहे हैं। ये फसलें कम पानी में भी उग जाती हैं और पर्यावरण के लिए अपेक्षाकृत अधिक अनुकूल हैं। इन्हें अपने भोजन में शामिल करना स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों के लिए लाभकारी है। दोस्तों, जल संरक्षण भी सतत खाद्य प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कृषि क्षेत्र में पानी का सबसे अधिक उपयोग होता है। यदि किसान आधुनिक सिंचाई तकनीकों और जल संरक्षण उपायों को अपनाएं, तो खाद्य उत्पादन को अधिक टिकाऊ बनाया जा सकता है। इसके साथ ही जैविक खेती, प्राकृतिक खेती और कृषि विविधता को बढ़ावा देना भी आवश्यक है। इससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है, रासायनिक प्रदूषण कम होता है और पारिस्थितिकी संतुलन सुरक्षित रहता है। दोस्तों, सतत गैस्ट्रोनॉमी केवल किसानों, रसोइयों या नीति निर्माताओं की जिम्मेदारी नहीं है, हम सभी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। स्थानीय उत्पाद खरीदकर, भोजन की बर्बादी रोककर, संतुलित और पौष्टिक आहार अपनाकर तथा पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा देकर हम इस दिशा में योगदान दे सकते हैं। दोस्तों, तो सतत गैस्ट्रोनॉमी दिवस के अवसर पर हम संकल्प लें, भोजन को केवल स्वाद का विषय नहीं बल्कि प्रकृति, संस्कृति और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी के रूप में भी देखेंगे, क्योंकि स्वस्थ भोजन, स्वस्थ पर्यावरण और स्वस्थ समाज तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
और अब मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ दोस्तों, और लेता हूँ आपसे विदा। नमस्कार, आप सुनिए ये गीत।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: अब प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम झरोखा समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है FM 100.7 MHz पर। 7:45 हुए हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम बाजेमांदर। कार्यक्रम में आज कलाकार हैं दुखिया भाई और ध्रुवाराम मरकाम।

राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

दुखिया बाई के गाए इस लोकगीत के साथ ही अब लोक संगीत का कार्यक्रम बाजे मांदर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है FM 107.7 MHz पर। 7:55 हुए हैं, समय है कार्यक्रम विवरण का। कार्यक्रम विवरण में हमारे आज के प्रसारण के शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा हम आपको बता दें। कार्यक्रम विवरण के ठीक बाद 8 बजे समाचार प्रभात आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित होगा। समाचारों के बाद आप सुनेंगे छत्तीसगढ़ी गीतों का फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो संगवारी 8:30 पर। 9 बजे से विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित होंगे। कार्यक्रम लोक संगीत हम आपके लिए लेकर आएंगे 10:10 पर। 10:30 पर आप सुन सकेंगे अपने पसंद के फिल्मी गीत। कार्यक्रम होगा आपकी फरमाइश। 11 बजे से शाम 5 बजे तक विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित होंगे। इस बीच 11:55 और 9:55 पर प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रायपुर से प्रसारित होगा। शाम 5 बजे हमारे केंद्र से आप सुन सकेंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। गजलों का कार्यक्रम शाम गजल हम लेकर आएंगे शाम 5:10 पर। 5:30 पर सुनिएगा ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर द्वार। कार्यक्रम में आज की गोट का विषय है योग से रहें शारीरिक और मानसिक रूप से फिट, कम बर्बादी ज़्यादा पोषण, यही है सतत पाक कला कमीशन। यह है विषय चर्चा का। योजना अटल पेंशन योजना के बारे में आप जानेंगे और रागी के व्यंजन के बारे में आप जानेंगे क्रम रांधभो कुटभो में। फिल्म संगीत का समय होगा शाम 6:20, शाम 7 बजे और रात्रि 8:30 का। शाम 7:20 पर किसान भाई अपना कार्यक्रम किसानवाणी सुनेंगे। कार्यक्रम में आज की बात का विषय है सब्जियों के प्रमुख कीट एवं व्याधियों का जैविक नियंत्रण अपनाएं, और जहां सवाल वही समाधान, बस एक कॉल पर किसान कॉल सेंटर। यह है विषय आज की नसीहत का। 19 शासकीय भर्ती परीक्षाएं पास कर अनोखा रिकॉर्ड बनाने वाली चारू पांडे से विशेष भेंटवार्ता आकाशवाणी से रायपुर से प्रसारित की जाएगी रात्रि 8:15 पर। 9 बजे से विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित होंगे। सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विरासत थीम पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी रायपुर से प्रसारित होगा 9:25 पर। रात्रि 10 बजे हमारे केंद्र से आप सुनेंगे कार्यक्रम विविध संगीत और आपके पसंद के फिल्मी गीत। कार्यक्रम आपकी फरमाइश में 10:30 पर। कार्यक्रमों की रूपरेखा अभी आप सुन रहे थे।

0: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
1: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
0: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
1: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
0: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
1: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
3: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
4: ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। अब आप सुनेंगे समाचारों का अनुप्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ पेरिस में विवटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी फ्रांस की राजधानी में प्रवासी भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम की 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ 14 सूत्रीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। और पुरुष क्रिकेट में भारत ने दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हराकर श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का स्वागत किया।
3: हम बहुत खुश हैं कि मोदी जी हमारे घर आए, हमारे पेरिस में आए।
4: मोदी जी हमारी शान है, हमको ये अभिमान है।
2: प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवा टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत करेंगे।
5: आज प्रधानमंत्री द्विपक्षीय व्यापार और नवाचार साझेदारी को और मजबूत करने के उद्देश्य से एक बेहद व्यस्त कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। वह फ्रांस और यूरोप के शीर्ष व्यापारिक नेताओं के साथ एक विशेष गोलमेज बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसका मुख्य फोकस भारत के बढ़ते औद्योगिक और तकनीकी क्षेत्रों में रणनीतिक निवेश को बढ़ावा देना है। इस दौरे का मुख्य आकर्षण विवाटेक सम्मेलन है, जो यूरोप का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप इवेंट है। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ इस शिखर सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय सत्रों में भाग लेंगे। इसके बाद वह एक बहुप्रतीक्षित मुख्य भाषण देंगे, जिसमें भारत के तेजी से बढ़ते वैश्विक डिजिटल कदमों को रेखांकित किया जाएगा। यह गहन राजनीतिक यात्रा एक बड़े सामुदायिक संपर्क कार्यक्रम के साथ संपन्न होगी। प्रधानमंत्री एक शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसमें भारत की समृद्ध विरासत और संस्कृति को प्रदर्शित किया जाएगा। महेश चोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
2: G7 के संपर्क सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने कल G7 देशों, भारत और ग्लोबल साउथ की ताकतों को मिलाकर संपर्क

0: और व्यापार को बढ़ाने की रूपरेखा का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि विकासशील देशों पर पश्चिमी एशिया संकट का दीर्घकालिक असर पड़ेगा। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री ने अमेरिका, ब्रिटेन, यूक्रेन, जर्मनी, संयुक्त अरब अमीरात, कनाडा, यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर भी बल दिया।
1: मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
0: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं ने संतुलित आर्थिक विकास, महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला और बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण से जुड़ी 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं अपनाई। बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल माहौल संबंधी का भारत सहित ब्राजील, मिस्र और दक्षिण अफ्रीका जैसे कई देशों ने समर्थन किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे।
2: 19 जून को राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल अनीमिया दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगी। इसके बाद वे पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा के लिए प्रस्थान करेंगी। वहीं 21 जून को राष्ट्रपति मुर्मू जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। इसके बाद राष्ट्रपति कूनो नेशनल पार्क का भ्रमण करेंगी और 22 जून को दिल्ली लौट आएंगी। राष्ट्रपति के बैतूल दौरे को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर डॉक्टर सौरभ संजय सोनवाने ने सुरक्षा व्यवस्था के तहत प्रतिबंध लगाए हैं। इसमें आज ड्रोन के उड़ान संचालन पर रोक रहेगी और भारी वाहनों की आवाजाही पर भी नियंत्रण शामिल है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
0: झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम से 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे शुरू होगी और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के प्रस्तुत कर रहा है। आज बात नक्सलवाद के उन्मूलन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
3: नरेंद्र मोदी सरकार की सुरक्षा अभियान, नक्सलियों की फंडिंग पर रोक और प्रभावित इलाकों में तेज विकास कार्यों की संयुक्त रणनीति के चलते देश को नक्सलवाद और माओवादी आतंक से मुक्त करने में सफलता मिली है। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सुरक्षा अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2022 में झारखंड के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया। इसी वर्ष फरवरी में ऑपरेशन डबल बुल के तहत झारखंड के गुमला, लोहरदगा और लातेहार जिलों को नक्सली प्रभाव से मुक्त कराया गया। ऑपरेशन स्टॉर्म के तहत झारखंड के सरायकेला, पश्चिम सिंहभूम और खूंटी जिलों में नक्सलियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। वर्ष 2025 में तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर चलाए गए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ने बचे हुए नक्सली कैडर को बड़ा झटका दिया। बस्तर के निवासी ने सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का अपना वादा पूरा किया है।
4: उन्होंने जो प्रॉमिस किया वो पूरा करके दिखाया, तो मोदी सरकार को, अमित शाह जी को, विजय शर्मा जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ।
5: पर आजकल कोई डर का माहौल नहीं है, कोई भी बच्चे यहाँ पे फ्रीली अपना काम कर पाते हैं।
3: इन अभियानों के परिणाम भी स्पष्ट रूप से दिखाई दिए हैं। वर्ष 2024 में 217 माओवादी मारे गए जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 256 हो गई। इस दौरान कई बड़े नक्सली नेताओं का भी खात्मा हुआ, जिनमें हिड़मा, कादरी सत्यनारायण रेड्डी, गणेश उइके और नक्सली महासचिव बसवराजू शामिल हैं। सुरक्षा अभियानों के साथ साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को भी तेजी से आगे बढ़ाया गया। झारखंड के गुमला जिले के रहने वाले टेंबू उराव ने कहा कि जब से मोदी सरकार बनी है तब से नक्सलवाद धीरे धीरे खत्म हो गया और लोग शांति और सद्भाव के साथ रह रहे हैं।
6: हमारा क्षेत्र पूरी तरह से उग्रवाद के गिरफ्त में था, तो वहाँ अमन चैन एकदम नहीं था। हम लोग को दिन में भी निकलने के लिए डर लगता था। 2014 के बाद जब से मोदी सरकार बना है तब से धीरे धीरे करके अब उग्रवाद समाप्त हो गया है और आज हम लोग अमन चैन और बढ़िया से जीवन यापन कर रहे हैं।
3: नक्सलियों की फंडिंग रोकने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने भी अहम भूमिका निभाई। इससे नक्सली संगठनों के संसाधनों और गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ा। विशेष अवसंरचना योजना के तहत स्पेशल फोर्स, राज्य खुफिया शाखाओं और जिला पुलिस को मजबूत बनाने के लिए 1761 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके अलावा नक्सलवाद के खात्मे के लिए प्रभावित क्षेत्रों में 596 सुदृढ़ पुलिस थानों का निर्माण भी किया गया। आज नक्सल मुक्त भारत की कहानी लोकतंत्र, विकास और संविधान की ताकत की जीत का प्रतीक मानी जा रही है, जिसने दशकों से चली आ रही हिंसा पर विजय प्राप्त की है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इस बीच झारखंड में नक्सल उन्मूलन अभियान को बड़ी सफलता मिली है। 10 लाख रुपए की इनामी महिला माओवादी पुष्पा महतो ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CETA इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि इस समझौते से भारत को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर तत्काल शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी।
7: हमारे पास ऐसे काबिल और महत्वाकांक्षी लोग हैं जो अपने और अपने परिवारों के लिए बेहतर भविष्य की तलाश में हैं। हर साल हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में 14 लाख विद्यार्थी स्नातक डिग्री प्राप्त करते हैं। हमारे पास 140 करोड़ लोगों की ओर से सामान, सेवाओं और डेटा की भी मांग है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये समझौता लागू होने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद फिजिस्कियन ने पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए शांति समझौते पर डिजिटल हस्ताक्षर किए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अमेरिका ने समझौते का आधिकारिक प्रारूप जारी कर दिया है।
8: 14 सूत्रीय समझौते में लेबनान सहित सभी क्षेत्रों में सैन्य कार्रवाई को तत्काल और स्थायी रूप से रोकने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही दोनों देशों ने 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौते पर बातचीत पूरी करने का लक्ष्य तय किया है। समझौते के अंतर्गत अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकेबंदी और उससे जुड़े प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। वहीं ईरान शुरुआती 60 दिनों तक हुर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित और निःशुल्क आवाजाही सुनिश्चित करेगा। दस्तावेज में ईरान पर लगे प्रतिबंधों में चरणबद्ध ढंग से ढील देने और ईरानी तेल निर्यात के लिए विशेष अमरीकी छूट का भी प्रावधान किया गया है। अमरीका के समर्थन से ईरान में कम से कम 300 अरब डॉलर के पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास कार्यक्रम की योजना भी शामिल है। समझौते में ईरान ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि वह परमाणु हथियार न तो विकसित करेगा और न ही उन्हें हासिल करने का प्रयास करेगा। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रख्यात बौद्ध विद्वान रॉबर्ट AF थर्मन के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। पुरुष क्रिकेट में भारत ने लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हरा दिया। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच शनिवार को चेन्नई में खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
9: धन्यवाद फरहत। आज सभी समाचार पत्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर सचित्र प्रकाशित की है। हिंदुस्तान लिखता है, भारत अमेरिका व्यापार समझौते के बहुत समीप, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने दी जानकारी। दैनिक जागरण ने राष्ट्रपति ट्रंप के शब्द प्रकाशित किए हैं, भारत पर हमला हुआ तो हम करेंगे मदद। 16 माह बाद हुई द्विपक्षीय बैठक में अमरीकी राष्ट्रपति ने दिया आश्वासन, फिर टूटी उद्धव की शिवसेना, 9 में से 6 सांसद बागी, शिंदे को माना अपना नेता। अमर उजाला की सुर्खी है, पत्र लिखता है, लोकसभा स्पीकर को पत्र सौंपकर अलग गुट के रूप में मान्यता देने की मांग की। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्कूलों का होगा सुरक्षा अंकेक्षण, पॉक्सो कानून के पालन में लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने दिए निर्देश, जनसत्ता की खबर है। दैनिक भास्कर ने फीफा विश्व कप में फुटबॉलर मेसी इतिहास रचने का समाचार सचित्र दिया है। पत्र लिखता है, हैट्रिक एक, रिकॉर्ड 10। उम्र बढ़ने के साथ मेसी ने खेल की

की शैली। टेलीग्राम ने प्रतिबंध आदेश को दी चुनौती, केंद्र को नोटिस, देशबंधु सहित सभी अखबारों की सुर्खी है। दैनिक जागरण के शब्द हैं, टेलीग्राम को लेकर आईआईटी निदेशक से तर्क वितर्क, केंद्र सरकार ने कहा टेलीग्राम पर हो रही हैरान करने वाली गतिविधियां।

0: आप मन के मनपसंद मायारू कार्यक्रम हेलो संगवारी मा स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आज के ये क्रम मा मैं हावा आप मन के संगवारी रामविलास पटेल, झोका मोर डहाले माया भरे राम राम जय जुहार। तो संगियो हमार कार्यक्रम मा सुनथन सुनाथन आप मन ला सुघर सुघर गीत ला, और ये गीत के पसंद रहे थे आप ही मन के। तो चला आज के पहली फोन और पहली फरमाइस का रही से तेला देखी और उठाई पहली फोन ला। हेलो संगवारी।
1: हेलो संगवारी।
0: हाँ बतावा जी, कौन बोला था, कहाँ ले बोला था?
1: मैं बासन जोड़ी से धनु राम साहू।
0: तो धनु राम साहू जी, खेती किसानी काम शुरू हो गए?
1: हो गए काम, लेकिन बारिश नहीं हो रहा है हमारे तरफ।
0: अच्छा अच्छा, और देखा तो स्वस्थ रहे बार योग करना चाहिए। कहते हैं जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाबो इतवार के दिन लहमन
1: जी।
0: तो आप मन योग करता कि नहीं करा?
1: योग करता
0: करता। योग से फायदा होते? और गीत संगीत सुने ले मजा आते कि नहीं आए?
1: आते ना सर।
0: अच्छा, तो का गीत सुनिए आज?
1: आज वो गीत सुना दो जैसे कि बैठा राम साहू के लाखों में जन आवेगा मोर संगी।
0: अच्छा, ये गीत ला सुनना है
1: जी।
0: चला फिर सुनो जी, आप मन के रेडियो सेट माँ बासन जुरी माँ सुघर गीत ला
1: जी।
0: फोन करे कर बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

0: हेलो संगवारी।
1: हाँ संगवारी मोर माया भरे राम राम।
0: माया भरे राम राम। नारायण प्रसाद वर्मा जी नावागढ़ कटाई ले स्वागत है, अभिनंदन है
1: आपके। बहुत बहुत स्वागत है भैया। जिन आपके बोली भाग है तो ऐसे लगत भी है जैसे अभी ये देह मन है गोरे बासी संग दही के मजा लेवत हैं।
0: ठीक ठीक। आओ वर्मा जी ये बताइए कि इतवार के दिन हमन मनाबो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में।
1: हाँ भैया।
0: तो बताहा कि योग से का लाभ होते।
1: देख भैया योग हमारे जीवन भरत सबसे बड़े एक दवा के रूप में खड़ा हो गए है भैया है ना।
0: हाँ
1: तो योग हम जैसे करत हैं तो ये योग से हमारे कई प्रकार के बीमारी है वो दूर हुआ थे और जिन हमारे मन में शांति है भैया वो योग है कहीं से भी हमारे मन में शांति ले आते खोज के।
0: जी जी।
1: अब भैया योग है एक ऐसे चीज हो गया है भैया जेकर ले हमारे शरीर हमारे तन मन हवा और हमारे जन बुद्धि के विकास है ये जम्मो चीज में योग के बहुत बड़े योगदान मिलते भैया।
0: सही
1: हाँ भैया। तो मोर श्रोता संगवारी मन में ले बिल्कुल निवेदन हवा योग दिवस ला एक त्योहार के रूप में मनावा और अपन जिंदगी भर बहुत सुख शांति के ये चीज समझ के एला अपनावा भैया यही आज मैं कहना चाहता हूँ आप ला।
0: बहुत बढ़िया विचार है आप मन के संगवारी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में हमला जुड़ मिल के तिहार जैसे मनाना है और योग ला अपन के दिनचर्या में शामिल करके स्वस्थ और मस्त रहना और सुनना है सुघर गीत ला।
1: हाँ भैया। हाँ।
0: तो बताओ का गीत रही
1: भैया। अभी जैसे हमारे खेती किसानी दिन आए हैं बढ़िया है मन है खेती किसानी लगे हुए मेड़ पार के तैयारी है काटा खूंटी भी नहीं चलत है खातू पाल डरे है और वो कर दिखाई चलत है भैया अपन गोबर खातू के।
0: हाँ
1: भैया हमने रे अगोरत हमन हमारे जेन है ऊपर वाले मालिक है भैया है
0: वर्षा का है।
1: हाँ भैया। तो ये है भैया केदार यादव और साधना यादव के भूले बिखरे एको दिन तो मोर अंगना में बरस रे बादरी हो गानंद सुना देते भैया।
0: चला फिर सुनो आप मन के रेडियो से इतना ये सुगर गीत ला फोन करे कर बहुत बहुत धन्यवाद।
1: हाँ धन्यवाद भैया मोर माया भरे राम राम
0: राम राम।

0: भूले बिसरे को दिन तो मोरंग नाम बरस रे बादल,
1: भूले बिसरे को दिन तो मोरंग नाम बरस रे बादल,
0: भूले बिसरे को दिन तो मोरंग नाम

0: अरे कर जा कल कितना मैं तै खोजा तस पुजार
1: भूले बिसरे को दिन तो मोरा अंगना में बरस रे बादल
0: भूले बिसरे को दिन तो मोरा अंगना में बरस रे।

0: हेलो संगवारी।
1: राम राम जय जोहार भैया।
0: राम राम जय जुहार। जय जुहार भैया, स्वागत है कार्यक्रम में।
1: राम राम जहाँ माखन वर्मा बोला था भैया।
0: माखन वर्मा जी, के हाल चाल कैसे हैं?
1: सब बढ़िया है भैया, खेती बाड़ी के तैयारी में लगे हैं भैया।
0: तो का फसल लेते हैं दारी जी?
1: अब का की खातू माटी काम कुदारी काम तो हो गए भैया।
0: हाँ हाँ हाँ, तैयार हो गए
1: धान बो चली भैया। खुर्रा?
0: अच्छा अच्छा, खुर्रा बो था।
1: खुर्रा कुछ रोपा पद्धति लगा था भैया।
0: और सिंचाई के का व्यवस्था रहे थे आप मन के डहार?
1: पंप के साधन है भैया, 2-3 पंप है, 3।
0: अच्छा अच्छा,
1: हाँ।
0: तो फसल बढ़िया होते?
1: फसल बढ़िया होते भैया।
0: और स्वस्थ रहे बर, मस्त रहे बर, कैसे शरीर ला ताजा तंदुरुस्त रखे बर योग ला करना चाहिए, कहते का योग करता आप मन?
1: भैया
0: अच्छा अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में 21 जून के दिन ला मनाए जाते, तो इला हम ला मनाना है और इमा शामिल भी होना है और दिनचर्या में शामिल भी करना है। तो माखन वर्मा जी, आज का पसंद रही जी आप मन के?
1: दुर्वारा मरकाम के सुना दू।
0: अच्छा, दुर्वारा मरकाम की गीत सुनिया? अच्छा चला जी, सुना जी आप मन के पसंद के कलाकार के सुगर गीत ला फोन कर मिता ने कर बर बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आप बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

0: हेलो संगवारी।
1: हेलो संगवारी, नमस्कार सर।
0: नमस्कार, जय जुहार। बताओ जी, कौन बोला था जी?
1: हाँ सर, छोटी चक्रधारी बोला था,
0: छोटू
1: करगी
0: चक्रधारी। कैसे आवा चक्रधारी जी?
1: सब बने बने हैं सर जी।
0: आओ, हाल चाल, खेती किसानी के बूता काम शुरू होइस ना?
1: हमारे तो खेती किसानी नहीं है सर, हम तो सिलाई काम करते हैं।
0: तो सिलाई काम में पानी बरसा करते तो बढ़िया लागते जी। घाम में तो नहीं जनात हुई, पसीना चुचुआत हुई भाई, है ना?
1: हमारे तरफ बादर बादर करे और पानी नहीं बरसा थे।
0: बरसी ही अब दिन आज जाते, मानसून के सक्रियता हो जाही और आषाढ़ में जम के बरसी ही जी। और स्वस्थ और मस्त रहे पर कैसे करता संगवारी? योग करता कि नहीं करा जी?
1: हाँ तो करता ना योग,
0: करता? हाँ
1: सुबह
0: चल।
1: उठता जल्दी और कम से कम आधा घंटा टाइम निकाल के अपन दो एक दो चार ऐसे 8-10 आइटम के जो योग है वो लग करता ना
0: वाह
1: वो।
0: वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया छोटू चक्रधारी जी। ये काम करना चाहिए, तभी हमारे शरीर हर स्वस्थ और मस्त रही, और तभी हम सुन पाबू सुगर सुगर गीत ला जी।
1: हाँ आप सर का बोलते ना, दिन भर बैठे बैठे वो मशीन चला वाला काम करता तो मैं पैर में ना वो कट कट के आवाज भी आ गई से।
0: अच्छा,
1: योग अपना है ना तो वो कट कट की आवाज भी है, कम हो गया नहीं आवाज।
0: चलो बहुत बढ़िया बात है। ताजा उदाहरण आप मन के डाले मिला थे कि योग से का लाभ होते तेहर, है ना?
1: हाँ खबर मिली सर, मतलब सच में बताता हूँ।
0: हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और का की सुनिए चक्रधारी जी आज?
1: आप मन कोई से भी मस्त सुगर अपन गीत लगवा
0: अच्छा
1: आपने।
0: अच्छा चलो सुघर गीत सुनो, सुघर कार्यक्रम में फोन करे करवो। बहुत बहुत धन्यवाद है।
1: धन्यवाद। राम राम सर।
0: राम राम जी।

0: हेलो संगवारी।
1: हेलो संगवारी, राम राम, जय जोहार।
0: राम राम, जय जोहार। राधे श्याम जी।
1: हाँ, पहचान गया पहचान गया। हो सका था शंकर बोला तनका।
0: मैं राम विलास पटेल बोला था।
1: अच्छा भैया, भैया पटेल भैया, राम राम, जय जोहार।
0: जय जोहार, जय जोहार। थोड़कुन ठाउर ले बतावा, कहाँ ले बोला था तेला।
1: हम बोला था भैया विकास खान बलौदा जांजगीर चांपा ग्राम पंचायत पहुँच ले राधेलाल बोला था हम भैया।
0: हाँ, कैसे हावा जी राधे श्याम।
1: बहुत बढ़िया हम भैया, आप मन की कृपा भगवान की दुआ से कुशल मंगल सन हवन और आशा पूर्वक कर आशा करत हन के आकाश और रायगढ़ परिवार मन समूह पोषण भाई मन सब कुशल मंगल हो की हम आशा कर रखे।
0: का कार्यक्रम सुनता आकाशवाणी रायगढ़ डहर ले।
1: रायगढ़ डहर ले हम पूरा आकाश में सब कार्यक्रम में सुनथन पटेल जी।
0: अच्छा,
1: ग्राम सभा सुनथन और सवेरे के झरोखा सुनथन, मानस गान सुनथन। पहले से जब आप मन के जो शुरू हो रहे थे, जितका कार्यक्रम चालू हो रहा था, उसके पहले हमारे रेडियो 6 बजे चालू हो जा रहे थे
0: जी।

0: जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। राधे श्याम जी, आज का गीत सुना संगवारी मल्ला। अच्छा अच्छा लेवा फिर
1: पटेल जी हमारे बैठे हैं और बहुरन दास है और रमेश भैया है एमए और माझा माझा में आओ बैठ करके ना बहुत आप मन के कार्यक्रम में सुनत माझा माझा में बैठी है और कार्यक्रम में सुनत है संगवारी।
0: चला फिर आप सबो जन जुड़ मिल के सुना जी आप मन के पसंद के कलाकार के ये सुघर गीत ला फोन कर माया बना के एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपो मल्ला परिवार मल्ला राधेलाल पुलिस वाले की तरफ से ढेर सारा शुभकामनाएं है जी।
0: धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।

0: और पागा।
1: संगियों सुघर गीत और संगीत के क्रम यही थी रावत है कार्यक्रम में हमला आज तकनीकी सहयोग मिले रही से B.S. ध्रुवे के प्रस्तुति सहयोग और संचालन रही से आप मन के संगवारी रामविलास पटेल के और कार्यक्रम के प्रस्तुत करता रही ने रवि आनंद। संगियों स्वस्थ और मस्त रहे बर योग ला अपनावा और देव विदा आप मन के संगवारी रामविलास पटेल ला राम राम जय जोहार।
2: छत्तीसगढ़ी फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम फोन इन कार्यक्रम हेलो संगवारी अभी आप सुन रहे थे। ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है FM 107.7 MHz पर। अब आप विविध भारती के कार्यक्रम सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: श्रोताओं, आपको बता दें कि आज है संगीतकार दान सिंह की पुण्यतिथि। उन्हीं को याद करते हुए आज की फनकार कार्यक्रम उन्हीं पर केंद्रित रहेगा। प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। इस कार्यक्रम को पुनः आप रात को 9:30 पर सुन सकते हैं और अब से कुछ ही देर बाद यानी सुबह की 9:30 पर यह कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। केंद्रित रहेगा संगीतकार दान सिंह पर। और आइए अब आपको सुनवाते हैं अगला गीत, कुछ ना कहो। इस फिल्म से उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में, जावेद अख्तर के बोल हैं, शंकर एहसान लॉय का संगीत।

0: खुशखबरी,
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियाँ फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली।

0: सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
2: वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।

इस ब्रेक के बाद आप सभी का कार्यक्रम चित्रलोक में स्वागत है। श्रोताओं, आपको बता दें, आज है सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे, यानी सेलिब्रेटिंग फूड हेरिटेज 2026 की थीम है इस डे के लिए। ये हर साल 18 जून को मनाया जाता है। भोजन विरासत का जश्न है इसका अर्थ है। इसका उद्देश्य पारंपरिक खाद्य ज्ञान, स्थानीय सामग्री और पर्यावरण अनुकूल खान पान को बढ़ावा देना है। सतत खान पान का मतलब है ऐसा भोजन चुनना जो हमारी सेहत के लिए अच्छा हो और पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए। इसमें यह ध्यान रखा जाता है कि भोजन कहाँ और कैसे उगाया जाता है तथा हमारी थाली तक कैसे पहुंचता है। इसका महत्व ऐसा है कि हमें ध्यान देना होगा प्राकृतिक संसाधनों जैसे पानी और ऊर्जा की बचत की, और स्थानीय किसानों को समर्थन देना, यानी कि उन्हीं से मौसमी सब्जियां और फल खरीदना। भोजन की बर्बादी में कमी हो, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। पारंपरिक और क्षेत्रीय खाद्य संस्कृति का संरक्षण, ये भी तो हमारा कर्तव्य है। वैसे क्या करना चाहिए? स्थानीय और मौसमी फल सब्जियां ही खाना चाहिए और उन्हें किसानों से ही खरीदना चाहिए। भोजन की बर्बादी को बिल्कुल ना करें। दालें, बीन्स और हरी सब्जियां अधिक खाएं। जैविक कचरे से खाद यानी कंपोस्ट बनाएं। प्लास्टिक की जगह कपड़े के थैले इस्तेमाल करें। इस दिवस का संदेश है कि छोटे छोटे टिकाऊ खाद्य विकल्प अपनाकर हम स्वस्थ जीवन और सुरक्षित पर्यावरण में योगदान दे सकें। और सुनिए ये गीत जावेद अली और सुनिधि चौहान की आवाज में, दावते इश्क फिल्म से। कौसर मुनीर के शब्द, साजिद वाजिद का संगीत।

0: जिसने दोबारा मुड़के मुझे नहीं देखा? Who is he?
1: कभी खुशी कभी गम इस फिल्म का गीत अलका याग्निक, सोनू निगम और करीना कपूर की आवाजों में समीर का लिखा गीत है। धुन बनाई है संदेश सांडिल्य ने।

whatever.

एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

फिल्म मोहब्बते से ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर, उद्भव और कुछ साथी कलाकारों की आवाजों में, जिसमें शाहरुख खान, उदित नारायण, मनोहर शेट्टी, प्रथा मजूमदार और साथियों के स्वर थे, आनंद बख्शी के बोल, जतिन ललित का संगीत। और इसी गीत के साथ कार्यक्रम चित्रलोक अब यहीं संपन्न होता है। डीजे आ गया आपकी रेडियो दोस्त पूजा नारायणिया को नमस्कार।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कहने गए खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई के साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार, खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। फिल्म संगीत संसार में कई ऐसे संगीतकार हुए हैं जिन्होंने बहुत सारी फिल्में नहीं की, लेकिन जो फिल्में की उनके जरिए फिल्मी गीतों की दुनिया में अपनी गहरी और बुलंद पहचान बनाई है। ऐसे कम चर्चित संगीतकारों की एक लंबी फहरिस्त है। इनका काम अपनी क्वालिटी की वजह से ज्यादा जाना जाता है, क्वांटिटी की वजह से नहीं। और ऐसे ही संगीतकारों की फहरिस्त में नाम आता है फिल्म जगत के नामी संगीतकार दान।

भगवान सिंह का जन्म जयपुर में सन 1927 में हुआ था। कहते ये हैं कि उनके पिता एक अध्यापक थे और ख्याल गायकी में भी अपना दखल रखते थे। जाहिर है कि संगीत दान सिंह के खून में था। उन्हें खेमचंद प्रकाश के रूप में संगीत के अपने गुरु मिल गए और हुआ ये कि खेमचंद प्रकाश के साथ उन्होंने संगीत सीखना शुरू किया। तकरीबन 1.5 बरस बीत गया। दान सिंह खेमचंद प्रकाश के पास रियाज करते चले जाते और खेमचंद प्रकाश सिर्फ और सिर्फ राग भैरवी की प्रैक्टिस करने को उनको कहते। हुआ ये कि एक बार वो परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि ये क्या मामला है कि आप लगातार मुझे एक ही राग की प्रैक्टिस करवाते चले जा रहे हैं। तब खेमचंद प्रकाश ने ये कहा था कि संगीत की ये साधना बहुत लंबी खिंचती है। उन्होंने अपने एक शिष्य की तरफ

इशारा करते हुए कहा कि इस व्यक्ति ने भैरवी सीखनी शुरू की तो अब 8 साल हो गए हैं और वो लगातार सीखते चले जा रहे हैं। खेमचंद प्रकाश को पता था कि दानसिंह की प्रतिभा

आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि डांसिंग ने अपना करियर संगीत की दुनिया में आकाशवाणी जयपुर से शुरू किया था। बाद में जब उन्हें ये लगने लगा कि उन्हें ऊंचे आकाश की जरूरत है, अपने आयाम फैलाने की जरूरत है, तो वो मुंबई आ गए थे। थोड़े दिन तक वो खेमचंद प्रकाश के सहायक भी रहे और उन्हें इस समय में कुछ फिल्मों के ऑफर भी मिले, जैसे रेत की गंगा नाम की एक फिल्म उन्हें ऑफर की गई। ये अलग बात है कि ये फिल्म बन नहीं पाई। सन 1965 में डांसिंग को जेपी शर्मा की फिल्म मिली भूल न जाना। गोरा गोरा

यहाँ आपको बता दें कि असल में बी एन शर्मा जिन्होंने भूल न जाना का निर्माण किया था वो फ्लैट में डांसिंग के साथ ही रहा करते थे। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म भूल न जाना भारत और चीन युद्ध पर बनी थी। डांसिंग ने बड़े मन से इस फिल्म के गाने तैयार किए थे और बहुत ही कमाल का संगीत था फिल्म भूल न जाना का।

फिल्म भूल न जाना, ये फिल्म रिलीज नहीं हो पाई, इसलिए दान सिंह की उड़ान को वो आकाश नहीं मिल पाया जिसके दान सिंह हकदार थे। पर इस फिल्म के गाने की रिकॉर्डिंग से जुड़ी एक घटना आपको बताते हैं। सन 1964, मुंबई में ताड़देव का एक स्टूडियो, गीता दत्त दान सिंह का एक गाना गा रही हैं। ये वो समय है जब गीता दत्त की जिंदगी में, उनकी निजी जिंदगी में तूफान आया हुआ है, रिश्तों में दरार आ रही है, और गीता दत्त ये गाना गा रही हैं।

गायने गाते गाते अचानक गीता दत्त की रुलाई फूट पड़ती है। रिकॉर्डिंग के बीच में वो सुबकने लगती हैं। एकदम स्टूडियो के माहौल तनाव से भर जाता है। दरअसल डांसिंग का ये गीत गीता दत्त के दिल पर बहुत भारी पड़ा है। जरा सोचिए, इतना गहरा था डांसिंग के संगीत का असर। भूल ना जाना के अलावा डांसिंग ने फिल्म माय लव में संगीत दिया। शर्मिला टैगोर और शशि कपूर के अभिनय वाली ये फिल्म असल में डांसिंग के गानों के लिए ही याद की जाती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि इस फिल्म में डांसिंग के सहायक के रूप में लक्ष्मीकांत ने मैंडोलिन और प्यारे लाल ने वायलिन बजाई। पंडित शिव कुमार शर्मा ने संतूर बजाया इस फिल्म के गानों में और पंडित हरि प्रसाद चौरसिया ने बांसुरी बजाई। यही नहीं, मनोहरी सिंह का सैक्सोफोन भी फिल्म माय लव के गानों की शान है। जरा सोचिए, इतने बड़े नाम जुड़े थे इन गानों की रिकॉर्डिंग में। आगे चलकर शिव हरि की जोड़ी फिल्म संगीत के संगीतकारों की सरताज तो बनी ही। पंडित शिव कुमार शर्मा और पंडित हरि प्रसाद चौरसिया ने संतूर और बांसुरी की स्वर लहरियों को आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचाया, देश और दुनिया में नाम कमाया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी तो हिट फिल्में देने वाली एक बेमिसाल संगीतकार जोड़ी बनी। और सैक्सोफोन के सरताज मनोहारी सिंह को भला कौन नहीं जानता। फिल्म माय लव के गानों की बात चल रही है तो चलिए अब ये गाना सुनते हैं।

जैसा कि हमने कहा कि डांसिंग फिल्म संगीत की दुनिया में जब बहुत ज्यादा नाम नहीं कमा पाए तो वो रेडियो से जुड़ गए थे। युवावस्था में उन्होंने सुमित्रा नंदन पंत की कविता को संगीतबद्ध किया था और मशहूर कवि सुमित्रा नंदन पंत ने उन्हें गले लगा लिया था। डांसिंग बहुत ही गुणी संगीतकार थे, पर उन्होंने केवल 4 फिल्मों में संगीत दिया, माय लव, तूफान, बवंडर और भोभर। कुछ ऐसे संगीतकार होते हैं जिनको उनका हक नहीं मिल पाता। हम संगीत के प्रेमी बस इसी विकलता में रह जाते हैं कि आखिर ऐसी प्रतिभाओं को और मौके क्यों नहीं मिले, ताकि हमें मिल सकते थे कुछ और बेमिसाल गाने। फिल्म भूल न जाना का मुकेश का गाया ये गाना सुनिए और दान सिंह की प्रतिभा की बानगी।

0: थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। लीजिए सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। एक दिवसीय प्रवास पर रायपुर पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। मुख्यमंत्री ने गरियाबंद जिले को दी 603 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की सौगात। और एसीबी ने प्रदेश के अलग अलग जिलों में भ्रष्टाचार के मामले में 3 लोगों को किया गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज सुबह एक दिवसीय प्रवास पर रायपुर पहुंचे। अपने दौरे के दौरान वे बलबीर जुनेजा इंडोर स्टेडियम में आचार्य पदारोहण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके बाद शाम करीब 4 बजे शांतिनगर में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। श्री बिरला आज शाम दिल्ली लौट जाएंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल गरियाबंद जिले को 603 करोड़ 46 लाख रुपए से अधिक के विकास कार्यों की सौगात दी। पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 76 विकास कार्यों का लोकार्पण, भूमि पूजन और शिलान्यास किया। इनमें सड़क, सिंचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल और विद्युत से जुड़े कार्य शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। उन्होंने गरियाबंद के सर्वांगीण विकास के लिए आधारभूत सुविधाओं के विस्तार पर जोर दिया। पीएम सेतु योजना के तहत प्रदेश के शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों आईटीआई को आधुनिक और उद्योग अनुकूल बनाया जा रहा है। योजना के तहत छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई और ड्रोन जैसी नई तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही पुरानी मशीनों के स्थान पर आधुनिक उपकरण, डिजिटल कंटेंट और स्मार्ट क्लासरूम की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में मंत्रालय में आयोजित राज्य स्तरीय स्टीयरिंग समिति की बैठक में पीएम सेतु योजना की प्रगति की समीक्षा की गई। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने कल प्रदेश के 3 अलग अलग जिलों में दबिश देकर भ्रष्टाचार के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। एसीबी की टीम ने कल भिलाई नगर निगम से सेवानिवृत्त चीफ इंजीनियर को भ्रष्टाचार के एक मामले में हिरासत में लिया। इसके अलावा धमतरी में विद्युत यांत्रिकी विभाग में पदस्थ प्रोग्रेस मैन को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। वहीं एसीबी ने जशपुर नगर में आरईएस विभाग के एसडीओ को भी 25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। जशपुर जिले में बीज गोला बनाबो, जशपुर के जंगल्ला बढ़ाबो महाअभियान के तहत भैरव पहाड़, सोगड़ा, नुमान टेकरी सहित विभिन्न चिन्हांकित स्थलों पर लगभग 2 लाख सीड बॉल तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। जिला प्रशासन और वन विभाग की टीम ने सभी नागरिकों, प्रबुद्धजनों और युवाओं से इस अभियान में शामिल होने की अपील की है। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल ने राज्य में अवैध रूप से स्क्रैप और प्रयुक्त बैटरियों के संग्रहण, भंडारण, परिवहन, पुनर्चक्रण और व्यापार में संलिप्त व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है। मंडल के संज्ञान में आया है कि राज्य के कुछ क्षेत्रों में बिना आवश्यक पंजीयन, प्राधिकार और वैध दस्तावेजों के स्क्रैप बैटरियों का संग्रहण, भंडारण, परिवहन और खरीदी बिक्री की जा रही है। मंडल ने स्पष्ट किया है कि इस प्रकार की गतिविधियां पर्यावरणीय कानूनों का उल्लंघन है और यह जन स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करती है। इस संबंध में राज्य भर में विशेष निरीक्षण और प्रवर्तन अभियान चलाया जाएगा। आगामी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस वर्ष की थीम स्वस्थ आयु के लिए योग रखी गई है। योग दिवस के आयोजन को लेकर छत्तीसगढ़ में तैयारियां अंतिम चरण में हैं। राज्यपाल रमन डे का राजधानी रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सामूहिक योग अभ्यास कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मुख्य आतिथ्य में सरगुजा जिले में सुबह 7 बजे सामूहिक योगाभ्यास किया जाएगा। इसके अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री दोखन साहू बिलासपुर, उप मुख्यमंत्री अरुण साहू दुर्ग, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा कबीरधाम और विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह राजनांदगांव में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। इस प्रकार अन्य जिलों में भी आयोजित होने वाले योग कार्यक्रमों में मंत्री, सांसद और विधायक मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। एक दिवसीय प्रवास पर रायपुर पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। मुख्यमंत्री ने गरियाबंद जिले को दी 603 करोड़ रुपए से अधिक विकास कार्यों की सौगात। और एसीबी ने प्रदेश के अलग अलग जिलों में भ्रष्टाचार के मामले में 3 लोगों को किया गिरफ्तार। इसी के साथ प्रादेशिक

0: समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं, FM 107.7 MHz पर। 10 बजे हैं, समय है कार्यक्रम विवरण का। कार्यक्रम विवरण में आज के प्रसारण के शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा सुनिए। कार्यक्रम विवरण के ठीक बाद 10:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम लोक संगीत। 10:30 पर आपके पसंद के फिल्मी गीत प्रसारित किए जाएंगे कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। 11 बजे से विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित होंगे। 11:55 पर प्रादेशिक समाचार और 9:55 आकाशवाणी रायपुर से अनुप्रसारित होगा। शाम 5 बजे हमारे केंद्र से आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ। गजलों का कार्यक्रम शामी गजल आप सुनेंगे शाम 5:10 पर। 5:30 पर ग्रामीण महिलाएं अपना कार्यक्रम घर द्वार सुनेंगी। कार्यक्रम में आज के गोट का विषय है योग से रहें शारीरिक और मानसिक रूप से फिट। चर्चा का विषय कम बर्बादी ज्यादा पोषण, यही है सतत पाक कला का मिशन। अटल पेंशन योजना के बारे में आप जानेंगे और रांधवो कुटुबों के अंतर्गत रागी के व्यंजन बनाने की कला आपको सिखाई जाएगी। और फिल्म संगीत हम आपको सुनवाएंगे शाम 6:20, शाम 7 बजे और रात्रि 8:30 पर। शाम 7:20 पर किसान भाई अपना कार्यक्रम किसान वाणी सुनेंगे। कार्यक्रम में आज की बात का विषय है सब्जियों के प्रमुख कीट एवं व्याधियों का जैविक नियंत्रण अपनाएं। और जहां सवाल वहीं समाधान, बस एक कॉल पर किसान कॉल सेंटर, यह है विषय आज की नसीहत का। 19 शासकीय भर्ती परीक्षाएं पास कर अनोखा विश्व रिकॉर्ड बनाने वाली चारू पांडे से विशेष भेंटवार्ता आकाशवाणी रायपुर से अनुप्रसारित की जाएगी रात्रि 8:15 पर। 9 बजे से विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित होंगे। सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विरासत थीम पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी रायपुर से अनुप्रसारित होगा रात्रि 9:25 पर। विविध संगीत हम आपको सुनवाएंगे रात्रि 10 बजे और आपकी पसंद के फिल्मी गीत रात्रि 10:30 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। कार्यक्रमों की रूपरेखा अभी आप सुन रहे थे।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आजादी का जय घोष वंदे मातरम और मैं निशा भारद्वाज आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। श्रोताओं, वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं है बल्कि ये तो भारत की आत्मा का अमर स्वर है। और अब जबकि इस गीत ने 150 वर्षों का एक लंबा सफर तय कर लिया है तो और भी जरूरी हो जाता है कि हम इसके बारे में अधिक जाने अधिक समझें। तो इस बारे में हमसे अधिक जानकारी साझा करने के लिए जुड़ रहे हैं विश्व भारती विश्वविद्यालय से प्रोफेसर मनबेंद्र नाथ साहा।
1: नमस्कार। गीत के महत्व तो सब भारतीयों के लिए बहुत ज्यादा है, अब सभी जानते हैं। ये गीत 1875 7 नवंबर बंकिम चंद्र ने लिखा है। हमारा नेशनल गीत है वंदे मातरम। बंकिम चंद्र एक चिंताविद थे और एक नवेलिस्ट थे। ड्यूरिंग द ऑस्पिशियस ओकेशन ऑफ अक्षय नवमी विच वॉज ऑन 7 नवंबर 1875 ये गीत बंकिम चंद्र ने लिखा। उसके बाद वंदे मातरम फर्स्ट अपीयर्ड इन द लिटरेरी मैगजीन जो बंकिम चंद्र ने ही संपादन किया था, बंगा दर्शन पर पब्लिश हुआ था 1818 में। यदि आप जानते हैं कि ऋषि अरविंदो ने गीत अंग्रेजी अनुवाद किया है जिसका नाम था मदर आई गो टू दी। कवि गुरु रविंद्रनाथ 1937 में इसका शुरारोप किया, उसके

0: केरल ने पहला सुर दिया जदुभट्टू ने, सुर मीन्स इस गीत का धुन बनाया जदुभट्टू। उसके बाद हम जानते हैं कि 1896 पर जब कलकत्ता में नेशनल कांग्रेस हुआ, पहली बार पब्लिक मंच पर ये गीत गाया था और उसी दिन से या उसी टाइम से गीत का पहला लाइन पॉलिटिकल स्लोगन बन गया, स्वाधीनता संग्राम की लड़ाई में एक नारा बन गया ये गीत। बंकिम चंद्र केवल नवलिस्ट नहीं थे, उन्होंने एक इतिहास चेतना की प्रवक्ता थे, जिस चेतना जाति संगठन के लिए एक बड़ी बात है। बंकिम चंद्र वॉज ए नेशन बिल्डर, नॉट ओनली ए नॉवेलिस्ट। प्रख्यात चिंताविद रमेश चंद्र दत्त ने कहा, द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ 19th century। बंकिम चंद्र को ग्रेटेस्ट मैन ऑफ 19th century कहा गया। बंकिम ने जीवन के हर मोड़ पर हर सच की संधान की। और एक बात है कि बंकिम चंद्र इस गीत का परिकल्पना मुर्शिदाबाद जिला में किया था, जब बंकिम चंद्र मुर्शिदाबाद में कलेक्टर था। ये मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं मुर्शिदाबाद जिला से बिलोंग करता हूँ। बंकिम के अंदर देश के लिए प्यार था, उनके अंदर तीव्र अत्याभिमान भी था। इस अभिमान की एक्सप्रेशन हुआ इस गीत में। बंकिम, मैंने पहले ही कहा कि एक नवलिस्ट नहीं थे, एक ऋषि भी थे। He was the pioneer of Swadesh Puja. On 1876, West Bengal ki Hugli Jela mein Gopal Chandra Dhar namak ek vyakti Bande Mataram Geet Desh Mallar Dhun mein gaya tha. Aur maine bola ki 1871 mein Geet ka parikalpana Murshidabad Jela mein hua. Bande Mataram hamara garv hai, Swadesh ko aage badhane ke liye ye Geet har waqt hamara adarsh hoga. Rabindranath टैगर ने उनकी घरे बायरे नमक जो नॉवेल है, उपन्यास है, उसमें एक कैरेक्टर है निखिलेश। निखिलेश ने बोला, देश उसी को है जो देश को प्यार करते हैं। जन्म लेने से देश हमारा नहीं हो जाता। बंकिम चंद्र के अंदर में देश के लिए एक अभिमान थे। उस अभिमान से ये गीत 1875 आज के दिन लिखा गया था। उसके बाद जब आनंदमठ उपन्यास पब्लिश हुआ 1882 में, तब उसका गीत का प्रसार हुआ। उसके बाद ये गीत हमारा नेशनल गीत हुआ। तो मैं ये कहूंगा कि आज के दिन देशभक्ति, देश के लिए प्रेम, देश के लिए शक्तिमान होना चाहिए। और अगर हम इस बात को दिल में रखें तो बंकिम के प्रति वही होगा सच्चा श्रद्धा। सबको मेरा नमस्कार। बंकिम चंद्र जी के लिए मेरा प्रणाम।
1: इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर मनवेंद्रनाथ साहा जी। और इसी के साथ मैं निशा भारद्वाज लेती हूं आपसे अनुमति। नमस्कार।
2: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
3: देश की सुरीली धड़कन
2: विविध भारती, भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
3: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत,
2: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
3: वीर सैनिकों की जय माला
2: और हंसी का हवा महल, 22 करोड़ की बातें यादों के उजाले,
3: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
4: सखी सहेली,
3: बॉम्बे टॉकीज और
5: सेल्यूलॉइड के सितारे,
3: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
6: मुझे याद सब है जरा जरा।
2: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर,
3: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन,
2: मन का सुकून, दिल की आरती,
3: सुरीली संडली।
7: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
8: हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं FM 107.7 MHz पर। 10:10 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संगीत। कार्यक्रम में कलाकार हैं गया सिंह राज और निका साहू।

0: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
1: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
2: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
1: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
0: आकाशवाणी से।
3: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
4: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।

0: अब एफएम रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे तीन विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल तीन विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम एफएम रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, यह योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र छोटे अतरमुड़ा रायगढ़।
1: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।

कार्यक्रम लोक संगीत अभी आप सुन रहे थे। कलाकार थे गया सिंह राज और निका साहू। अभी ये कार्यक्रम समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 14.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

आपके फरमाइशों, पत्रों और खुशियों का एक कार्यक्रम आपकी फरमाइश लेकर हम उपस्थित हैं। दोस्तों, स्वीकारिए हमारा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम में और आपकी फरमाइशें अब होंगी पूरी। पहला गीत जो आप सबने सुनना चाहा वो है पिया का घर फिल्म का। आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की, आनंद बख्शी की वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। पसंदकर्ता हमारे श्रोता हैं शेख अब्दुल सलीम, बेगम परवीन बानो, अब्दुल जमीर, मोहम्मद अलीम, आसिफ नईम राजा, इंदिरा नगर रायगढ़ से, भाटापारा दोतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और जावेंद्र वर्मा, अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृष्ण श्रीवास्तव, शिवाजी चौक राजिम से, अमरपुर पिंडरा से दीपक कुमार, रोशन कुमार, वंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लवी श्रीवास्तव। ईमेल भेज रहे हैं हमारे श्रोता लोरमी चचेड़ी छत्तीसगढ़ से, कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा मरावी, पुष्पराज मरावी, ऋषभ मरावी, भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा, रुद्र वर्मा दतरंगी से, नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पी एस नहावरकर, निर्मला नहावरकर, विशाल नहावरकर मलकापुर से, नारायण इंगले और राजकुमार खर्चे साथ में, आशीष मुरहेकर। आप सबका ये पसंदीदा फिल्मी गीत मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर के स्वर में, पिया का घर फिल्म से।

0: बदलो बदलो आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
3: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
2: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
4: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
5: आकाशवाणी रायगढ़ से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश, और अब आप सुनेंगे लता मंगेशकर मोहम्मद रफी के ही स्वर में आपके दीवाने फिल्म का गीत। इसमें किशोर कुमार की भी आवाज़ है, रोशन का संगीत है और इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने। इसे सुनना चाहते हैं ग्राम बेलर गांव से मिथिलेश देवांगन, मधु देवांगन, हिमांशु और अंकित देवांगन। लाल टंकी चौक रायगढ़ से चेतन दास, शीतल दास, सुशीला साहित्या, मनोज मुकेश और अंकित साहित्या। खट्टी महासमुंद से सुभाष शर्मा, छाया शर्मा, कुमुदिनी शर्मा, ओंकार शर्मा, टिकेश्वर साहू और कीर्तन साहू। ईमेल भेज रहे हैं भाटापारा छत्तीसगढ़ से मुकेश्वर साहू, करण साहू और चंपा साहू। आर्यनगर कोहका भिलई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरज जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल, नंदिनी जंघेल। धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल। ग्राम पाहरा अहिवारा जिला दुर्ग से पोषण बंछोर, चंद्रकिरण, प्रीति और छाया बंछोर। लीजिए सुनिए आपसे की ही पसंद पर ये गीत।

0: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
1: अब FM रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे 3 विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल 3 विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम FM रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, यह योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र छोटे अतरमुड़ा रायगढ़।
2: आपके फरमाइशों के क्रम में कार्यक्रम आपकी फरमाइश में अगला ये फरमाइशी गीत चालबाज फिल्म से आप सबने सुनना चाहा, मोहम्मद अजीज और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज है, आनंद बख्शी के वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। पसंदकर्ता श्रोताओं के नाम हम आपको बता दें, जतुका किशनपुर से आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, फिरोज आलम और नाज परवीन, हरदेवलाल पारावार सिमका से रमेश कुमार यादव, माया यादव, रिंकू सन्नी, कोमल यादव, भरत लाल सिन्हा, लव कुमार और लक्की सिन्हा है बाजार पारा बेमेतरा से, जवाहर नगर दुर्ग से RC कामड़े, करुणा, मीना अश्विनी और विपुल कामड़े ने ईमेल भेजा है, शिवाजी चौक कटनी से अनिल ताम्रकार, अमर ताम्रकार, दिलीप वर्मा, संजय सोनी, अरुण कन्नौजिया, पवन यादव, संजीव वर्मा, सुनील जैन, रजन रजक, लालू सोना, मोना हनी यस, और इन सब की फरमाइश अब होगी पूरी।

लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने ये भक्ति गीत सुना, और आइए अब सुनते हैं बेगम अख्तर का गाया मिर्जा गालिब का ये कलाम।

0: उसकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम में अब सुनिए विशाल मिश्रा का गाया ये ओगा फिल्मी गीत। इसे लिखा है कौशल किशोर ने और धुन बनाई है विशाल मिश्रा ने ही।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। आइए सुनते हैं समीर का लिखा ये गैर फिल्मी गीत, आवाजें ऋचा शर्मा और साबरी बंधुओं की।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: लता मंगेशकर की आवाज में हम आपको सुनवा रहे हैं मिर्जा गालिब का ये कलाम।

लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने मिर्जा गालिब का ये कलाम सुना, और आइए अब सुनते हैं संत नानक देव का ये शब्द। गायिका हैं दिलराज कौर।

0: जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
3: कार्यक्रम में अब सुनिए आयुष्मान खुराना की आवाज में ये गैर फिल्मी गीत। इसे लिखा है रोचक कोहली ने।

ये स्वर था आयुष्मान खुराना का। और आइए अब सुनते हैं तनिष्क बागची का लिखा और संगीत बद की आवा, ये गैर फिल्मी गीत, आवाजें गुरु रंधावा और निकिता गांधी की।

कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं अरमान मलिक की आवाज में कुणाल वर्मा का ये गीत।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ईमेल भेजे हैं फिल्म संगीत सुने, यह आकाशवाणी का रायपुर और सराईपाली केंद्र है। 11:55 होने वाले हैं, थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। लीजिए सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। एक दिवसीय प्रवास पर रायपुर पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। एसीबी ने प्रदेश के अलग अलग जिलों में भ्रष्टाचार के मामले में 3 लोगों को किया गिरफ्तार। और मौसम विभाग के अनुसार मानसून के आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज सुबह एक दिवसीय प्रवास पर रायपुर पहुंचे। अपने दौरे के दौरान वे बलबीर जुनेजा इंडोर स्टेडियम में आचार्य पदारोहण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके बाद शाम करीब 4 बजे शांतिनगर में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। श्री बिरला आज शाम दिल्ली लौट जाएंगे। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने कल प्रदेश के 3 अलग अलग जिलों में दबिश देकर भ्रष्टाचार के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। एसीबी की टीम ने कल भिलाई नगर निगम से सेवानिवृत्त चीफ इंजीनियर को भ्रष्टाचार के एक मामले में हिरासत में लिया। इसके अलावा धमतरी में विद्युत यांत्रिकी विभाग में पदस्थ प्रोग्रेस मैन को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। वहीं एसीबी ने जशपुर नगर में आरईएस विभाग के एसडीओ को भी 25,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। कोरिया जिले की कलेक्टर रोक्तिमा यादव ने एक आदेश जारी कर महलपारा बैकुंठपुर नौगई के साथ ही कटघोड़ी स्थित क्रेशर प्लांट एरिया में धारा 163 लागू कर दी है। जारी आदेश के अनुसार किसी भी प्रकार के हथियार और विस्फोटक सामग्री पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जुलूस, धरना प्रदर्शन और आम सभा पर प्रतिबंध लगाया गया है। गौरतलब है कि कोरिया जिले के कटघोड़ी गांव में भाजपा नेता भरत सिंह सहित 3 लोगों की मौत के मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। आगामी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस वर्ष की थीम स्वस्थ आयु के लिए योग रखी गई है। योग दिवस के आयोजन को लेकर छत्तीसगढ़ में तैयारियां अंतिम चरण में हैं। राज्यपाल रमेश डेका राजधानी रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मुख्य अतिथि में सरगुजा जिले में सुबह 7 बजे सामूहिक योगाभ्यास किया जाएगा। इसके अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू बिलासपुर, उप मुख्यमंत्री अरुण साव दुर्ग, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा कबीरधाम और विधानसभा अध्यक्ष डॉ. अमर सिंह राजनांदगांव में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। इसी प्रकार अन्य जिलों में भी आयोजित होने वाले योग कार्यक्रमों में मंत्री, सांसद और विधायक मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। राजधानी रायपुर में पहली बार ईस्टर्न स्लैम 2026 का आयोजन किया जाएगा। इसके तहत 22 से 27 जून तक बूढ़ापारा स्थित स्क्वैश कॉम्प्लेक्स में प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इसमें सिंगापुर सहित भारत के 21 राज्यों से लगभग 350 जूनियर और सीनियर खिलाड़ी भाग लेंगे। टूर्नामेंट के लिए $2,000 की पुरस्कार राशि निर्धारित की गई है। आकाशवाणी रायपुर के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा 19 शासकीय भर्ती परीक्षाएं पास कर अनोखा रिकॉर्ड बनाने वाली चारू पांडे से लिए गए साक्षात्कार का प्रसारण आज किया जाएगा। इस विशेष

0: भेंटवार्ता को रात 8:15 से 8:30 तक सुना जा सकता है। इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आंधी चलने की संभावना है। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी आज ऐसा ही मौसम रहेगा। बेमेतरा जिले के शासकीय पंडित जवाहरलाल नेहरू कला एवं विज्ञान महाविद्यालय में आज एक दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। रोजगार मेले में विभिन्न प्रतिष्ठित निजी संस्थानों द्वारा 1600 से अधिक रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। वहीं धमतरी के कंपोजिट भवन स्थित जिला रोजगार कार्यालय में 23 जून को रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें निजी क्षेत्र के नियोजकों द्वारा 690 पदों पर भर्ती की जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। एक दिवसीय प्रवास पर रायपुर पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। एसीबी ने प्रदेश के अलग अलग जिलों में भ्रष्टाचार के मामले में 3 लोगों को किया गिरफ्तार। और मौसम विभाग के अनुसार मानसून के आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। मीडियम वेव 305.8 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रायपुर और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये सरायपाली।
2: प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। श्री मोदी का आज पेरिस में भारत फ्रांस आर्थिक और औद्योगिक सहयोग बढ़ाने के लिए फ्रांस के प्रमुख व्यापार जगत प्रतिनिधियों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें करने का भी कार्यक्रम है।
3: प्रधानमंत्री अपनी चर्चाओं की शुरुआत सिंधगोबा के चेयरमैन और सीईओ बनवा बेजा के साथ करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग और टिकाऊ बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है। वह स्मार्ट मोबिलिटी और रेल आधुनिकीकरण के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं को तलाशने के लिए एल्स्टॉम के सीईओ से भी मुलाकात करेंगे। प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नवाचार और जिम्मेदार एआई गवर्नेंस पर विस्तार एआई के सह संस्थापक और सीईओ आर्थर मेंच के साथ बातचीत करेंगे। इन बैठकों का समापन सीएमए सीजीएम ग्रुप के चेयरमैन और सीईओ रोदाल सादे के साथ होगा, जहां समुद्री व्यापार, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण और मजबूत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। ये बैठकें भारत और फ्रांस के बीच बढ़ते आर्थिक संबंधों को रेखांकित करती है। आकाशवाणी समाचार के लिए पेरिस, फ्रांस से महेश सोपड़े।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और ओडिशा के 5 दिन के दौरे पर हैं। वे आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेंगी। राष्ट्रपति कल ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस समारोह में शामिल होंगी। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार बैद्यनाथ राम, कांग्रेस के उम्मीदवार प्रणव झा और निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी मैदान में हैं। सुबह 9 बजे शुरू हुआ मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल नागपुर के अंबा झारी स्थित आयुध कारखाने में यंत्र इंडिया लिमिटेड की 10,000 टन क्षमता वाली एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन प्रेस की आधारशिला रखेंगे। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इससे महत्वपूर्ण एल्यूमिनियम एक्सट्रूडेड घटकों के आयात पर निर्भरता कम होगी और स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष विकास और विरासत के संगम का स्वर्णिम कालखंड रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस दौरान एक ओर श्री राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और उज्जैन महाकाल लोक का निर्माण हुआ, तो वहीं दूसरी ओर विश्वस्तरीय कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर तथा मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने देश की विकास यात्रा को अभूतपूर्व गति दी है। श्री शाह ने कहा कि 1 करोड़ अभिलेखों का डिजिटलीकरण, 668 प्राचीन कलाकृतियों की वापसी, 11 जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालयों की स्थापना और 11 भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलना स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि विकास और विरासत एक दूसरे के पूरक हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राष्ट्रीय राजधानी में तीन

0: देश के युवाओं को अमृत पीढ़ी बताया जो 2047 तक विकसित भारत की यात्रा का नेतृत्व करेगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज बताया कि चेन्नई से चमड़े के सामान और ऑटो पार्ट्स सहित कई वस्तुएं लेकर पहला कार्गो विमान नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतर चुका है। हवाई अड्डे पर दो दिन पहले वाणिज्यिक परिचालन शुरू हुआ था। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में कल रात एक सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मौत की खबर है। मृतकों में 4 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि यह हादसा लगभग रात 2 बजे हुआ। शुरुआती जांच के मुताबिक दुर्घटना वाहन के अनियंत्रित होकर खाई में गिर जाने से हुई। भारत ने लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हराया। इसके अलावा भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। तीसरा और अंतिम मैच शनिवार को चेन्नई में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, यादों की महफिल। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। इस सभा में, इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का स्वागत है दोस्तों। और आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं मशहूर यानी जाने माने संगीतकार मदन मोहन के संगीतबद्ध किए कुछ फिल्मी गीत। यह है इस कार्यक्रम का पहला गीत, आवाज लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम दिल की राहें, गीतकार नक्श लाहिलपुरी।

लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने फिल्म दिल की राहें का ये गीत सुना। गीतकार नक्श लायलपुरी और संगीतकार मदन मोहन थे। आइए अगला गीत सुनते हैं। इसे लिखा है राजा मेहदी अली खान ने, स्वर लता मंगेशकर का, और फिल्म का नाम वो कौन थी।

0: शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आज़मी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आज़मी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: मदन मोहन के संगीत निर्देशन में राजेंद्र कृष्ण का लिखा गीत सुनिए, आवाज मोहम्मद रफी की, और ये फिल्म है शराबी।

मोहम्मद रफी की आवाज में अभी अपनी फिल्म शराबी का ये गीत सुना। आइए इसी आवाज में अगला गीत फिल्म नौनिहाल से हम आपको सुनवा रहे हैं। गीतकार हैं कैफी आजमी और संगीतकार मदन मोहन।

0: की बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और आशा भोसले को, फिल्म का नाम है जहां आरा, रचना राजेंद्र कृष्ण की और धुन मदन मोहन की।

लता मंगेशकर और आशा भोंसले की आवाजों में यह था फिल्म जहां आरा का गीत। कार्यक्रम का अगला गीत कैफी आजमी का लिखा हुआ, मदन मोहन का संगीतबद्ध किया हुआ है लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म हंसते जख्म से हमने लिया है।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: यादों की महफिल कार्यक्रम की अगली पेशकश मजरूह सुल्तानपुरी की रचना है, आवाज लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम है दस्तक।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूलें कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
3: खून से है क्यों भीगा जिसमें ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
2: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
4: एक टुकड़ा धूप का।
2: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
3: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
2: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं मदन मोहन के संगीत निर्देशन में कैफी आजमी का लिखा गीत, आवाज एक बार फिर लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम है महाराजा।

लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने फिल्म महाराजा का ये गीत सुना। गीतकार थे कैफी आजमी। और आज इस कार्यक्रम में हमने आपको मदन मोहन के संगीतबद्ध किए कुछ फिल्मी गीत सुनवाए। और अब यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर बस कुछ ही पलों में।

तो प्रस्तुत है आपका पसंदीदा कार्यक्रम सुरीला सफर। सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार जी। तो बताइए श्रोताओं, कैसे हैं आप लोग? कैसा चल रहा है जिंदगी का सफर? अच्छा चल रहा है ना? आहा, कभी कभी नाव हिचको लिखा जाती है ना? कोई बात नहीं, यही तो जिंदगी का असली सफर है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि सफर कैसा होना चाहिए तो आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, आप यही कहेंगे जो मैं कह रही हूँ कि सफर तनाव मुक्त होना चाहिए, रोमांचक होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए और साथ में एक प्यारा सा हम सफर भी होना चाहिए ताकि जिंदगी बहुत मजे से निकल जाए, क्यों है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सुरीला सफर, क्योंकि इधर हम हैं और उधर आप, और मिलकर ये प्यारा सा सफर हम आज तय करेंगे। तो चलिए आज चलते हैं समुद्री यात्रा पर। नौका विहार करते हैं। डरिए नहीं, डरिए नहीं भाई, आज के समय में भी समुद्री यात्रा खास तौर से आज के समय में काफी सुरक्षित और आसान हो गई है, और ये यात्रा करना बहुत रोमांचक हो जाता है। एक शानदार अनुभव हमारी जिंदगी से जुड़ जाता है। नीला पानी, ताजी हवा और प्रकृति की विशालता का एहसास होता है हमें। बस थोड़ा सा मानसिक रूप से हमें मजबूत होना पड़ता है। तो चलिए हो जाते हैं तैयार और चलते हैं आज नौका विहार पर, है ना? तो आप हमारा इशारा समझ गए हैं कि आज इस कार्यक्रम में हमने वही गीत चुने हैं जो नावों पर फिल्माए गए हैं, और इन गीतों में मुख्य रूप से रोमांस, आशा या अपने प्यार की तलाश जैसा भाव छुपा है। तो जो श्रोता हमारे फेसबुक पेज से जुड़े हैं उन्होंने तो अपने विचार लिख दिए हैं, और खुशी की बात यह है कि आज बहुत सारे गीत आपकी पसंद और हमारी पसंद के मेल खा रहे हैं। हाँ, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। और जो लोग हमसे जुड़ना चाहते

नौशाद साहब के संगीत निर्देशन में अभी आपने शकील बदायूनी का लिखा ये गीत सुना। आवाजें लता मंगेशकर और साथियों की थी। फिल्म का नाम था उड़न खटोला। तो भाई आज तो इस नौका यात्रा पर हमारे बहुत सारे श्रोता शामिल हो गए हैं और एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत बड़ी नाव लेकर चलना होगा क्योंकि बहुत सारे श्रोता आज जुड़ गए हैं। तो चलिए इस नौका यात्रा पर जब हम निकल ही गए हैं तो डरना कैसा है ना भाई। ध्यान से रहिएगा, डरिएगा नहीं। सब अपनी अपनी भूमिका अच्छे से तय कीजिएगा, ठीक है। तो हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि भाई आज का ये पैराग्राफ मुख्य रूप से जो आपने लिखा है यानी मैंने जो इबारत लिखी है दार्शनिक और आध्यात्मिक भावनाओं से जुड़ी है जिसे काव्यात्मक और मनोरंजक शैली में पिरोया गया है। इसमें जीवन के उतार चढ़ाव को एक यात्रा के रूप में दिखाया गया है और आप लिखते हैं कि इसमें प्रमुख भावनाएं शामिल हैं वैराग्य, स्वीकृति, जीवन की अनिश्चितताएं और भी बहुत सारी भावनाएं, सहजता से स्वीकार करने का भाव, कठिन परिस्थितियां, तूफानी यात्रा में किसी योग्य गुरु मल्ला या आध्यात्मिक ज्ञान की जो हमें तलाश करनी होती है उसके बारे में भी इस इबारत में आपने लिखा है। तो हमारे श्रोता ने बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात कही है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जिंदगी की इस नैया को पार लगाने के लिए हमें न जाने कितने तूफानों का सामना करना पड़ता है। सुख दुख के थपेड़ों के बीच जब हमारी ये नाव डगमगाने लगती है तब दिल किसी मझधार या भंवर में फंसा हुआ महसूस करता है। ऐसे वक्त में जब दूर दूर तक कोई किनारा दिखाई न दे तो उम्मीद का दामन थामे रहना ही समझदारी है। इस जीवन रूपी कठिन यात्रा में सही राह दिखाने के लिए हमेशा एक कुशल मल्लाह यानी मांझी या सच्चे मार्गदर्शक की जरूरत होती है जो इस कश्ती को सुरक्षित किनारे तक पहुंचा सके।

जी तो हमारे श्रोता जो फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं उन्हें हम आज की इबारत भी बता दें। हमने एक छोटी सी इबारत आपके लिए लिखी है जिसे आप आसानी से समझ सकें और अपनी बात लिख सकें। हमने आज लिखा था कि जीवन रूपी नैया और हमारा ये जीवन का भटकाव हमें ये बताता है कि जिंदगी के सफर में हम ता उम्र भंवर यानी मझदार में खुद को फंसावा पाते हैं। जीवन रूपी सफर में जब कोई किनारा नजर न आए तो हर पल को स्वीकारना ही इस नैया को पार लगाने जैसा होता है। जब भी जीवन रूपी नाव डगमगाए तो जान लीजिए कि इस तूफानी यात्रा को शुरू को पूरा करने के लिए एक योग्य मल्लाह या आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता है। तो ये आज की इबारत थी जिसमें कोई ऐसा शब्द नहीं है जो हमारे द्वारा चुने गए गीतों से मेल खाता हो। आज हमने वो शब्द नहीं रखे ताकि आप श्रोता थोड़ा सा सरलता से गीत चुन सकें, इसीलिए आप सबकी खातिर हमने आज थोड़ा सा इस इबारत को इस रूप में रचा और एक शब्द नैया जिस पर आज हमने कार्यक्रम केंद्रित किया यानी कि सुरीला सफर हम आज इस नाव पर करने वाले हैं। जो गाने नावों पर फिल्माए गए हैं उसी पर आज हमने इस सुरीली यात्रा को रखा है। तो कैसी लगेगी आपको ये यात्रा तो ये कार्यक्रम के अंत में हमें पता लगेगा। इस बीच हम दो सवाल आपके लिए लाए हैं हमेशा की तरह। बहुत ही सीधे साधे सवाल हैं कि आप किसी नौका विहार पर कभी गए हैं? हमारे एक दो श्रोताओं ने लिखा भी है तो आप भी बताइए कहाँ गए थे, कैसे गए थे, क्या रहा नौका विहार का, वो वर्णन आप कर सकते हैं कम से कम शब्दों में। आपको ज्यादा से ज्यादा अपनी बात कहनी है। और हाँ, नौका विहार पर फिल्माए गए गीतों में आपकी पसंद का कोई गीत जिसे आप बहुत पसंद करते हो, वैसे तो आपने बहुत सारे गीतों को लिखा है लेकिन आप जो बहुत गीत को पसंद करते हो और आपकी नज़र में वो गीत बहुत ही शानदार तरीके से फिल्माया गया है। उदाहरण के लिए अगर मैं बात करती हूँ कि मैं अपनी बात करती हूँ कि फिल्म कश्मीर की कली का गीत जो है ना, ये चांद सा रोशन चेहरा तो वो गीत जो है मुझे बहुत पसंद आता है क्योंकि डल झील श्रीनगर की जो हसीन वादियों में शिकारा पर फिल्माया गया गीत है और शिकारा की जो धीमी गति है और बैकग्राउंड में आपने देखा खूब सारे जो हैं कश्मीरी हाउस बोट्स रखे हुए हैं और वो अपनी बारीक हस्तशिल्प कला से एक शानदार नायाब नमूने हैं। तो कितना सुंदर समा लगता है इस गीत को सुनने के बाद, देखने के बाद। और शम्मी कपूर साहब के तो कहने ही क्या, जब वो जिस एक झटकते अंदाज में अपनी बात कहते हैं। तो इस तरह से आपको भी कोई गीत पसंद होगा उसका जिक्र करें। चलिए चलते हैं अगले गीत की ओर। आवाज़ें लता मंगेशकर और साथियों की, ये फिल्म है सवेरा। गीतकार हैं शैलेंद्र और संगीत दिया है शैलेश ने।

अच्छा बताइएगा कि ये गीत फिल्माते समय आपको कौन से नायक और नायिका एक नाव पर बैठे दिखे, और साथ ही हमने आपको बताया था कि संगीतकार है शैलेश, ये संगीतकार कौन से हैं, इनका पूरा नाम क्या है, आपको ये भी बताना है।

तो ये था फिल्म सवेरा का गाना। आवाजें लता मंगेशकर और साथियों की थी। गीतकार थे शैलेंद्र और संगीतकार थे शैलेश। इनका पूरा नाम आपको बताना है और साथ ही ये भी बताना है कि ये गीत यानी ये गीत जो फिल्माया गया है इसमें कौन नायक और नायिका एक नाव पर अलग से बैठे हैं और बाकी दूसरी नावों पर एक कोरस गान हो रहा है जो कि अभी आपने सुना था। हमारे श्रोता का कहना है कि जिंदगी तो एक नैया है जिस पर एक नाव को तूफानी दरिया में पार लगाने के लिए धैर्य संतुलन और सही दिशा की जरूरत होती है। वैसे ही जीवन रूपी नैया को संभालने के लिए कुछ बातों का संतुलन रखना पड़ता है। जीवन में काम परिवार और अपने व्यक्तिगत समय के बीच संतुलन बनाना बेहद जरूरी हो जाता है। जैसे नैया पानी के बहाव के साथ चलती है जिंदगी में उसी तरह दिशा रखनी पड़ती है और इन सबको संभालने के लिए धैर्य सहन शक्ति की जरूरत होती है। जब जीवन में परिस्थितियां विपरीत जाएं तो घबराने के बजाय धैर्य रखें और सही समय का इंतजार करें क्योंकि सिर्फ खेवैया है जो पार तो वो ऊपर वाले के हाथ में है। जीवन का ये सफर निश्चित रूप से कठिन है लेकिन चुनौतियों का सामना करने से ही अनुभव और मजबूती मिलती है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता का लिखना है कि आज बहुत ही गहरी और दार्शनिक सोच के साथ गद्यांश को रखा गया है और सिर्फ एक शब्द नैया पर ही इसे सीमित कर एक बार फिर नई पहल की है। वैसे आपके नाम में भी नदी का रूप है। अरे वाह क्या बात है, आपको हमारे नाम का अर्थ पता है। आपने लिखा है कि जिंदगी के जल भ्रम में जब जीवन नैया फंस जाए तब जीवन में आए इस तूफानों से विचलित न हो और विश्वास साहस धैर्य सत्कर्म सकारात्मकता और सच्ची श्रद्धा की पतवार थामे तुम अपनी जीवन नैया को खेते जाओ। तब भगवान केवट बनकर इस भवसागर में जीवन नैया को जरूर पार लगाइए। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि प्रदत्त इबारत में संगीत में सुरीला सफर संजीवन भवसागर पार लगाने की महात्म्य पर बखान है। सकारात्मक विचार को पतवार बनाकर जीवन नैया को खेते रहें। जीवन के ज्वार भाटा तूफानी थपेड़ों को सिर झुकाकर सामना कर जीवन नैया चलाते रहें। कभी भी ये सफर किसी भंवर में नहीं फंसेगा। सागर की तरह अपने आंतरिक तूफान को अपने तक हृदयंगम कर शांतचित रहना चाहिए। तूफान सामयिक होते हैं, स्थायी नहीं। नवकल्पना नए रूप की सुरीली सफर स्मरणीय होगी और क्यों न हो स्वयं मंदाकिनी साक्षात संग चलेगी। क्या बात है, क्या बात है। और हाँ, हमारे श्रोता तो भाई बड़ी अच्छी बात लिखते हैं और बड़े प्यारे अंदाज में अपनी बात कहते हैं। एक श्रोता लिख रही है कि आज तो बड़ी ही प्यारी इबारत के साथ आप आई हैं और हमें लग रहा है कि आज आप ही नाव में बैठकर आने वाली है। प्रोग्राम में अगर ऐसा है तो रास्ते में हमारा घर भी आएगा, हमें भी उसी नाव में बिठा ले रहा है। इस बारे हम विविध भारती भी देख लेंगे और मुंबई शहर भी। हम इंतजार करेंगे, 1 बजे से पहले पहुँचना भी तो है। बिल्कुल सही कहा, हम नाव पर सवार ही हैं। आज हम सभी इस नाव पर और जीवन रूपी नैया पर तो हम वैसे ही भी सब सवार ही हैं, लेकिन हाँ इस कार्यक्रम में खास नौका विहार पर हम आज निकले हैं तो मजा लेते हैं इस नौका विहार का। और बताइए हमें कि भाई जो 2 गीत हमने आपको सुनवाए वो आपकी लिस्ट में शामिल थे कि नहीं। थे मुझे पता है क्योंकि मैंने देख लिया है। लेकिन जिन श्रोताओं की लिस्ट में वो गीत शामिल नहीं थे तो कोई बात नहीं, नौका विहार का तो हम आनंद ले ही रहे हैं, है ना।

लता मंगेशकर और साथी थे, फिल्म का नाम था चोरी चोरी। हमारे दो सवाल आपने नोट कर लिए होंगे कि आप कभी किसी नौका विहार पर गए, बताइए उसके बारे में, कब गए, कहां गए और कैसा रहा नौका विहार। और हमारा दूसरा सवाल ये था कि नौका विहार पर फिल्माए गए गीत जो आज हम बजा रहे हैं या जो गीत फिल्माए गए हैं, वो आपको सबसे, जो आपकी पसंद का गीत है वो कौन सा है और क्यों पसंद है, उसकी फिल्मोग्राफी मतलब किस तरह से डायरेक्टर ने उस फिल्म को, उस गीत को फिल्माया है, उसके बारे में कम से कम शब्दों में बताइएगा। जैसे कि हमने आपको फिल्म कश्मीर की कली का उदाहरण दिया कि उसमें जिस तरह से गीत को फिल्माया गया है वो मुझे खासतौर से बेहद खूबसूरत लगता है।

हमारे एक श्रोता का कहना है कि जीवन रूपी नैया को पार तो सिर्फ एक खेवैया ही लगा सकता है और वो है हमारे प्रभु श्री राम, लेकिन ईश्वर भी उसी का साथ देते हैं जो खुद अपना साथ देता है। इसलिए इस जीवन रूपी नाव को बड़ी समझदारी और सच्चाई से खेते जाइए और फिर हम पार हो ही जाएंगे। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि अपने पापा की पोस्टिंग के कारण मेरा बचपन प्रयागराज यानी तत्कालीन इलाहाबाद में बीता। प्रयागराज में यमुना जी के तट से संगम तक मैंने अपने माता पिता और भाई बहनों के साथ कई बार नौका विहार का आनंद लिया, जो बेहद मनोरम लगता है। पिछले वर्ष दिसंबर में चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के रामघाट पर पत्नी और बेटी के साथ मैंने नौका विहार किया है। इससे पूर्व भी चित्रकूट में कई बार हम लोग नौका विहार का आनंद ले चुके हैं। मजे की बात तो यह है कि आज के कार्यक्रम को पेश करने वाली भी वही है जिनका नाम चित्रकूट में, और एक क्या कहें आपकी तारीफ के लिए, सर आंखों पर। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि ये पंक्तियां जीवन के उस शाश्वत सत्य को रेखांकित करती हैं जिससे हर इंसान कभी न कभी गुजरता है। हम अक्सर जीवन को एक सीधी लकीर मान लेते हैं, लेकिन हकीकत में ये एक अनिश्चित समंदर है जहां भंवर जिन्हें हम चुनौतियां कह सकते हैं और मजेदार जो असमंजस का पर्याय है का आना तय है। ये विचार हमें सिखाता है कि जब जिंदगी की नाव डगमगाए तो घबराने की बजाय अपनी स्वीकार्यता की पतवार को थामे और ज्ञान के मल्लाह पर भरोसा रखें, नैया पार लग ही जाएगी। चलिए तो नौका विहार पर जब हम निकले हैं तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं फिल्म आवारा का गीत। क्या ये गीत आपकी लिस्ट में है? जरा खंगालिए। आवाजें हैं मोहम्मद रफी और साथियों की, शैलेंद्र की बोल, शंकर जयकिशन की धुन।

हमारे श्रोता का कहना है कि नाव वैसे तो समुद्र किनारे रहने वाले मछुआरों की जीविका का प्रमुख साधन है, लेकिन फिल्मकारों ने नाव पर बेहतरीन गाने फिल्माए हैं। पाकिजा का चलो दिलदार चलो तो कश्मीर की गली का ये चांद सा रोशन चेहरा और जिस गली में तेरा घर, चिंगारी कोई भड़के, ऐसे बहुत सारे गाने हैं जो सुनते सुनते कभी मन भरता ही नहीं है। आज नौकामय संगीत का सफर आनंदमय होगा ऐसा हम मानते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि माँ जी तेरी कश्ती के तलबगार बहुत हैं, इस पार कुछ मगर उस पार बहुत हैं, जिस शहर में तूने खोली है शीशे की दुकान उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत हैं। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता का कहना है कि इस कश्ती की भी अजब बात है, अक्सर दूसरों को पार करवा कर खुद पानी में ही रह जाती है। इंसान और नाव में बस इतना ही फर्क है। क्या खूब बात कही है आपने। एक श्रोता लिखते हैं कि नदी के किनारे घाट पर बैठकर चांदी से चमकती लहरों के बीच धीमे धीमे चलती नाव देखने का जो सुख है वो अवर्णनीय है। ये पल बिल्कुल ऐसा है जैसे दिन और ढलती शाम के बीच कोई मीठी सी बात हो जो सिर्फ शांत लहरों के बीच

सुनी जा सकती है। नदी की लहरों पर नाव में बैठे हुए अपनी परछाई इस खूबसूरत पल को चुपचाप निहारती रहती है। सब कुछ सादा और प्यारा, पेड़ों की धुंधली सी दिखाई देती पंक्तियां, गीली घास की गंध अंधकार को चीरता हुआ नदी किनारे स्थित मंदिर का कलश, ये सब नदी के हृदय है। और चप्पू चलाता मांझी पानी के सुर से सुर मिलाकर पूरी कायनात को जैसे संगीत से भर देता है। बहुत सुंदर क्लासिक लिखी है आपने इबारत। वही एक श्रोता लिखते हैं कि रामायण में जब भगवान श्री राम जी केवट की नाव में जाते हैं तो पहले माता सीता जी को हाथ पकड़कर नाव में चढ़ाते हैं, यानी कि कोई भी यात्रा हो धर्म पत्नी को आगे रखकर उसके बिना यात्रा पूरी नहीं होती है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज की जो इबारत है आध्यात्मिक चौखट पर लाने का एक अच्छा प्रयास किया गया है और इस भव सागर में विभिन्न प्रकार के भव जंजाल रूपी उर्मियों से ही हिचकोले खाती जीवन रूपी नैया को पार लगाने हेतु कुशल ही नहीं अपितु चतुर सेवक केवट जैसे मल्लाह की अपेक्षा की गई है। ये हर एक के हिचकोले खाती जीवन रूपी नैया को पार करते रहने का बहुत ही सरल उपाय है, किंतु इस दर तक भी कितने पहुंच पाते हैं, और वो भी जबकि हम केवल इतने शब्दों के बीच जीवन नैया पे ही उलझे रहेंगे, फिर मल्लाह के गुण और अवगुणों पर कैसे पहुंच पाएंगे। अरे भाई, इसके लिए हमें कुशल ही नहीं अपितु चतुर नाविक भी तो बनना पड़ेगा। बहुत सुंदर इबारत लिख रहे हैं हमारे श्रोता, हमें तो पढ़कर बड़ा मजा आ रहा है। एक श्रोता लिखते हैं कि नैया जब पानी पर उतरती है तो लहरों से समझौता नहीं करती, उनसे रिश्ता बना लेती है, शायद इसलिए वो हर मुश्किल सफर को आसान बना देती है। किनारे पर खड़ी नैया सुरक्षित जरूर रहती है, लेकिन उसकी असली पहचान तो सफर से ही बनती है। एक श्रोता का लिखना है कि आज की इबारत तो सीधे तौर पर जीवन और अध्यात्म से जुड़ी है। जीवन की क्षणिकता, नश्वरता, प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवन जीने के साहस का प्रतीक है। मनुष्य जीवन एक कागज की नाव के समरूप है। मानव जीवन शरीर सांसारिक आशाओं का द्योतक है। जिस प्रकार कागज की बनी नाव का संसार रूपी सागर के अथाह पानी की अनंत गहराई में कोई अस्तित्व नहीं हो सकता, उसी प्रकार मनुष्य जीवन भी क्षणभंगुर होता है। बहुत सुंदर, आपने अब सभी ने अपनी इबारत हमें लिख भेजी है। मन तो कर रहा है कि इन इबारतों को पढ़ते ही जाएं, लेकिन अब हमें थोड़ा सा संगीतमय भी होना पड़ेगा। तो आपके लिए लेकर आए हैं हम फिल्म उपहार का गाना, मुकेश और साथियों की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन। ये गाना भी आपकी लिस्ट में शामिल है, जरा खंगालिए है।

हमने आपसे सवाल किया था कि फिल्म सवेरा का जो गीत आपने सुना था ओ परदेसी, उसमें नायक और नायिका कौन बैठे दिखाई देते हैं नाव पर। आपने अभी तक जवाब ही नहीं दिया, हम तो ढूंढ रहे हैं। खैर, आपने जवाब दिया कि नहीं, हमें तो जवाब देना पड़ेगा। मीना कुमारी और अशोक कुमार एक नाव पर अलग से बैठे हुए दिखाई देते हैं। और हमने ये भी पूछा था कि इस फिल्म के संगीतकार कौन है, जिनका नाम हमने शैलेश बताया था। पूरा नाम है शैलेश मुखर्जी। अगर आपने सही जवाब दिया है तो हमें मिल जाएगा, तो हम ज़रूर उसको पढ़ेंगे। और अब हमने जो सवाल हमारे श्रोताओं से किए थे, श्रोताओं ने जवाब देने शुरू कर दिए हैं। आप लिखते हैं कि भाई मेरी लिस्ट में मुकेश जी के गीत बहुत ज़्यादा हैं जो मुझे बहुत पसंद हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि वाह वाह, गीत संगीत में ही खो गए हैं और इस गाने में ही नौकायन में हो गए हैं। माँ जी नैया ढूंढे किनारा, इस गीत से हमें बेहद मज़ा आ रहा है। एक श्रोता लिखते हैं कि ऐसी कोई मौज नहीं जिसको कोई खोज नहीं, कोई ना कोई सबको लगता है प्यार, क्या कहना है इस गीत का। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि नौका विहार तो बहुत बार किया है, पर पन्ना सफारी के दौरान कैन नदी में किया हुआ नौका विहार ताम्र याद रहेगा। साफ स्वच्छ पानी, नीचे तक स्पष्ट दिखाई देती रेत और पत्थर, साथ में चारों ओर घना जंगल, आह क्या ही खूबसूरत नजारा था। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि केवट बड़ा चतुर और होशियार था, उसने प्रभु राम से कहा कि हम और आप दोनों एक ही हैं, मैं नाव से नदी पार करता हूं और आप भवसागर से पार करते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि चेन्नई, गोवा, थाईलैंड, इजिप्ट सभी समुद्र से घिरे हैं और सब जगह घूम के आई हूँ, क्या बात है। थोड़ा सा बताते कैसा लगा आपको वहाँ घूमना, तो हमें भी अच्छा लगता, हम भी मन की आंखों से नौकायन कर लेते। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि कटी पतंग का जो गीत है वो मुझे बेहद पसंद आता है और ये जो गीत आपने बजाया माँ जी नैया, ये गीत बहुत ही प्यारा है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मेरी 14 गीतों की लिखी हुई इबारत में पहले नंबर पर लिखा हुआ गीत शामिल हुआ है माँ जी नैया ढूंढे किनारा, तो बधाई हो आपको। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत सारे गाने हैं जो हमें पसंद हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं बिहार से हूँ जहाँ नदियों पर पुलों की बहुत कमी थी। हमारे ज़माने में गंगा नदी पर एक ही पुल था, इसलिए सभी गंगा पार नावों से ही करते थे। पर मुझे गंगा की वो शाम की याद आ रही है जब मैं और मेरा दोस्त नाव पर यूं ही सवार थे। सूर्य भगवान अस्ताचल में प्रवेश कर चुके थे, आकाश में लालिमा छाई हुई थी और हम दोनों और मेरा नाविक बस इतने ही थे। तभी मेरे दोस्त ने गुनगुनाना शुरू किया, वो शाम कुछ अजीब थी। उस समय मैंने फिल्म खामोशी नहीं देखी थी, लेकिन वो गाना मुझे उस समय बहुत सुंदर लग रहा था। और एक बात मैं आपको कहूं, हमारा अगला गाना भी यही है। हाँ चलिए थोड़े से और संदेश पढ़ लेते हैं, फिर आपको सुनवाते हैं फिल्म खामोशी का ये गीत। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हमारा गीत आपको याद है ना मंदाकिनी जी, याद तो है, लेकिन वो गीत आज हमने शामिल किया है कि नहीं ये तो आपको अंत तक कार्यक्रम में सुनना पड़ेगा। वहीं श्रोता लिखते हैं कि नौका विहार करना मुझे बहुत पसंद है। हम जब कश्मीर घूमने गए थे तब हाउस बोट में 3 दिन रहे और शिकारे पर बैठकर लेक की सैर की। वहीं चार चिनार नामक स्थल देखा। जहां भी घूमने जाती हूं वहां झील होगी तो नौका विहार जरूर करती हूं। केरल में पेरियार नदी में, नैनीताल के झीलों में, अरे वाह आप नैनीताल भी गई, महाबलेश्वर जैसी बहुत सी जगहों का आनंद मैंने लिया है, बहुत खूब। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मैं पहले आसाम में रहता था, तब एक नौका में बैठने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा। उस समय डर भी लगा, सोच रहा था कि उस समय पता नहीं नौका कैसे पार लगेगी नदी पर, साथ में और भी व्यक्ति थे, हौसला बना रहा था। पर उस समय मेरे मन में एक सवाल उठा कि पानी तो बहुत ज्यादा है, इतना जैसे दुनिया में पानी ही पानी है, जमीन तो दिखाई नहीं दे रही, इतना पानी तो शायद पूरी दुनिया को ही डुबो देता है, ऐसा मुझे डर लग रहा था। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत सारी जगह मैंने घूमा है, अभी 2-1 साल पहले ही भेंट द्वारका जाते समय नए समुद्री पुल के उद्घाटन से पहले स्टीमर से समुद्र पार कर बेट द्वारका गए थे और कन्याकुमारी में भी स्वामी विवेकानंद स्मारक स्टीमर से गए। भले ही अपने गंगा जी में नाव पर सवार न हुए हों, लेकिन अमरकंटक नर्मदा नदी पर जाना चाहते हैं। अच्छा, और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि नौका विहार का सबसे अच्छा गाना मुझे लगता है फिल्म सफर का, नदिया चले चले रे तारा तुझको चलना होगा। बहुत ही प्रेरणादायी शब्दों से इस गीत को लिखा है, आदमी कितना ही हताश परेशान हो उस गाने को सुनकर नए उत्साह से आगे बढ़ने की और कूच कर देता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आवारा फिल्म का गाना कम ही सुना है, सिर्फ देखते समय ही सुना है, कयास लगाना कठिन है लेकिन गाना बेहद सुंदर है। तो चलिए सुनते हैं फिल्म खामोशी का गीत किशोर कुमार की आवाज़ में, गुलजार साहब की बोल है, हेमंत कुमार साहब की धुन।

हमारे श्रोता ने लिखा है कि वो शाम कुछ अजीब थी, एक गाना जो अभी आप सुना रहे हैं, वो शाम कुछ अजीब थी मेरा सबसे पसंदीदा नौका विहार का गाना है, जहां प्यार की उत्कटता और विषाद को एक साथ दिखाया गया है और सिर्फ चेहरे के हाव भाव गीत के अनुपम शब्दों को सजीव कर रहे हैं। बहुत सुंदर लिखा है आपने। वही एक श्रोता लिखते हैं कि दिल ने फिर याद किया, फिल्म का शीर्षक गीत का सुंदर नैसर्गिक प्राकृतिक सौंदर्य के बीच नाव का दृश्य मन मोह लेता है। रहमान, धर्मेंद्र और नूतन की प्रभावशाली भूमिका वाली ये जो गीत है वो मुझे बेहद पसंद है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि परदेसियों से ना आंखियां मिलाना वाला गीत मुझे बेहद पसंद है। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि करीब 2000 के आसपास मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा केव्स आते जाते और दूसरे दिन आपके हॉल के कार्यालय के पास के गोराई बीच से एसलवर्ड जाना हुआ था। अच्छा, वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफर में अभी तक जितने भी गीत बजे हैं उनमें से तो एक भी हमारी लिस्ट में नहीं है। अरे, फिर आपकी लिस्ट में कौन से गाने थे? वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म मिलन का गीत मुझे बेहद पसंद है, सुनील दत्त और नूतन जो नाव में बैठकर गाने गाती हैं वो गाना बहुत ही पसंद आता है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आप लोग जो गीत सुनवा रहे हैं वो बहुत ही बकवास गीत हैं, एक भी ऐसा गीत लोकप्रिय नहीं सुनवाया है जिसको सुनकर मन खुश हो। जब हमने विषय सुना था तब लगा था कि एक से बढ़कर एक मनभावन गीत सुनने को मिलने वाले हैं, लेकिन बिल्कुल बेकार चयन किया गया है। क्या कहें आपको, आपकी पसंद और हमारी पसंद शायद नहीं मिलती होगी, यही कह सकते हैं, है ना? वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत बहुत ही शानदार है और वास्तविकता से जुड़ी हुई है। है कौन यहाँ पर जिसकी जीवन रूपी नैया दुखों रूपी तूफानों से न डगमगाई हो, लेकिन जिसने भी सच्चे मन से अपने परम पिता परमेश्वर को याद किया उसका जो है उसकी डगमगाती नहीं है, सही हो गई है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बचपन में कागज की नाव बनाते थे, अब नाती के लिए बनाकर फिर से बचपन को जी लेते हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आप बीच में जो चिंगारी कोई भड़के वाली गीत की धुन सुनवा रही हैं उसमें बहुत ही आनंद आ रहा है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि वैसे तो आज जो गीत आप सुनवा रही हैं वो बेहद पसंद आ रहे हैं और आप ही के नाम पर आधारित नदी पर बात हो रही है, लेकिन हम अगर 1986 की बात करें तो रेलवे सर्विस की परीक्षा देने के लिए कलकत्ता गया था। आने जाने का रेलवे पास रेलवे डिपार्टमेंट ने ही हमें दिया था। परीक्षा देने के बाद भी वो पास 3 दिन तक मान्य था। इस दौरान मैंने कलकत्ता और हावड़ा शहर घूम लिया। इसी दौरान हावड़ा ब्रिज के नीचे बहती हुगली नदी में नाव की सवारी करने का मौका मिला, जो बहुत ही रोमांचित रहा। इसी तरह ब्रिज घाट गढ़मुक्तेश्वर में नाव की सवारी करने का मौका मिला। इसके अलावा दिल्ली में यमुना नदी और कर्तव्य पथ इंडिया गेट के पास बहती हुई धाराओं में भी नैया में सफर करने का मौका मिला है। और उम्मीद करते हैं कि आज ये सभी गाने उन पुरानी यादों को ताजा कर देंगे। बिल्कुल ताजा तो कर ही रहे हैं, आपको लग ही रहा है कि आज हम जो गीत सुनवा रहे हैं आपको अपने उन बीते दिनों की याद आ गई है ना। चलिए सुनते हैं अगला गीत। मुकेश की आवाज, फिल्म का नाम कटी पतंग, आनंद बख्शी की रचना, राहुल देव बर्मन की धुन। आपकी लिस्ट में एक गीत था ना।

हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि दो लफ्जों की है कहानी ये गाना और कहां ले चले हो मुसाफिर दुर्गेश नंदिनी का, ये दोनों गाने अभी तक नहीं बजे क्यों? बिल्कुल सही कहा आपने, दो लफ्जों की है कहानी तो हमने इसलिए नहीं बजाया कि हमने सोचा कि फिर आप श्रोता शिकायत करेंगे कि भाई कितनी बार तो ये गीत और सभाओं में बज गया है और आज फिर इस गाने को मंदाकिनी जी लेकर आ गई है, तो हमने उस गाने को इस कार्यक्रम में शामिल नहीं किया। हाँ, दुर्गेश नंदिनी का गाना तो शामिल नहीं हुआ, चलिए फिर किसी और कार्यक्रम में इस गाने को हम लेकर आएंगे, ठीक है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि अरे वाह क्या बात है, दो जासूस का गीत पुरवैया लेके चलूं वाला, ये तो अब अगला गीत है आपकी पसंद का जो आप सुनने वाले हैं। वही एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे देश में कई लोग ऐसे भी हैं जो अपने घर से रोज नदी या समुद्र के किनारे दूसरे किनारे डेली अप एंड डाउन करते हैं, नौकायन से सफ़र करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, जैसे कि लोग मुंबई में ट्रेन से सफ़र करते हैं, बसों से सफ़र करते हैं, ऐसे नौकायन लोग करते हैं, रोज नौका के द्वारा सफ़र होता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जब हम कनाडा गए वहाँ गाँव नाव में बैठे किसी जन्नत से कम नहीं लगा, हम उसे कैसे बयां करें समझ नहीं आ रहा है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज जो गाने आप सुनवा रही हैं हमें तो ये गाने बहुत पसंद आ रहे हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि एक से बढ़कर एक गाने प्रस्तुत कर तीव्र गति से कार्यक्रम का संचालन प्रशंसनीय है। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि आज वो शाम अजीब हो न हो लेकिन सुरीले सफर की दोपहर बड़ी ही सुंदर हो गई है नौका विहार करते हुए छोटी बहना के संग, क्या बात है, शुक्रिया। एक श्रोता लिखती है कि सिर्फ मुझे ही फील हो रही है आज, हर गीत सुन कम रही हूँ फील ज्यादा कर रही हूँ, हूबहू नाव वाला दृश्य जहन में और जल तरंग की ध्वनि गूंज रही है जैसे तिलस्मी इबारत है ये, क्या बात है। एक श्रोता लिखते हैं कि एक गाना कश्ती का खामोश सफरिया आपने नहीं आज लिया, बिल्कुल नहीं लिया, अगली बार किसी कार्यक्रम में इसे जरूर शामिल करेंगे। वहीं श्रोता लिखते हैं कि मैंने कन्याकुमारी मथुरा थाईलैंड फुकेट दुबई यूएसए नायगरा फॉल पटना से गंगा जी और चंदोद में नर्मदा जी में सभी जगह नौका विहार किया है और मुझे सबसे अच्छा नायगरा फॉल बहुत ही पसंद आया है, क्या बात है। एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म नैया का गीत लेना था, तेरे आने से सज गई ये टूटी फूटी नाव, बिल्कुल सही कहा आपने, इतने सारे गीत हैं किसे लिया जाए किसे छोड़ा जाए समझ नहीं आता है, लेकिन आज हमने उन गीतों को याद किया, ये क्या कम है। चलिए बढ़ते हैं अगले कदम की ओर।

लता मंगेशकर, शैलेंद्र सिंह और साथियों को आपने सुना। फिल्म का नाम था दो जासूस। गीतकार हसरत जयपुरी थे और संगीत दिया था रविंद्र जैन ने। इस गाने के साथ ही आज का सुरीला सफर कार्यक्रम की अब मैं आपसे चाहूंगी इजाजत, ये पूछते हुए कि कैसा लगा आपको आज का ये नौका विहार। अच्छा लगा ना? तो चलिए, याद रखिएगा इस नौका विहार को, मन में संजो कर रखिएगा, भूलिएगा नहीं। इसी उम्मीद के साथ कि आज का ये नौका विहार आपको पसंद आया होगा। अब इस कार्यक्रम से, यानी सुरीला सफर कार्यक्रम से, मंदाकिनी जोशी को दे दें इजाजत। फिर मिलूंगी किसी और कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।

दोस्तों नमस्कार। जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जन्म का मतलब है एक अलग सीमित रूप में आना। जैसे हम जन्म लेते हैं, हम एक नाम, एक शरीर, एक समय और एक कहानी में बंध जाते हैं। ये आना अपने साथ एक वादा या सच्चाई लेकर आता है, वो ये कि ये देह रूप एक दिन चला जाएगा। इसीलिए जन्म के क्षण में ही मृत्यु का बीज बो दिया जाता है। जन्म मृत्यु की ओर पहला कदम है। ये जीवन का सबसे अटल और अनिवार्य सत्य है। हम सब इस हकीकत को जानते हैं, फिर भी मृत्यु के नाम से, उसके भय से ही हमें कपकपी महसूस होने लगती है। यूं देखा जाए तो हर व्यक्ति अपनी जिंदगी की यात्रा में अकेला ही होता है। सुख दुख साझा किए तो जा सकते हैं, लेकिन उन्हें भुगतना तो अकेले ही पड़ता है। जीवन की शुरुआत और अंत तय है, इसीलिए हर पल को पूरी तरह से जीना बहुत महत्वपूर्ण है।

यह कि दिखावे और अहंकार में जीने की बजाय वर्तमान में रहकर अपने कर्मों को सुधारना ही वास्तविक जीवन है। मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जो जीवन हमें मिला है उसे किस तरह जीना है ये तो हमारे हाथ में है। इसीलिए जब तक हम जी रहे हैं और हमारे प्रियजन भी जी रहे हैं, तब तक इस जीवन के एक एक क्षण को जी लें और इस मनुष्य जीवन को सार्थक बनाएं।

दोस्तों, हम यही सुनते आए हैं कि इस संसार का संचालन और नियंत्रण एक सर्वोच्च शक्ति के द्वारा होता है। हर प्राणी में परमात्मा का अंश मौजूद है। संसार का नियम है कि जो इस संसार में आया है उसका अंत निश्चित है। सुख दुख, लाभ हानि और जीवन के उतार चढ़ाव आते जाते रहते हैं। इन्हें समान भाव से स्वीकार कर लेना ही सच्चा ज्ञान है। हर एक चीज का आरंभ उसके अंत के साथ ही होता है। सूर्य का उदय होता है तो अस्त भी होता है। वसंत में नए पत्ते की कोपल फूटती हैं तो पतझड़ में पूरा पत्ता ही गिर जाता है। जब हमारा कोई प्रियजन हमें छोड़कर चला जाता है तब जीवन में एक खालीपन आ जाता है जिसे कोई नहीं भर सकता। ऐसे में कई दुख हमें घेर लेते हैं और जीवन की क्षणभंगुरता को लेकर मन में कई सवाल उठ खड़े होते हैं।

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पेरिस में फ्रांस के प्रमुख व्यापारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री विवाटेक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 18,900 करोड़ रुपए की लागत से 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त करने के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम समझौता लागू, शांति वार्ता के लिए 60 दिन की समय सीमा तय। और भारत ने हॉकी FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। भारत फ्रांस आर्थिक और औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में फ्रांस के शीर्ष कारोबारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी शाम को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवाटेक सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय कार्यक्रमों का नेतृत्व करेंगे। सम्मेलन का समापन प्रधानमंत्री के भाषण के साथ होगा। विवाटेक सम्मेलन यूरोप का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप कार्यक्रम है। विवाटेक सम्मेलन में इस बार भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पवेलियन है, जो भारतीय और यूरोपीय नवाचार तंत्र के बीच साझेदारी की अपार संभावनाओं को दर्शाता है। प्रधानमंत्री एक विशेष प्रवासी कार्यक्रम के दौरान भारतीय समुदाय के सदस्यों को भी संबोधित करेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और संबंधित ग्रामीण संपर्क पहलों के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए 18,900 करोड़ रुपए से अधिक आवंटित किए गए हैं। ग्रामीण सड़क संपर्क परियोजनाओं की प्रगति का आकलन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल ने की। बैठक में आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और अन्य राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। राज्यों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और PM जनमन के अंतर्गत लंबित परियोजनाओं पर तेजी से काम करने का निर्देश दिया गया है। इसमें विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों की बस्तियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष विकास और विरासत के संगम का स्वर्णिम कालखंड रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस दौरान एक ओर श्रीराम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और उज्जैन महाकाल लोक का निर्माण हुआ, तो वहीं दूसरी ओर विश्वस्तरीय कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर तथा मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने देश की विकास यात्रा को अभूतपूर्व गति दी है। श्री शाह ने कहा कि 1 करोड़ अभिलेखों का डिजिटलीकरण, 668 प्राचीन कलाकृतियों की वापसी, 11 जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालयों की स्थापना और 11 भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलना स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि विकास और विरासत एक दूसरे के पूरक हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का उद्घाटन किया। ये शिविर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के अभियान से प्रेरित हैं। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से पात्र नागरिक केंद्र और दिल्ली सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित जानकारी और लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
1: दिल्ली की जनता को अलग अलग विभागों द्वारा जितनी भी योजनाओं का लाभ मिल रहा है या केंद्र की जितनी योजनाओं के लिए वो एलिजिबल हैं, उन सारी योजनाओं के शिविर यहाँ पे सभी विभागों द्वारा लगाए गए हैं। सारी की सारी सुविधाएं अंडर वन रूफ यहाँ पे लोगों को मुहैया कराई जा रही है। पूरी दिल्ली में 42 जगह पे 3 दिन के ये शिविर 18, 19 और 20 तारीख के रहेंगे।
0: युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत ने शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता, खेल, स्वास्थ्य और नागरिक भागीदारी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसरों का निरंतर विस्तार किया है। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री मांडविया ने देश के युवाओं को अमृत पीढ़ी बताया, जो 2047 तक विकसित भारत की यात्रा का नेतृत्व करेगी। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में युवा शक्ति का उपयोग अवसर सृजित करने, आकांक्षाओं को बढ़ावा देने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार

0: आपका फिर स्वागत है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष रथींद्र बोस द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायक ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति कृष्णा राव की एकल पीठ ने टीएमसी विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया। श्री चट्टोपाध्याय ने नेता प्रतिपक्ष पद के लिए अपने नामांकन की अस्वीकृति और ऋतव्रत बनर्जी की नियुक्ति को चुनौती देते हुए याचिका दर्ज की थी। न्यायालय ने प्रतिवादियों को 3 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश और याचिकाकर्ता को जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त 2 सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से अपने गृह राज्य ओडिशा की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित स्वास्थ्य शिविर में शामिल होंगी। वे हाटबद्रा में ब्रह्म कुमारीज के मातृशक्ति भवन, एक विशेष सर्किट हाउस और रायरंगपुर पुलिस जिले का भी उद्घाटन करेंगी। शनिवार को राष्ट्रपति मुर्मू पहाड़पुर का दौरा करेंगी। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इस दौरान कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रायरंगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक स्वास्थ्य शिविर का दौरा करेंगी। वह एक बड़ी इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जलापूर्ति परियोजना का उद्घाटन करेंगी, जिससे कुसमी ब्लॉक के अंतर्गत खनन से प्रभावित 113 गांव लाभान्वित होंगे। इस दौरान राष्ट्रपति सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजना का भी उद्घाटन करेंगी। राष्ट्रपति रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शामिल होंगी। प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज बताया कि चेन्नई से चमड़े के सामान और ऑटो पार्ट्स सहित कई वस्तुएं लेकर पहला कार्गो विमान नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतर चुका है। हवाई अड्डे पर 2 दिन पहले ही वाणिज्यिक परिचालन शुरू हुआ था। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए न केवल कृषि उत्पादन बढ़ाना आवश्यक है, बल्कि खाद्यान्नों का सुरक्षित भंडारण और कुशल वितरण भी जरूरी है। श्री जोशी ने आज नई दिल्ली में भारतीय खाद्य निगम के स्मार्ट वेयरहाउसिंग सिस्टम के उद्घाटन समारोह में ये बात कही। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों को निर्देश दिया है कि वे खाद्य पदार्थों के रखरखाव और प्रसंस्करण के दौरान केवल जंगरोधी चाकू और काटने के अन्य उपकरणों का ही उपयोग करें। खाद्य नियामक के अनुसार ऐसे उपकरणों का उपयोग न करने से भोजन दूषित हो सकता है, जिससे उपभोक्ता सुरक्षा को खतरा है। दिल्ली सरकार ने 21 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा के लिए सभी 97 परीक्षा केंद्रों पर अभिभावकों और परिवार के सदस्यों के लिए कूलिंग जोन की व्यवस्था की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इन कूलिंग जोन में बैठने की व्यवस्था, पीने का पानी, चाय, ORS, प्राथमिक चिकित्सा और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। परीक्षा के दिन परीक्षार्थियों के लिए DTC बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा भी प्रदान की गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच एक ऐतिहासिक संघर्ष विराम समझौता लागू हो गया है। इससे व्यापक शांति समझौते पर बातचीत के लिए 60 दिन की समय सीमा तय हो गई है। स्विट्जरलैंड में होने वाली बैठक से पहले डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित 14 सूत्री समझौते में तत्काल संघर्ष विराम शामिल है। समझौते में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर समाधान के लिए एक ढांचा तैयार किया गया है। समझौते के अंतर्गत अमरीका ईरान के बंदरगाहों से नौसैनिक नाकाबंदी हटाना शुरू करेगा और सामान्य समुद्री यातायात बहाल करने की दिशा में काम करेगा। ईरान 30 दिनों के भीतर होर्मुस जलडमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करेगा।
2: अमेरिका और ईरान ने महीनों से जारी सैन्य टकराव को खत्म करने के मकसद से एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद औपचारिक रूप से एक नई कूटनीतिक प्रक्रिया शुरू की है। इस समझौते में तुरंत युद्ध विराम, होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने और शांति के लिए एक व्यापक समझौते पर बातचीत करने की बात कही गई है। अमेरिका ने समुद्री प्रतिबंधों में ढील देने और प्रतिबंधों से राहत दिलाने की दिशा में काम करने का वादा किया है, जबकि ईरान ने फिर से कहा है कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में अपने संवर्धित यूरेनियम के भंडार को लेकर जताई गई चिंताओं को दूर करने पर सहमत हुआ है। इस समझौते में आर्थिक पुनर्निर्माण और क्षेत्रीय सुरक्षा पर भविष्य में सहयोग के प्रावधान भी शामिल हैं। अब राजनयिकों के सामने अगले 60 दिनों के भीतर इस रूपरेखा को एक बाध्यकारी समझौते में बदलने का मुश्किल भरा काम है। हालांकि समर्थकों ने इस बड़ी कामयाबी का स्वागत करते हुए इसे पश्चिम एशिया में स्थिरता की दिशा में एक अहम कदम बताया है, लेकिन परमाणु सत्यापन, प्रतिबंधों को लागू करने और क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर अभी भी काफी मतभेद बने हुए हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: समझौते के अंतर्गत लेबनान में संघर्ष विराम भी शामिल है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोर ने बताया कि दोनों नेताओं ने आतंकवाद से निपटने, नागरिकों को नशीले पदार्थों और अवैध मादक पदार्थों से बचाने, सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज नई दिल्ली में 2027 की हज यात्रा की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। श्री रिजिजू ने 2026 की हज यात्रा को भारत के इतिहास की सबसे सफल यात्रा बताया। उन्होंने कहा कि भारत को 2026 की हज यात्रा के लिए सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्रालय से 2 लब्बैतुम पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में कल रात एक सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मौत की खबर है। मृतकों में 4 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि यह हादसा लगभग रात 2 बजे हुआ। शुरुआती जांच के मुताबिक दुर्घटना वाहन के अनियंत्रित होकर खाई में गिरने से हुई। हॉकी में भारत ने आज न्यूजीलैंड में आयोजित FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हरा दिया। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला 20 जून को चिली और कोरिया के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने आज सुबह उज्बेकिस्तान को 3-1 से पराजित कर दिया। इससे पहले घाना ने पनामा पर 1-0 की रोमांचक जीत दर्ज की और इंग्लैंड ने क्रोएशिया पर 4-2 की जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। आज रात ग्रुप ए में चेक गणराज्य का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। दूसरे मुकाबले में मैक्सिको और दक्षिण कोरिया आमने सामने होंगे। घरेलू शेयर बाजारों में आज मामूली बढ़त देखी गई। समाचार तैयार किए जाने तक सेंसेक्स 158 अंक बढ़कर 77,314 पर और निफ्टी 41 अंक बढ़कर 24,127 पर कारोबार कर रहा था। अब जानकारी मौसम की। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 से 5 दिनों तक तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। विभाग ने असम, मेघालय, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों में अगले 4 दिनों तक तेज वर्षा जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में अगले 2 दिनों में मूसलाधार वर्षा हो सकती है। दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, ओडिशा और उत्तरी कर्नाटक के आंतरिक हिस्सों में सोमवार तक गरज के साथ आंधी की आशंका है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में फ्रांस के प्रमुख कारोबारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री विवाटेक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 18,900 करोड़ रुपए की लागत से 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त करने के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम समझौता लागू, शांति वार्ता के लिए 60 दिन की समय सीमा तय। और भारत ने हॉकी FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

लीजिए सुनिए कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत। यह आवाज़ लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम है आरजू। गीतकार हसरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन।

0: यह आवाज थी लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम था आरजू।
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
3: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: कार्यक्रम का अगला गीत सलील चौधरी के संगीत निर्देशन में शैलेंद्र का लिखा हुआ, स्वर लता मंगेशकर का है और फिल्म का नाम है चांद और सूरज।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे कार्यक्रम की अगली पेशकश अनिल बिस्वास का संगीत, शैलेंद्र के बोल, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ें, फिल्म का नाम छोटी छोटी बातें।

0: एक जानी मानी पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
3: कार्यक्रम का अगला गीत हमने फिल्म सिकंदर ए आजम से लिया है। गायिका लता मंगेशकर है, रचनाकार राजेंद्र कृष्ण और धुन हंसराज पहल की।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कार्यक्रम का अगला गीत हमने कैफी आजमी का लिखा हुआ लिया है, इसे संगीतबद्ध किया है हेमंत कुमार ने, स्वर हैं लता मंगेशकर और साथियों की, फिल्म का नाम 2 दिल।

0: उनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविद भारती पर।
2: मदन मोहन के संगीत निर्देशन में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत सुनिए। आवाज लता मंगेशकर की है और ये फिल्म है अकेली मत जाइयो।

0: सभी सुनने वालों को चंचल वर्मा का नमस्कार और आरती तुम्हें भी नमस्कार। हमारी बहुत सारी सखियां इस समय में सुन रही हैं।
1: बिल्कुल चंचल, आपको और सभी सखियों को, सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का बहुत बहुत नमस्कार।
0: अब बताते हैं कि भाई आज किन विषयों पर बात होने वाली होगी। तो जैसा हमारे सभी श्रोता जानते हैं, गुरुवार का दिन है और होता है कहानी पद्मश्री की। एक ऐसी महिला जिसने कुछ ऐसा काम किया है जिसे पूरे देश दुनिया में जाना गया, उन्हें मिलता है पद्मश्री, उनकी हम बात करेंगे। तो वो कौन है?
1: वो है बसंती देवी बिष्ट, जो कि उत्तराखंड की पहली महिला जागर लोकगायिका हैं।
0: बिल्कुल, इनके बारे में आज बातचीत होगी।
1: हाँ।
0: और आज एक खास दिन भी है, सतत गैस्ट्रोनॉमी दिवस, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दी जाएगी।
1: बिल्कुल, और आज मुझे कुछ कहना भी होगा, तो उसके अंतर्गत हम बात करेंगे ऑनलाइन शॉपिंग में सबसे बड़ा पछतावा क्या रहा आपका।
0: बिल्कुल, सबका कुछ ना कुछ अनुभव रहा होगा,
1: क्योंकि शॉपिंग सभी करते हैं ऑनलाइन।
0: हाँ।
1: तो आपने अगर शॉपिंग करी है तो उसमें आपने ऐसी क्या चीज ली कि आपको पछतावा कि अब हम कभी नहीं ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे?
0: तो इस बारे में जरूर अपने अनुभव हमारे साथी हमसे साझा करेंगे, और कुछ उपयोगी टिप्स होंगे जो हमारी सखियां हमें बताएंगी कि खाना बनाते समय कौन कौन सी चीजें हैं जो बहुत उपयोगी हो सकती हैं। भाई खाना अगर जल्दी पकाना है तो क्या, तुरंत घर पे मेहमान आ गए तो फटाफट क्या बन सकता है, तो इस तरह के जो
1: भी क्या चीज अगर कुछ कम ज्यादा हो गया है तो उसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं उसके बारे में भी बात।
0: इसके अलावा लंबे समय तक अगर आपको सहेज कर रखना है किसी खाने पीने की चीज को, चाहे वो पकी हुई है या कच्ची है, उसके बारे में भी उपयोगी टिप्स हमें सखियां बता सकती हैं। ये सारी बातें करेंगे विस्तार में, लेकिन पहले गाना सुन लें।
1: हाँ बिल्कुल, गीत सुनते हैं।

0: तो हम बात कर रहे हैं भाई
1: बसंती देवी बिष्ट की
0: जो है उत्तराखंड की पहली जागर गायिका, और हम बता दें कि इनका जन्म हुआ 1953 में उत्तराखंड के चमोली जिले के लुबानी गांव में, और उनकी माँ बहुत अच्छा गाया करती थी, और अपनी माँ के साथ जो वो जो गीत सुनते सुनते बड़ी हुई तो गांव में जो मेले लगते थे, जो त्योहार होते थे, तो माँ के साथ वो गाने भी गाया करती थी, और इसी दौरान गाते गाते उन्हें भी इन गीत से, उस संगीत से, जो लोक संगीत था वहाँ का, उससे प्यार होने लगा। और भाई जब आपके खून में कोई चीज़ रच बस जाती है ना, तो जब आप उस चीज़ को गाते हैं तो वो बड़ी दिल से आवाज़ निकलती है।
1: बिल्कुल, और वो पूरा जो माहौल था ना, वो बचपन से उनको मिल गया था, और गायन के इस प्रेम की वजह से उन्हें पारंपरिक जागर गायन शैली को नई पहचान दिलाने के लिए जाना जाता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो जागर गायन करने वाली पहली प्रमुख महिला कलाकार मानी जाती हैं। ये जागर कला उत्तराखंड की लोक परंपरा से जुड़ी हुई है, जिसमें देवी देवताओं और लोक देवताओं को याद किया जाता है।
0: और आरती ये भी ध्यान देने वाली बात है कि जो जागर शैली परंपरागत रूप से पुरुष पहले प्रस्तुत किया करते, जैसे आपने भी कहा ना कि वो पहली महिला गायिका है, तो महिलाओं के लिए इस क्षेत्र में आ सके ना, इसीलिए इस परंपरा को तोड़ने वाली बसंती देवी ही रही, और तब से लेकर आज तक वो लोक गायन की जो परंपरागत शैली है, यानी कि जागर गायन की हम बात कर रहे हैं, इसको संरक्षित करने के प्रयास में लगी हुई हैं वो, और कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए इसके भी प्रयास कर रही हैं। और उनके बारे में एक बात और भी गौर करने वाली है कि 5वीं कक्षा की जिला बोर्ड परीक्षा में पहला स्थान प्राप्त करने वाली भी वो पहली छात्रा,
1: मतलब बहुत कुछ उन्होंने पहला काम किया है तो, और उन्होंने आगामी 3 वर्षों के लिए आगे की पढ़ाई के लिए प्रति माह 20 रुपए की छात्रवृत्ति से भी सम्मानित किया गया था, लेकिन वो आगे की पढ़ाई जारी नहीं रख सकी क्योंकि उच्च विद्यालय उनके घर और गांव से बहुत दूर था, और गांव के स्कूल में 5वीं कक्षा से आगे की जो पढ़ाई होती है वो नहीं होती थी, और यही मुख्य कारण था कि वो आगे की पढ़ाई अपनी जारी नहीं रख पाई थी।
0: और फिर क्योंकि पहले के ज़माने में भी बच्चियों के विवाह भी छोटी उम्र में हो जाया करते थे, गांव में खासतौर पे ऐसा हुआ करता था, तो उनके साथ भी ऐसा हुआ कि जब वो सिर्फ 15 साल की उम्र थी तो उनका विवाह हो गया, और तोपखाने के एक सैनिक में जो थे उनके साथ उनका विवाह हुआ, और जीवन का अधिकांश समय एक गृहिणी के रूप में ही उन्होंने अपना बिताया। पेशेवर संगीत करियर की शुरुआत उन्होंने की जब वो 40 बरस की हो गई थी, और अपने पति के साथ जब वो जालंधर गई तो वहाँ उन्होंने एक प्राचीन कला केंद्र में फिर से एक बार संगीत सीखने की शुरुआत की, और उनकी बेटी ने उनके शिक्षक के तौर पर हारमोनियम बजाने की शुरुआत की।
1: हाँ, उनकी बेटी के शिक्षक से उन्होंने उन्हें सिखाया था बजाना, तो यहीं से उनके करियर की शुरुआत भी हुई। बाद में उन्होंने भजन, फिल्मी गीत, त्योहारों जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में गाना शुरू किया। इसके बाद उनके पति सेवानिवृत्त हो गए और परिवार देहरादून में जाकर बस गया। बाद में उन्होंने 1996 में नजीबाबाद स्थित अखिल भारतीय रेडियो स्टेशन में काम करना शुरू किया, यानी वो रेडियो से भी जुड़ी हुई थी,
0: और वो श्रेणी की कलाकार
1: थी। देखिए, मतलब जमीनी स्तर से उन्होंने अपना काम करना शुरू किया,
0: और साल 1996 की

0: बात कर रहे हैं, तब वो पहली महिला प्रधान भी बन गई अपने क्षेत्र की। हाँ। और कुछ समय के बाद जब उनको लगा कि बचपन में अपनी माँ और गांव के अन्य बुजुर्गों से जो संगीत की अनूठी शैली की जो प्रतिभा उन्हें मिली है, जिसे जागर गायन कहा जाता है, तो उन्होंने महसूस किया कि लोग इसको गा ही नहीं रहे, इसे भूल रहे हैं, और शास्त्रीय गीतों को खोज करने के लिए अपनी पुरानी धुनों में प्रस्तुत करने का दायित्व इन्होंने फिर संभाल लिया।
1: जी, और बसंती देवी बिष्ट की गायकी थोड़ी नाक से निकलने वाली आवाज और लय की धीमी गति के लिए जानी जाती है, जो उत्तराखंड की गढ़वाली गायन शैली का विशिष्ट रूप माना जाता है। बसंती देवी बिष्ट की सबसे प्रसिद्ध रचनाएं हैं गोरिया रे, धोखेबाज दगड़िया, न्योली, प्यारी सुमना, दाजीव बॉर्डरा और फोन करना, ओ स्याली साली रुकमा, पारा भीरा जादियो और देवारा जारेजू, और भी बहुत सारी हैं।
0: तो हमारे जितने भी सुनने वाले हैं, अगर वो सुन रहे हैं और इस क्षेत्र के वो लोग हैं, तो वो ज़रूर जानते होंगे इन पंक्तियों को, जो तो आपने बताए भी कि उनके प्रसिद्ध गीत कौन से हैं और ये किस तरह गाए जाते हैं, वो इस बारे में भी जानते होंगे।
1: ये रुकमा वाला तो मैंने सुना हुआ है
0: जी। और बसंती देवी की जो उपलब्धियाँ हैं, उनके जो पुरस्कार हैं, अगर इनकी बात करें तो बहुत सारे पुरस्कार इन्हें मिले, और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा राष्ट्रीय मातोश्री अहिल्या देवी सम्मान से उन्हें नवाजा गया। लोक संगीत के क्षेत्र में जो उनका योगदान रहा, इसके लिए उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। तो बात लोक धुनों की हो रही है, एक ऐसा गीत सुने जिसमें कुछ लोक धुन जैसी झलक मिलती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, सुनते हैं।

0: आरती, ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में हम बात कर रहे थे ना कि सबका कुछ ना कुछ अच्छे के साथ साथ बुरे अनुभव भी जुड़े होते हैं।
1: बहुत सारे लोगों के रहते हैं अनुभव, कभी अच्छे भी रहते हैं तो बुरे भी रहते हैं।
0: और आज हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं, अगर कोई बुरा अनुभव रहा और आपको पछतावा हुआ कि क्यों आपने ऑनलाइन शॉपिंग कर ली, इसे तो अच्छा होता कि थोड़ी से हम कष्ट लेते बाजार जाते और वो चीज खरीद लाते।
1: बिल्कुल, क्योंकि बाजार जाके उस चीज को छू के देखना, पकड़ के देखना, उसके बारे में पूरी जानकारी लेना उस दुकानदार से, वो एक अलग बात हो जाती है। और जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो हम उस ऐप पे देखते हैं कि उसके बारे में क्या जानकारी दे रखी है, और पूरी दे रखी है भी कि नहीं वो भी हमें नहीं पता होता है।
0: कई बार तो हम सिर्फ लुभावने ऑफर देखकर वहां से शॉपिंग के लिए चले जाते हैं।
1: बिल्कुल, या हम देखते हैं कि एक के साथ एक फ्री मिल रहा है।
0: हाँ, और जब सामान हमारे पास आता है तो या तो उसकी क्वालिटी बहुत खराब होती है, या तो एक के साथ एक फ्री वाला जो ऑफर हाँ। था ना, वो फ्री की चीज मिली नहीं और हमसे डबल पैसे में वो चीज हमें सिंगल ही दे दी गई। तो इस तरह के अगर अनुभव रहे हैं तो इसके बारे में देखो ना कितने सारे कमेंट्स आ रहे हैं। एक श्रोता हमारे लिखते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग आजकल बहुत सुविधाजनक है, लेकिन कई बार लोग आकर्षक ऑफरों और छूट के चक्कर में ऐसी चीज़ें खरीद लेते हैं जिनकी उन्हें ज़रूरत ही नहीं होती, और बाद में जब सामान उम्मीद के अनुसार नहीं निकलता या फिर बेहतर और कीमत से बेहतर नहीं होता, कीमत कहीं ज़्यादा होती है तो पछतावा होता ही है। इसीलिए ऑनलाइन ख़रीदारी करते समय उत्पाद की जानकारी और उसके जो रिव्यू हैं वो कीमत की जानकारी अच्छी तरह कर लेनी चाहिए।
1: बिल्कुल। और एक और श्रोता है मेरे जो लिखते हैं कि बात कोई भी हो उसके दो पहलू होते हैं, जैसे सिक्के के दो पहलू, उसी तरह ऑनलाइन शॉपिंग के भी दो पहलू होते हैं। आप कोई भी चीज़ कहीं से भी कभी भी घर बैठे ऑर्डर देके मंगवा सकते हैं, खरीद सकते हैं, डिस्काउंट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, अन्य खरीदारों के रेफरेंस पढ़ सकते हैं, फिर भी इसमें नुकसान होने की संभावना रहती है। आप उत्पाद को फिजिकली देखकर या छू नहीं सकते, फिटिंग का भी पता नहीं लगा सकते। उसके अलावा आजकल ऑनलाइन फ्रॉड की ज्यादा संभावना रहती है, असली के बदले नकली उत्पाद भेज दिया जाता है, तब या कोई चीज पसंद नहीं आने पर वापस भेजने के बाद रिफंड प्राप्त करने में ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ये प्रलोभनों से आप बच के रहिए।
0: बिल्कुल, हमें किसी ब्रांड नेम का जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि इतने बड़े ब्रांड का सामान हमें कम कीमत में मिल रहा है, लेकिन उसी की जो दूसरी तीसरी कॉपी होती है, अब दरअसल ये वो वाली कॉपीज होती हैं जिन्हें सेकंड या थर्ड में हम निकाल कई लोग निकालते हैं। तो हमें सिर्फ फोटो देखकर अंदाजा नहीं हो पाता और इस तरह की जो प्रलोभन है उनमें फंसकर हम गलत चीज।
1: बिल्कुल, और कई बार ऐसा होता है ना, जो हम कपड़े मंगाते हैं उसकी फिटिंग उसमें दे रखी होती है जो वो नहीं निकलती, या रंग एकदम अलग होते हैं उससे।
0: हाँ।
1: तो इस तरीके की चीजें भी काफी होती हैं। कपड़ा जो दिया होता है कि ये वाला कपड़ा है, वो कपड़ा भी नहीं होता, तो इस तरीके के फ्रॉड काफी होते हैं।
0: रंग की तो जब आपने बात कही, तो मान लीजिए आपके मेरे दो लोगों के हाथ में अलग अलग फोन है, एक ही रंग पर हम जब पिक्चर क्लिक करते हैं तो आपके फोटो से वो कलर अलग आ सकता है, मेरे फोटो मेरे मोबाइल से जब पिक्चर क्लिक की जाएगी तो उसका रंग थोड़ा अलग हो सकता है। तो इसी तरह की कुछ बातें होती है ऑनलाइन शॉपिंग में, जो रंग हमें दिखते हैं वो असल रंग से थोड़े से भिन्न हो सकते हैं, और किसी भी तरह की चीज हम खरीद सकते हैं ना। तो हमारे एक श्रोता जिन्होंने कुछ पौधे खरीदे वो अपना अनुभव लिख रहे हैं। ऑनलाइन शॉपिंग में पौधों की खरीदारी मैं करती हूँ, कुछ पौधे अच्छे मिलते हैं, कुछ खराब भी निकल जाते हैं, और कुछ पौधे जिनकी मैं खरीदारी करती हूँ वो आम नर्सरी में नहीं मिलते हैं, तो ऑनलाइन ही हमें खरीदने पड़ते हैं।
1: और लेकिन ये चंचल जी, हमने भी मांगा है कई बार पौधे मंगा, जैसे पौधे जब हम मंगाते हैं तो ये देखना चाहिए हमें कि उसमें वो क्या दे रखा है, उसमें पूरी डिटेल क्या रखी कि वो वापस हो सकता है कि नहीं हो सकता, क्योंकि फिर हम बाद में से वापस करने की कोशिश करते हैं तो उसमें लिखा हुआ आता है कि नहीं वापस नहीं हो सकता है ये।
0: इसी बात पर देखिए एक बड़ा अच्छा सा कमेंट है, नॉन रिटर्नेबल आइटम। आगे हमारे श्रोता ने लिखा है कि सामान पसंद ना आने पर पता चलता है कि इसे वापस या एक्सचेंज किया जा सकता है या नहीं, कई बार हिडन चार्जेस भी इसके लिए होते हैं और रिटर्न करने के लिए अलग से शॉपिंग चार्जेस भी देने पड़ जाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो इस तरह की जो भी पॉलिसीज हैं आप उनको पहले से पढ़ना
1: चाहिए
0: ताकि आपके साथ में कोई धोखेबाजी दगाबाजी ना हो।
1: बिल्कुल। एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि कई बार लोग आकर्षक ऑफर्स के और छूट के चक्कर में ऐसी चीजें खरीद लेते हैं जिनकी उन्हें जरूरत नहीं होती, बाद में जब सामान उम्मीद के अनुसार नहीं निकलता या बेहतर कीमत कहीं और मिल जाती है तो उन्हें पछतावा होता है। इसलिए ऑनलाइन खरीदारी करते समय उत्पाद की जानकारी, रिव्यू और कीमत अच्छी तरह से जान लेनी चाहिए।
0: और इसी में आगे एक और कमेंट हमारे श्रोता लिखते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग में सबसे बड़ा पछतावा उम्मीद बनाम हकीकत, यानी एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी के बारे में लिख रहे हैं, इसका शिकार हमें होना पड़ता है। स्क्रीन पर दिखने वाली चीज, चमचमाती चीज जब घर पे पहुंचती है तो वो पूरी तरह से अलग निकलती है। और नॉन रिटर्नेबल आइटम्स भी होते हैं, पसंद ना आने पर पता लगता है कि इसको तो एक्सचेंज किया ही नहीं जा सकता और अलग से हमें बहुत सारा भुगतान करना पड़ जाता है।
1: बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऑनलाइन शॉपिंग में, जब करें तो बहुत ही सोच समझ कर करें कि आपको क्या ख़रीदना है, उसकी ज़रूरत है भी कि नहीं है, इस तरह से करें और पढ़ लें पहले पूरी जो चीज़ें दे रखी हैं कि वो क्या चीज़ है, वो वापस हो सकती है कि नहीं हो सकती है, क्योंकि उसके बाद फिर आपको पछतावा ना होता। कि
0: कुछ बार तो ऐसा भी हो जाता है कि हम तोहफे में देने के लिए कोई चीज़ ले रहे होते हैं, हमने मंगाई बिना खोल कर भी नहीं देखा और वो जिस तरह की पैकिंग में आई थी उसी पर एक और गिफ्ट रैप हमने लगाया और हमने सामने वाले को तोहफे के रूप में वो दे दिया। जब सामने वाले ने खोला तब हमें पता लगता है कि उनके पास कोई अगर कम उच्च स्तरीय वाली चीज़ गई है तो वो जब वो शिकायत करते हैं, नहीं भी करते, सिर्फ कहकर उस बात को बता देते हैं तो बड़ा अफसोस मन में आता है।
1: बिल्कुल, और अच्छा भी नहीं लगता ना कि किसी को एक ऐसे उपहार दे रहे हैं हम और वो भी अच्छा ना निकले, तो ज़रूरी है हम बेहतर होगा कि जितना ज़्यादा हम जा सकें बाहर वहाँ से खरीदें।
0: बिल्कुल, देने वाले की नीयत भले अच्छी थी, उसने उसके लिए कीमत भी अच्छी चुकाई, लेकिन कंपनी ने अगर कोई धोखा किया है तो आपके पास उसका कोई जवाब नहीं होता क्योंकि वो निम्न स्तरीय सामान था। इस तरह की धोखेबाजी ना हो। और भी कमेंट्स हम पढ़ेंगे, पहले एक गीत सुन लें।
1: बिल्कुल, एक गीत सुन लेते हैं।

0: आरती, ये सही है कि ऑनलाइन शॉपिंग ने ख़रीदारी को बहुत आसान बना दिया है, लेकिन कई बार एक क्लिक के बाद में जो हम फैसला हमने लिया था और क्लिक कर दिया वो पछतावे का कारण बन सकता है। और सबसे बड़ा पछतावा अक्सर वो चीज़ होती है जो तस्वीर या विज्ञापनों में बड़ी शानदार दिख रही होती है, लेकिन उम्मीदों पर हमें खरीद नहीं उतरती जब वो हमारे हाथ में होती है। सेल देखकर खरीद लिए जाती हैं चीज़ें, कपड़ों के रंग और गुणवत्ता जो है वो तस्वीरों से बहुत अलग होती है।
1: और एक और श्रोता जो कहते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग से बड़ा में सबसे बड़ा पछतावा, भाई अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये तो ऑनलाइन शॉपिंग करने के निर्णय से पहले ही आपको सोचना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं है, अब एक बार खरीद ही लिया तो मिले रद्दी के सामान को देख कर घबराइए मत, अपितु उसे सीख लेकर अग्रिम खरीदारी बाजार बैठ जाकर ठोक बजाकर ही करिए। जैसे कि कोई सामान खरीदते हैं तो उसे अच्छे से देखभाल करके ही खरीदें, मगर लगता है कि इसके लिए महानगरों में समय का भी अभाव है। और ऐसे में सब्जियों की ऑनलाइन शॉपिंग रात्रि 8 बजे की बात करें तो सस्ती और अच्छी सब्जी प्राय मिल जाती है। ऐसे ही विवेकपूर्ण वस्तुओं की खरीदारी ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन पके हुए भोजन की ऑनलाइन शॉपिंग मेरे ख्याल से नहीं करनी चाहिए।
0: बहुत सही सलाह दी है उन्होंने। और ये बात भी सही है कि जो महानगरों की जिंदगी है, कई बार लोगों के पास काम के चलते समय नहीं होता, त्योहारों का समय जब होता है ना, जब हमें बहुत सारी शॉपिंग करनी होती है, खासतौर पर बाजारों में इतनी भीड़ होती है, तो उस भीड़ में जाने से बचने के लिए भी कई बार लोग ये काम करते हैं। और बहुत सारी चीज़ें अब ऐसी हो गई हैं जो घर पर 5 से 10 मिनट में जब हमें उपलब्ध हो जाती है, घर पर कोई है नहीं सामान लाने के लिए, तब तो उनमें भी धोखाधड़ी हो जाती है, चाहे वो घर के दूध दालें सब्जियां ऐसी चीजें ही क्यों ना हो, तो बिल्कुल सोच समझ कर ही।
1: और बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें जो ऐसी चीजें जो इतनी जरूरी नहीं भी हैं आज ऑनलाइन मंगानी, वो भी ऑनलाइन ही मंगाने लगते हैं कि चलो हम क्या करेंगे बाजार जाके यहीं से मंगा लेते हैं, तो फिर फ्रॉड होने की संभावना भी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि इस तरीके की चीजें पकी हुई जैसे उन्होंने बताया वो चीजें हमें नहीं मंगानी चाहिए ऑनलाइन। और जैसे कि और भी सामान है जो हम बाहर जाके ला सकते हैं आसपास से, तो वो बाहर जाकर ही खरीदारी करनी चाहिए।
0: और हमारे श्रोता लिखते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग में सबसे बड़ा पछतावा होता है गलत साइज़ के कपड़े, खराब क्वालिटी, उत्पादों की तस्वीरों से बिल्कुल अलग दिखाई देना। इनसे बचने के लिए हमेशा ग्राहक समीक्षाएँ यानी रिव्यूज़ जो होते हैं और जो रेटिंग्स दिए जाते हैं और रिफंड की जो नीतियाँ हैं, इन सब चीज़ों को एक बार जाँच लेना चाहिए। केवल प्रतिष्ठित ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का ही उपयोग करना है, यहाँ ऑनलाइन शॉपिंग के मुख्य पछतावे से बचना हमें होगा।
1: बिल्कुल। और चंचल देखो एक अंतराल का समय हो गया
0: जी।

विविध भारती पर कार्यक्रम सखी सहेली चल रहा है और हम बात कर रहे थे ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में। कमेंट्स और भी बहुत सारे हैं, बातें और भी हैं, लेकिन पहले गीत सुन लेते हैं।

0: याद रखोगे कि भूल जाओगे नजराने। तो ये ऑनलाइन शॉपिंग के विषय में ही हमारे जो एक श्रोता हैं वो लिखते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग में सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि अभी फरवरी में छोटी बेटी की शादी थी, बच्चों को ऑनलाइन शॉपिंग करने का कुछ ज़्यादा ही शौक होता है। शादी के कपड़े, बिंदिया, गहने, ड्रेस मटेरियल और भी बहुत कुछ उसने देखा और मंगवाया भी। इसमें से कुछ सामान ऐसा भी आया जो कि दिखाया गया वो नहीं भेजा गया, वापस करने की कोई सुविधा नहीं थी। कुछ कपड़े भी जिस साइज़ के मंगवाए थे उसे साइज़ में आए ही नहीं। जूते चप्पलों का भी यही हाल था। इसे नुकसान भी हुआ क्योंकि वापस भेजने की सुविधा नहीं थी। कुछ कंपनियों ने जैसा कहा था वैसा ही भिजवाया तब अच्छा लगा। तो मेरा तो अनुभव ये रहा कि सामान वही मंगवाना चाहिए जिसमें वापस भेजने की सुविधा हो, नहीं तो हमें धोखा हो सकता है।
1: हमारे एक श्रोता का कमेंट है, उफ ये ऑनलाइन शॉपिंग कभी खुशी कभी गम। अभी हाल ही ऑर्डर किया गया एक सामान है, उम्मीद है जो मंगवाया गया वही आइटम मिलेगा। मतलब इन्हें अभी तक उस सामान की डिलीवरी मिली नहीं है, उसके बारे में लिख रही हैं। और तब मुझे कोई पछतावा नहीं चाहिए। पिछली बार पछतावा मिला जब गोल्डन और वाइट पर्ल का ऑर्डर दिया था मगर ड्रेस एक धुलाई में ही ऐसी निकली कि मेरे सारे अरमान भी धुल गए।
0: तो वैसे एक हमारी श्रोता है वो लिखते हैं कि मैंने भी सभी बच्चों को समझाया कि जितना हो सके लोकल दुकानदार से खरीदारी करें, और मैं भी सखी सहेली की सखी यानी कि मेरी धर्म पत्नी भी ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद नहीं करते हैं।
1: आगे श्रोता लिखते हैं कि बेटे ने एक बार लैपटॉप, टैबलेट, स्क्रीन पर काम करने वाली स्टाइलिश पेन, इस तरह की कुछ चीज़ें मंगवाई थी जिनमें 7 दिन की रिटर्न पॉलिसी थी, और जैसे ही इन चीज़ों को उपयोग में लाया तो पता लगा कि वो काम ही नहीं कर रहे हैं। तुरंत संपर्क किया और बहुत तकलीफ हुई इन चीज़ों को रिटर्न करने में और अमाउंट को वापस अपने प्राप्त करने में। इसीलिए मैंने बच्चों को समझाया कि जितना हो सके

0: शहीद जो है उन गुरु अर्जुन देव जी का शहीद दिवस है, और ये सिख धर्म के पांचवें गुरु माने जाते हैं, और इनका बलिदान दिवस ज्येष्ठ माह की 24वें दिन अत्यंत श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। जहांगीर के विद्रोही बेटे राजकुमार खुसरो ने अपने पिता के खिलाफ जब विद्रोह किया तो लाहौर की तरफ वो चल पड़ा, और रास्ते में गुरु अर्जुन देव जी ने उसे आशीर्वाद दिया और उसकी सहायता भी की, और जहांगीर ने इसे राजद्रोह मानकर उन्हें सजा सुना दी और उन्हें बहुत सारी यातनाएँ देकर शहीद किया गया था। और वो इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने अपने सिद्धांतों पर समझौता करने से मना कर दिया था, और सिख धर्म के इतिहास में उन्हें पहला शहीद माना जाता है।
1: जी, बहुत ही बड़ी बात है, उनको हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और आज
0: ये जो दिन होता है ना, इस पर बहुत सारे जो गुरुद्वारे होते हैं वहाँ पर शबद कीर्तन होते हैं, श्रद्धालु आते हैं, और छबील यानी कि मीठे प्याऊ, मीठे पानी के जो प्याऊ होते हैं वो लगाई जाती है, और लंगर यानी कि जो भोजन लंगर होता है उसकी व्यवस्था की
1: बिल्कुल। और लंगर का खाना चंचली इतना इतना अच्छा, इतना ज्यादा स्वादिष्ट होता है ना कि मन करता है कि आप वहाँ रोज जाके खाएं, क्योंकि लंगर की सेवा वो हमेशा करते हैं,
0: और वो बहुत श्रद्धा से पकाया गया भोजन होता है, वो सिर्फ भोजन नहीं होता, वो प्रसाद।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और अब हम एक और दिवस है इसके बारे में बात करें कि गीत सुनने पहले
0: गीत सुन लेते
1: बिल्कुल गीत सुन लेते हैं।

0: इनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर

0: दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: तो भाई खाना बनाते समय कुछ ज़रूरी चीज़ें होती हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए, और बड़ी लंबी चौड़ी फहरिस्त आ गई है हमारे पास जो हमारे श्रोताओं ने हमें लिखकर
3: बहुत कुछ लिख डाला है भाई जी। और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि खाना बनाते समय सबसे पहला काम सारी तैयारी पहले कर लेनी चाहिए, इससे गैस की भी बचत होती है और परेशानी से भी बच सकते हैं। और खाना बनाते समय अपने मन को भी खुश रखना ज़रूरी है, और उसके लिए विविध भारती है ना, वो तो है। और वैसे एक बात हम कहना चाहेंगे कि क्या कभी किसी ने भजन सुनते हुए खाना बनाया है? बना कर देगी, स्वाद में अंतर जरूर नजर आएगा। आप चाहे भजन सुने या फिर कोई गीत अपने मनपसंद सुने, खाने में स्वाद तो आएगा ही आएगा जब हम खुश होकर बनाएंगे।
2: और बिल्कुल सही बात है, अगर आप कुछ भी नहीं सुन रहे हैं, आपकी भावना बहुत अच्छी है उस खाने को बनाने के लिए, बहुत प्रेम से किसी के लिए कुछ पका रहे हैं, तो वो खाना वैसे भी स्वादिष्ट बनेगा। अमूमन खाना जो है घर में महिलाएं ही पकाती हैं, पुरुष नहीं पकाते हैं, लेकिन हमारा जो कार्यक्रम है,
3: चंचल जी ऐसा मत कहिए क्योंकि आजकल पुरुष बहुत ज्यादा काम करने लगे हैं,
2: लेकिन मैंने कहा अमूमन ही
3: होता है, ये तो
2: है ना। तो हमारे जो पुरुष होता है कार्यक्रम को सुनते हैं और जो कभी कभार रसोई में खाना भी पकाते हैं, उन्हीं का संदेश मैं पढ़कर सुना रही
3: हूं। बिल्कुल बिल्कुल,
2: मैं खाना नहीं बनाता इसलिए कोई खास टिप्स नहीं है मेरे पास।
3: अच्छा।
2: पर सुबह की पहली चाय मैं हमेशा बनाता हूँ, तो एक टिप है मेरे पास
3: जी। बिल्कुल,
2: चाय की एक बूंदी प्लेटफॉर्म पर गिरती ही इसे तुरंत साफ करता हूँ, यानी कि खाना बनाते वक्त साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। ये बहुत बड़ी टिप है,
3: बहुत जरूरी।
2: ऐसा इसलिए भी होता है कि अगर पुरुष जो होते हैं अगर किचन में खाना बनाया तो वो क्या करते हैं, बस खाने में स्वादिष्ट होना चाहिए इसका तो ध्यान रखेंगे, लेकिन किचन वही पूरी फैली पसरी छोड़कर वो आते
3: तो है।
2: तो इन्होंने इस बात का खास ध्यान रखा है कि इनकी श्रीमती जी उस चीज से नाराज ना हो कि भाई चाय की बूंदी गिरी है तो वो ना हो,
3: एकदम साफ सुथरा किचन मिले। बहुत अच्छी बात है। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि अनाज दाल और बेकिंग के टिप्स बता रहे हैं वो, तो इसमें चावल के बारे में बता रहे हैं। तो चावल उबालते समय पानी में कुछ बूंदे नींबू के रस या घी की डाल दी जाए, इससे चावल के दाने आपस में चिपकेंगे नहीं। और अगर आपको दाल जल्दी पकाना है तो सूखी दालों या छोलों को पकाने से पहले कुछ घंटे पानी में भिगो दीजिए, इससे वो जल्दी पकते हैं और गैस की बचत भी होती है। और आटा गूंथते समय गुनगुने पानी या थोड़ी सी दूध का इस्तेमाल करने से रोटियां बेहद नरम और फूली हुई बनती हैं।
2: इसी तरह से कुछ और टिप्स हमारे पास आए हैं कि हरी सब्जियों का रंग, जैसे मटर पालक इस तरह की जो भी होती हैं सब्जियां, उनका रंग बरकरार रखने के लिए चुटकी भर चीनी डालने से उनका हरा रंग बना रहता है। विटामिन का अगर संरक्षण करना है तो सब्जियों को बहुत बारीक बारीक टुकड़ों में काटने की बजाय या पानी में उबालने की बजाय बड़ा थोड़ा मोटा काटें, और पानी में उबालने के लिए उनके विटामिन नष्ट हो जाते हैं, तो ऐसा ना करें। इसीलिए इन्हें मध्यम आकार के आकार में काटें। और आलू बैंगन अक्सर काले पड़ जाते हैं, तो इन्हें जैसे ही काटें तुरंत नमक वाले पानी में रखें, इससे वो काले नहीं पड़ेंगे। और लहसुन की कलियों को कुछ देर गर्म पानी में भिगोकर रखने से छिलका बड़े आसानी से निकाला जा सकता है।
3: अरे वाह क्या बात है। और एक हमारी श्रोता है जो बहुत ही, इन्होंने तो बहुत ही मज़ेदार सा कमेंट किया है, गाना ही लिख दिया है। उन्होंने लिखा है कि खाने बनाने का समय का टिप्स हम क्या दे सकते हैं भला, जिसे खाना बनाना ना आया, ना गाना आया, ना बजाना आया, सिर्फ और सिर्फ दिलबर के हाथों का खाना खाना आया। तो मतलब ये इन्होंने खाना खाना सीखा है, खाना बनाना नहीं सीखा है। कोई बात नहीं, आप अभी भी आप सीख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं,
2: नहीं भी खाना बनाते तो सिर्फ अगर मदद भी करेंगे ना अपनी बहन की, माताजी की, श्रीमती जी की, तो उनके चेहरे पर एक मुस्कान ले आइए, ये भी बहुत बड़ी बात।
3: बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ी सी तैयारियां करा दीजिए, सामान ले आइए या उनके लिए कुछ अच्छा ले आइए जिससे वो खुश हो जाए और अच्छा अच्छा खाना खिला पाए।
2: और हमारे श्रोता लिखते हैं कि खाना बनाना एक कला है जिसे थोड़ी सावधानी और सही तरीकों से और बहुत आसान बनाया जा सकता है। खाना बनाने से पहले सभी आवश्यक सामग्री तैयार कर लेनी चाहिए जिससे समय की बचत हो जाती है। मसालों और नमक का प्रयोग संतुलित मात्रा में करना चाहिए और गैस और बर्तनों को सावधानी पूर्वक उपयोग करें। बीच बीच में स्वाद चखते रहना चाहिए ताकि कोई चीज़ कम या ज़्यादा ना हो जाए।
3: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि प्याज को अच्छी तरह सुनहरा भूरा होने तक भूनने से भोजन में गहरा स्वाद और प्राकृतिक मिठास आती है। सब्जी या दाल में ज़्यादा नमक अगर हो गया है तो करी या सूप में नमक तेज हो जाए तो उसमें उबला हुआ आलू या गूथे हुए आटे की छोटी छोटी गोलियाँ बनाकर डाल दीजिए, वो अतिरिक्त नमक सोख लेंगी। गाढ़ी और मखमली ग्रेवी के लिए टमाटर प्याज की ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए आप उसमें भुना हुआ बेसन, काजू का पेस्ट या उबले आलू को मैश करके मिला सकते हैं। और ग्रेवी में दही

0: मिलाते समय आप आंच को धीमा रखिए, इसे लगातार चलाते रहिए ताकि दही जो है वो फटेगी नहीं।
1: अगले टिप में लिखा है कि अगर आप घर में ही घी बनाते हैं मलाई से और मलाई जमा कर रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी दही मिला दें और उसके बाद उसे फ्रिज में रखें, और जिस दिन मक्खन निकालना हो उसे थोड़ी देर ही पहले बाहर निकाल कर छोड़ दीजिए। इससे थोड़ा सा फर्मेंट हो जाता है और मक्खन निकालने के बाद स्वादिष्ट मट्ठा भी तैयार होता है। मलाई को 8 दिन, अगर मलाई से निकाल रहे हैं तो उसे 8 दिन में ही कंज्यूम कर लें और इसे फ्रिज में ही रखें, और जिस दिन मक्खन निकालना हो उसी दिन फ्रिज से बाहर निकालें। मथने के बाद ठंडे पानी में बर्फ़ डालकर मक्खन को तुरंत रखें, और गर्मियों में जो मट्ठा है वो निकलता है उसमें बड़ा स्वाद होता है।
0: बिल्कुल। और चंचल जी, हम एक संदेश को सुन लेते हैं, इसके बाद हम बात करें आगे।
1: जी,
2: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
3: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
2: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: हमारे सुनने वाले लिखते हैं कि इस मौसम में अरबी बहुत मिलती है और अरबी गले में भी लगती है, उन्हें छूने से हाथों में खुजली भी होती है, तो अच्छा है ग्लव्स पहनकर यानी कि दस्ताने पहनकर इसे छीला जाए। अगर आपके पास दस्ताने नहीं हैं तो पूरे हाथ को हाथ पर सूखा आटा लपेट लें, और उसके बाद अगर अरबियों को छीलेंगे तो वो हाथ पर चिपकती नहीं है और खुजली भी नहीं होती है। बड़ा अच्छा टिप दिया है।
0: बिल्कुल सुनते हैं।

0: आरती तुम्हें ध्यान है कार्यक्रम की शुरुआत में हमने बताया था कि आज है 18 जून जो कि होता है सतत गैस्ट्रोनॉमी दिवस और ये स्वस्थ और सुरक्षित बेहतर भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है जिनको मनाना। और जब भी हम किसी सांस्कृतिक विविधता की बात करते हैं तो सबसे पहले वहाँ के पहनावे और खान पान की ही बात की जाती है।
1: बिल्कुल, और गैस्ट्रोनॉमी भोजन और संस्कृति के बीच संबंधों का अध्ययन है जिसे अच्छे खान पान की कला और विज्ञान के रूप में भी जाना जाता है। गैस्ट्रोनॉमी को कभी कभी भोजन की कला भी कहा जाता है। इसे किसी विशेष क्षेत्र के खाना पकाने की शैली या फिर स्थानीय भोजन के संदर्भ में हम समझ सकते हैं। और सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है कोई भी कार्य जैसे कि कृषि हो, मछली पकड़ना हो, भोजन तैयार करना हो, इस तरह से किया जाए जिससे हमारे प्राकृतिक संसाधनों की बर्बादी ना हो और भविष्य में भी इसे जारी रखा जा सके बिना हमारे पर्यावरण या स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाए हुए।
0: बिल्कुल, भोजन की बर्बादी से जुड़े हुए जो भी मुद्दे हैं उसके बारे में जागरूकता बढ़ाता है और इसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित भी करता है। अपने आहार में जो भी पारंपरिक फसलें हैं उन्हें हम शामिल कर सकते हैं जो हमारे क्षेत्र में पाई जाती हैं, जो खनिज और विटामिन से भरपूर भी होती हैं, और कई तरह के जो व्यंजन हैं उनको तो हम अपनी यात्राओं में भी आजमा सकते हैं। और अब एक गाना सुन लें।
1: बिल्कुल।

0: भाई, ये था कार्यक्रम का अंतिम गीत और समय हो चला है सखियों से विदा लेने का।
1: तो आरती श्रीवास्तव को और
0: चंचल वर्मा को दीजिए इजाजत।
1: नमस्कार, नमस्कार।

0: नमस्ते दोस्तों, आ गई हूँ मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। दोस्तों, गर्मी की इस चिलचिलाती दोपहरिया में कोई चीज सुकून देता है तो वो है पानी या फिर शरबत या फिर आइसक्रीम। लेकिन इसके अलावा इन सब से परे जो सुकून और ठंडी छांव देता है वो है सुरीले गीतों की सौगात। सुरीले गीतों की फरमाइश करते हैं आप सभी श्रोता, मीठी और दिलचस्प बातें करते हैं आप सब। तो चलिए फिर शुरू करते हैं सिलसिला बातों और गीतों का। ये है आज के प्रोग्राम का पहला कॉल। हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार जी।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी मैं ठाणे महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ।
0: जी बताइए, आपका नाम क्या है?
1: मेरा नाम रामेश्वर प्रसाद चौहान है।
0: रामेश्वर जी, क्या काम काज करते हैं आप ठाणे में?
1: मेरा काम है, छोटा मोटा दुकान है, घर के अंदर ही है, हॉल और अस्तर ये सब है।
0: अच्छी बात है, ठीक है। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, सभी काम अच्छे होते हैं, काम करना चाहिए, कोई काम छोटा नहीं होता।
1: हाँ, जिंदगी तो इसी में निकल गई हमारी, पिछले 32 साल से ही कर रहा हूँ।
0: तो आप बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रमेश जी?
1: ओ, एक कुल दो मालिक का है, तुझे सूरज कहूँ या चंदा,
0: तुझे दीप कहूँ या तारा। तो किसके लिए सुनना चाहते हैं? कभी बच्चे को गाकर सुनाया है ये गाना आपने?
1: बच्चे लोग को मैं बहुत सुनाता हूँ, लेकिन आजकल पुराना गाना सुनने के लिए तैयार ही नहीं रहता इन लोग।
0: अच्छा, नए गाने पसंद करते हैं बच्चे। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें फोन किया। अब बातचीत करते हैं खत्म। आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: तो आपका गांव कैसा है, जरा गांव की कुछ विशेषता बताइए अपने।
1: गांव बहुत बड़ा है मैम, यहाँ की मतलब आबादी 5,000 की समथिंग है मैम।
0: और पैदावार क्या होती है?
1: यहाँ पे सोयाबीन मुख्य खेती मतलब बोनी होती सोयाबीन की।
0: और सोयाबीन बहुत पौष्टिक होता है खाने के लिए, बहुत रिच प्रोटीन होता है।
1: जी जी मैम।
0: तो व्यापार भी करते हैं, मतलब बिकता भी है सोयाबीन या फिर खाने भर का?
1: हाँ मैम, मंडी के लिए भी ले जाते हैं।
0: अच्छा, और बाकी चीजों में जैसे दाल चावल और गेहूँ धान, इन सब में क्या होता है ज्यादा पैदावार?
1: अरहर होती है मैम यहाँ पे, मूंग भी होती है, उड़द भी होता है, मूंगफली भी होती है मैम।
0: भाई देखिए, गांव मतलब जब आम का मौसम है, गर्मी का मौसम यानी आम का मौसम, और इस समय आम जो लोग गांव में रहते हैं उनको आम खाने का बड़ा सुख मिलता है। तो बाग आपके पास भी है?
1: 4-5 पेड़ लगे हैं मैम हमारे खेत पे।
0: अच्छा, सिर्फ 4-5 पेड़? भाई हमने तो
1: 4-5
0: बाग देखे हैं, वो बड़े बड़े बाग दूर दूर तक फैले, आम के पेड़, जामुन के पेड़। संख्या पेड़ों की कम हो रही है ऐसा लगता है आपको?
1: नहीं नहीं मैम, गांव में तो बहुत है, लेकिन हम खेत पे लगाए हैं 5-6 पेड़।
0: अच्छा अच्छा जी, बताएं कौन सा गाना आपको सुनवाए?
1: देवफासनम का सुनना है मैम।
0: कौन सा?
1: अच्छा सिल्ला दिया तूने मेरे प्यार के, ये गीत की बोल है मैम।
0: अच्छा, क्या कभी दिल टूटने की बात आई थी क्या जीवन में ऐसा गाने?
1: नहीं नहीं मैम, तरफ पर नहीं, नहीं पसंद नहीं है मैम।
0: अच्छा अच्छा जी, एक समय जब फिल्म आई थी ना तो ये गाना बहुत मशहूर हुआ था, हर किसी की जबान पर ये गाना होता था। तो चलिए, शुक्रिया अदा कर रहे हैं आपका, आपने हमें फोन किया, सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: जी। नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं
1: जी? मेरा नाम नई मलिक है, मैं सेंट्रल कश्मीर से बात कर रहा हूँ।
0: अच्छा, कश्मीर की किस जगह से?
1: जी मैं बड़गाम डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहा हूँ। हमारे गांव का नाम है बड़गाम, ये एक खूबसूरत एरिया में पड़ता है, एक टूरिस्ट एरिया में ये पड़ता है।
0: वाह भाई वाह। तो श्रीनगर से कितनी दूर है आपका गाँव?
1: हम 45 किलोमीटर दूर है श्रीनगर से।
0: अच्छी बात है। तो अगर पर्यटक वहाँ जाते हैं तो वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या सुविधा है, गाड़ी से या घोड़े से, कैसे जाया जाता है?
1: बस गाड़ी से आते हैं। और जो कश्मीर का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट में ही मौजूद है, और एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी हमारे बड़गाम में ही मौजूद है। और अब तरह तरह की सड़कें भी है और गाड़ी से भी आते हैं, और जो हमारा जो टूरिस्ट एरिया है वहाँ पर कोई सैलानी घोड़े को भी पसंद करते हैं।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो आपका क्या काम काज है वहाँ?
1: जी मैं बिजनेस करता हूँ, टैल मार्बल और सिटी की सामान बेचता हूँ, जैसे दीवार पर पेंट पेंट लगाती है वही मैं बिजनेस करता हूँ।
0: अच्छी बात है। तो इस समय वहाँ का मौसम कैसा है, ठंडा है गर्म है?
1: थोड़ी गर्मी भी है, तो जून का महीना चले गर्मी भी है, लेकिन साथ साथ कभी कभी बारिश भी होती है, और पिछले हफ्ते और इस हफ्ते में भी बारिश भी हो रही है और गर्मी भी है। और अच्छी बात यह है कि बहुत सारे सैलानी भी आते हैं, हमारे कश्मीर के अंदर बहुत सारी टूरिस्ट जगह है, वहाँ बहुत सारे लोग आते हैं।
0: क्या बात है। गर्मी तो आपके लिए होगी क्योंकि आपकी आदत ज्यादा ठंड की है, जो सैलानी आते होंगे उनके लिए ज्यादा गर्म नहीं लगता होगा?
1: यहाँ पर ज्यादा 35-35 डिग्री यहाँ पर सबसे ज्यादा गर्मी होती है, लेकिन जो हमारे हिंदुस्तान के कई शहरों में 40 से भी ऊपर डिग्री गर्मी,
0: 48
1: नॉर्मल सी लगती
0: जी। तो बहुत ज्यादा गर्मी से जूझते हुए जब वहाँ लोग पहुँचते होंगे तो ठंडक महसूस होती होगी। वहाँ की कुछ नदियों, वहाँ की झील के बारे में बताना चाहते हैं तो बताइए, अगर आपको जानकारी है तो।
1: हमारे इलाके में सबसे एक मशहूर झील है, उसको दूध गंगा कहते हैं। उनका जो पानी बिल्कुल साफ और नेचुरल पानी होता है, और अगर आप हम जंगल के उस पार जाएंगे या जंगल के उन जगहों पर जाते जहाँ पर टूरिस्ट है, वहाँ पर बहुत सारी नदियाँ है। जाए अगर आप पहलगाम की बात करेंगे, सोनमर्ग, गुलमर्ग या दूध पत्थर की तरह की नदियाँ हैं, जो बहुत ही उनका पानी भी मीठा है और साफ भी है। और अगर आप कश्मीर में रहते हैं तो कश्मीर का आपको ऐसा पानी मिलेगा।
0: पहलगाम और गुलमर्ग के पास तो लिद्दर नदी भी बहती है, हमें याद है कि
1: आपको सबसे मान वो आपको पता है ये पहलगाम कश्मीर में पड़ता है।
0: उस नदी का पानी हमने छुआ भी, बहुत ठंडा पानी था क्योंकि हम ठंड के मौसम में गए थे। अच्छी बात ये है कि पानी बिल्कुल पारदर्शी लगता है। बताइए इस समय गाना कौन सा सुनना चाहते हैं आप?
1: ये साजन फिल्म का नगमा है, देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार।
0: चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें फोन किया और कश्मीर के बारे में इतनी उम्दा बातें आपने शेयर की श्रोताओं के साथ। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: मैं मध्य प्रदेश से देवास जिले से गोविंद प्रसाद जलोदिया बोल रहा हूँ।
0: तो गोविंद जी, देवास मध्य प्रदेश किसी खास व्यक्ति के लिए संगीत के लिए मशहूर है, शास्त्रीय संगीत के एक मर्मज्ञ, वहाँ के मूर्धन्य संगीतज्ञ पैदा पंडित कुमार गंधर्व जी, जो उनका निवास है, देखा है आपने, बाहर से देखा होगा, बहुत सुंदर बना हुआ है
1: वो। क्या है, वैसे खातेगांव से देवास की दूरी 100 किलोमीटर है करीब।
0: अच्छा, तो गए हैं आप
1: देवास, वो आना जाना रहता ही रहता है।
0: जी बिल्कुल, शास्त्रीय संगीत के चाहने वाले वहां तक जाते हैं, पंडित कुमार गंधर्व के दरवाजे तक मत्था टेक कर आते हैं। कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: सर वो बरसात का गाना है, लता मंगेशकर की आवाज में, हवा में उड़ता जाए लाल दुपट्टा मलमल कर।
0: क्या बात है, बहुत सुरीला गाना चुना है आपने। तो क्या पुराने गाने ज्यादा पसंद आते हैं आपको?
1: हाँ, वो क्या है, पुराने गाने ही पसंद करता हूँ मैं। और दूसरी बात ये है कि वो शुरू से ही मेरे को लगाव है ये गाने पिक्चर से। क्या है कि मेरे रेडियो का बहुत शौकीन था शुरू से ही, 67-62 से ही।
0: अच्छा अच्छा,
1: तो घर वालों ने मेरे को रेडियो ट्रेनिंग में भेज दिया था। पहले वाल वाले रेडियो चलते थे, लगती थी कि उसकी ट्रेनिंग होती थी।
0: अच्छा।
1: सीखने के लिए तो मेरे को इंदौर में भेज दिया था सीखने के लिए। तो फिर मैंने इंदौर में भी काम किया और फिर खातेगांव में दुकान खोल दी रेडियो की।
0: अरे वाल
1: वाले रेडियो,
0: क्या बात है। तो अभी भी है रेडियो वाली दुकान आपके पास?
1: अब तो मैंने बंद कर दी, अब तो मेरे से बनता नहीं है।
0: तो क्या करते थे, रिपेयरिंग करते थे?
1: हाँ, रिपेयरिंग करता था और वॉल वाले रेडियो बनाते भी थे।
0: अच्छा, क्या बात है, ये तो बहुत बड़ी बात बताई आपने। वॉल वाले रेडियो अब मिलते नहीं है?
1: हाँ, 5 बार 3 बार 2 बैंड 3 बैंड ऐसे चलते थे वो।
0: जी जी, तो अभी लोग आपसे कहते हैं कि मेरा रेडियो खराब हो गया, जरा रिपेयरिंग करके दे दो?
1: नहीं, अब तो अपने से बनता भी नहीं है, अब रेडियो का जमाना है ही नहीं। अब रेडियो का जमाना खत्म हो गया, धीरे धीरे करके फिर ट्रांजिस्टर शुरू हो गए सेल वाले, अब सेल वाले से अब मोबाइल पे आ गए।
0: लेकिन सुनना कहाँ बंद हुआ, रेडियो से प्यार तो वैसे ही है।
1: सुनना तो नहीं रहा अब तो, सुनना तो और ज्यादा हो गया क्योंकि पहले, आजकल तो क्या है कि बड़ी मुश्किल से देश भारती आकाशवाणी लगता था, और आजकल तो क्या है कि घर बैठे ही, मतलब घर में मिल रहे हैं सभी स्टेशन में,
0: मोबाइल पे भी सुन सकते हैं आप।
1: और मोबाइल,
0: पहले वो जो रेडियो बड़ा वाला होता था उसमें आप वो जो बटन होता था, बटन को घुमाते रहो, कई बार विविध भारती पकड़ने में बहुत दिक्कत होती थी, मुश्किल होती थी,
1: दिक्कत होती थी। हाँ, इधर से उधर तक नहीं लगता था।
0: जी, लेकिन उसका एक अलग आनंद था उस रेडियो का।
1: हाँ, वो तो अलग ही था, उसकी उस प्रकार की उसकी बाडी भी इतनी अच्छी बनती थी कि संगीत में मजा आ जाता था। और इतने सारंगी वगैरह इतने भी उस टाइम तमाम, मतलब उसका जमाना नहीं था संगीत का,
0: बिल्कुल
1: हारमोनियम इतने अच्छे लगते थे।
0: बहुत सारे कलाकारों को रेडियो ने मंच दिया, बहुत सारे कलाकार को रेडियो ने गढ़ा, तो रेडियो का बहुत बड़ा योगदान रहा है जीवन में हम सबके। तो बरसात फिल्म का गाना आपने पसंद किया है, शुक्रिया अदा कर रहे हैं हम, और अब आपको सुनवा रहे हैं यही गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: मैडम जी। नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी, कौन कहाँ से बोल रहे हैं जी?
1: हाँ जी मैडम जी, मैं करणवीर सिंह पॉल जलंधर पंजाब से।
0: करणवीर सिंह जलंधर पंजाब के बारे में बताइए, क्या हाल चाल है जी?
1: बिल्कुल ठीक सर, बहुत बढ़िया। अभी तो थोड़ी दो दिन बारिश हुई है तो मौसम अभी ठंडा हो गया है। पहले तो बहुत ज्यादा तपिश थी, तो अभी फिर वैसे बारिश होने के चाहते हम तक बारिश हुई।
0: और गर्मी के बाद जब बारिश आती है तो राहत बहुत मिलती है, लेकिन उसके बाद जब बारिश रुक जाती है
1: राहत मिलती है। इधर तो पहले तो 45 टेम्परेचर हो गया पंजाब में, अभी कुछ राहत मिली है पहले से। तो आप सुनाओ, मुंबई का कैसा हाल है?
0: बस मुंबई में भी गर्मी बहुत पड़ रही है इस समय, बारिश का इंतजार है हम सबको। और बारिश के छींटे आप अपनी बातचीत के जरिए और गानों के जरिए बता दीजिए। वैसे भी पंजाब का लोकगीत बहुत समृद्ध है।
1: बिल्कुल जी, हम तो विविध भारती थे, हम प्रसार भारती थे, 1970 से लेकर जुड़े हुए हैं।
0: क्या बात है,
1: तो आज तक बहुत हमें हमारा इन्होंने साथ दिया है, तो 90 वर्ष भी पूरे हो गए हैं। तो हम तो कहते हैं अभी 10 साल और बाकी है, सेंचुरी हो जाएगी पूरी, तो हमें बहुत खुशी मिलेगी। और
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, और सेंचुरी होगी वो तो सेलिब्रेट किया जाएगा, उसके बाद भी विविध भारती चलती रहेगी, रेडियो चलता रहेगा।
1: बिल्कुल चलती रहेगी, वो तो चलती रहेगी, लेकिन हमें बहुत लगेगी, हमें देखो इतना साल हो गया छोटे।
0: तो कोई पंजाबी लोकगीत वगैरह याद है आपको?
1: पंजाबी लोग हमारे सुरेंद्र कौर और प्रकाश कौर ने बहुत लोकगीत गाए हैं, लेकिन मेरे को उनका तो याद नहीं। मेरे को गुरदास मान का एक गीत बहुत ज्यादा है,
0: गा के सुनाइए ना श्रोताओं को हमारे।
1: गुरदास मान जी का गीत है बह के वेख। वो बह के वेख जवाना बाबे भंगड़ा पौंदे ने, वो बह के वेख जवाना बाबे भंगड़ा पौंदे ने। बस इतनी दो लाइन बोलने
0: जी। जी बढ़िया। और वहाँ का खान पान भी बड़ा मशहूर है, बहुत

0: अच्छा लगता है।
1: बिल्कुल जी, सर्दी होती है तो सर्दी में तो हमारे मक्के की और सरसों का साग,
0: हाँ जी, हाँ जी,
1: और मक्खन, घी, दही, सब कुछ।
0: क्या बात है,
1: है फिर तो।
0: वाह वाह वाह। आप अपने वहाँ के बारे में बताइए, किस चीज की पैदावार वहाँ पर होती है आपके गांव में?
1: हमारे पंजाब में ज्यादा करके ना गेहूँ होता है, तो जैसे अभी धान की खेती शुरू हो गई है, गेहूँ होता है, गन्ना होता है, ये खास चार फसलें ये खास होती है, बाकी पशुओं के लिए चारा भी होता है। ये चार फसलें तो वैसे हमारे पॉपुलर है ना, ज्यादा करके होती है, जैसे गन्ना हो गया, मक्का हो गया, गेहूँ हो गया और धान हो गया।
0: तो मक्का होता है तो मक्के की रोटी और सरसों का साग तो मशहूर है ही है। तो
1: बिल्कुल जी, मक्के की रोटी, सरसों का साग, जैसे मक्के के भुट्टे, भुट्टा भी बाजार में आने लग गया ना हमारे इधर, भुट्टा हम खा लेते हैं, तो जो उसका जो तना होता है वो पशुओं का चारा बन जाता है।
0: अच्छा अच्छा, क्या बात है, ये तो बड़ी उम्दा बात बताइए भाई। हमारे श्रोता अगर सुन रहे हैं तो इसका उपयोग कर सकते हैं कि मक्का खाने के बाद जो उसका तना होता है वो पशुओं के खाने के काम आ सकता है। बताइए कौन सा गाना आप सुनेंगे?
1: गीत मैडम सुना दीजिए, आज मुझे फिल्म का नाम है पाकिजा, गीत के बोल है चलते चलते मुझे कोई मिल गया था।
0: क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन गाना चुना है आपने। मीना कुमारी और राजकुमार हैं इस फिल्म में, है ना? देखी थी फिल्म?
1: जी देखी है जी मैंने।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें फोन किया। अब सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना, फिल्म का नाम पाकिजा।

0: हेलो फरमाइश
1: जी, मैं मोहम्मद पोरा श्रीनगर से, जवान मोहम्मद ऋषि
0: जी, बताएं क्या हाल है आपका और श्रीनगर का क्या हाल है?
1: श्रीनगर का हाल तो बहुत ही अच्छा है, और आजकल तो मौसम बहुत ही अच्छा है, सुहाना है मौसम है।
0: अच्छा, बारिश हो गई है, गर्मी पड़ रही है, गर्मी के मौसम में भी सुहाना मौसम।
1: जी बिल्कुल, बारिश भी हो रही है, आज धूप अच्छी है, फिर भी मौसम बढ़िया है, और आपके प्रोग्राम सुनते हैं हम, बहुत ही मजा आता है।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया। कौन कौन से प्रोग्राम सुनते हैं आप?
1: सुबह से लेकर शाम तक तकरीबन हम सभी प्रोग्राम सुनते हैं, क्योंकि हमारा जो काम है ना, वो पश्चिम का काम, मजा आता है इसमें, रेडियो दिन भर ऑन होता है, बहुत ही

0: अच्छा लगता है।
1: पश्मीने का काम?
0: जी बिल्कुल
1: जी, पश्मीने का शॉल बहुत मशहूर है, लोग जाते हैं जब कश्मीर तो वहाँ से खरीद कर ले आते हैं।
0: जी जी,
1: तो उसकी खासियत क्या होती है थोड़ा सा बताइए हमारे श्रोताओं को, कितनी मेहनत लगती है, कितना वक्त लगता है?
0: जी बिल्कुल, कौन ही जामा होता है ये, मतलब महंगा ही होता है, 1,50,000 1.5 लाख तक भी होता है।
1: जी जी,
0: मतलब एक थोड़ा बहुत कठिन ही काम है, धागे मतलब पीली से बनाते हैं हम, मतलब हैंड से बनाते हैं हम।
1: इसमें धागे का प्रयोग करते हैं, ऊन का प्रयोग करते हैं?
0: ऊन का होता है उसमें, फिर हम फिर धागे बनाते हैं ना, फिर वो हम टीजी पे लगा, मतलब उसमें लगाते
1: जो
0: हैं।
1: डिजाइन बनाते हैं वो धागे से बनाते हैं?
0: हाँ वो धागे से बनाते हैं।
1: तो काफी मेहनत होती है, काफी वक्त लगता है ना। अब बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
0: सहेली फिल्म है, इसी में एक गाना है, इतना तो कह दो हमसे तुमसे ही प्यार है, लता और हिम्मत कुमार।
1: क्या बात है, बेहद सुरीला गाना पसंद किया आपने, और बहुत दिनों बाद इस गाने की फरमाइश आई है। खुद भी आप गाते गुनगुनाते हैं क्या?
0: थोड़ा बहुत गाते हैं।
1: गाना चाहे तो गा के सुनाइए, हमारे श्रोता भी सुनेंगे, आप गुनगुनाएंगे तो।
0: आपने कहा तो कोशिश करेंगे। इतना तो कह दो हमसे तुमसे ही प्यार है, तुमसे ही प्यार है, मेरी खामोशी सजना तेरा इकरार है।
1: बहुत शुक्रिया, सुनते हैं सहेली फिल्म का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: जी, नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं जी?
1: जी मैं मनोहर लाल गांधी, विजयनगर चाणक्य चौक गाजियाबाद से बोल रही था।
0: जी मनोहर लाल जी, बताइए क्या हाल है आपका और गाजियाबाद का क्या हाल है?
1: बस ठीक है जी, गाजियाबाद का तो बहुत ही अच्छा हाल हो गया क्योंकि मेरी कॉल लग गई आज विविध भारती।
0: पर गर्मी बहुत पड़ रही है ना, दिल्ली पूरा इलाका बहुत गर्म सुना है हमने।
1: गर्मी तो बहुत पड़ रहा था लेकिन आज मौसम ठीक हो गया, सुबह सुबह अपना बादल आए, थोड़ी बूंदाबांदी हुई तो मौसम ठीक है आज।
0: बादलों ने सुकून दिया आपको, तो इस सुकून के बाद आप बताइए कौन सा सुकून दे गाना सुनना चाहते हैं?
1: ये गाना सुनना चाहता हूँ मैं, फिल्म चमत्कार का, जिसके बोल है इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो।
0: जी आप तो गाते भी अच्छा खासा।
1: जी यहाँ पे हम गाते रहते हैं करोके म्यूजिक पे, हमारे दोस्त हैं बहुत सारे बुजुर्ग दोस्त हैं, यहाँ अपना हफ्ते में एक दिन प्रोग्राम बनाते हैं और गीत संगीत के साथ ही हम जुड़े रहते हैं और बचपन से हम विविध भारती सुनते आए हैं, आज भी सुन रहे हैं।
0: क्या बात है, ये जो सब ग्रुप में गाने वाली बात कही है, हमारे बहुत सारे श्रोता इससे प्रेरणा ले सकते हैं कि जब आपके पास फुर्सत के लम्हे होते हैं तो आप सब साथ में गाने गुनगुनाने का, सुनने का एक अलग मजा होता है।
1: संगीत साथ होता है, विविध भारती साथ होता है तो सकारात्मक सोच भी उत्पन्न होती है और दिल भी हमारा खुश रहता है
0: और बहुत सारे झंझावात तनाव भूल जाते हैं गानों के साथ जब होते हैं, है ना?
1: तनाव तो खैर होता ही नहीं है और बीमारियों से भी हम जो दूर रहते हैं क्योंकि संगीत एक थेरेपी की तरह है।
0: क्या काम काज है वैसे आपका?
1: ये मेरी कपड़े की शॉप है यहाँ पे,
0: तो साथ में रेडियो चलता रहता है।
1: हाँ जी रेडियो चलता रहता है, ऐप के थ्रू अपना साफ आवाज में हम सुनते रहते हैं यहाँ पे।
0: जी बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, फोन किया आपने। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना, फिल्म का नाम चमत्कार।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार ममता जी।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं गुजरात से बात कर रहा हूँ, धीरज जबारी
0: जी। बताएं धीरज जी, क्या हाल है आपका?
1: मौसम अच्छा है, मेरा भी अच्छा हाल है और मैं पेड़ों के नीचे से बात कर रहा हूँ। यहाँ मोर भी बहुत है, लेकिन जब हमारी बात हुई जो अगर मोर एक दो टोके तो अच्छा रहे। हाँ। लेकिन ये पक्षी है, हमारे कहने से कुछ नहीं बोलते, अपने आप में बोलते हैं।
0: अच्छा, कौन सा पक्षी है?
1: मोर है, बहुत है मोर, लेकिन हाँ, हाँ, अभी बादलों में कई बार बोलते हैं, लेकिन जब हमें पता है कि जब बोले तब नहीं बोल पाएंगे।
0: उन्हें नहीं पता है ना कि हमें कब बोलना है, कैसे बोलना है, वो किसी के डिसिप्लिन वाले नहीं है ना, वो तो आजाद हैं और उन्हें आजाद रखना भी चाहिए। तो आपके तो दिन बन जाता होगा, बड़ा खुशगवार दिन होता होगा।
1: ममता जी, हम प्रकृति के अंडर में नौकरी करते हैं, बहुत अच्छा लगता है।
0: कहाँ काम करते हैं?
1: हम एक फार्म में नौकरी करते हैं और अच्छा। फार्म में पेड़ों की संख्या बहुत है और मोर है, कबूतर है और पक्षी है, बहुत अच्छा लगता है। और जो पक्षियों का जो प्रेम होता है ना, इसकी भी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि वो उसको जब दाना डालते हैं, रोटी डालते हैं मोर को, तो मोर बिल्कुल नजदीक आ जाता है, तो वो दृश्य बिल्कुल अच्छा लगता है दीदी।
0: क्या बात है, तो मोर का नृत्य भी देखा होगा फिर तो आपने, मोर का नाचना बड़ा सुंदर लगता है ना?
1: बिल्कुल, मोरों के बीच में गाँव में भी रहते थे और यहाँ भी रहते हैं।
0: विशेष रूप से क्या खिलाया जाता है मोर को?
1: मोर को देखा जाए तो उसको दाना, यानी दाने में जुआर है, बाजरी है, लेकिन हम रोटी डालते हैं तो बाजरे की, गेहूं की, तो वो खा जाते हैं। अच्छा। और वैसे देखा जाए तो जीव जंतु भी खाते हैं, लेकिन दाने भी खाते हैं और मकई का दाना भी खाते हैं, बाजरी, जुआर, गेहूं, लेकिन रोटी का उनको बहुत अच्छा रहता है अगर कोई डालता है तो।
0: तो बाकी पक्षी भी आते हैं, गोरैया आती है?
1: बिल्कुल आते हैं, चक्री का या गोरैया का प्रमाण बहुत है अहमदाबाद सिटी में। मेरा गाँव डेर है, तहसील जिला पाटन, वहाँ गोरैया बहुत है, अहमदाबाद में कम है।
0: तो गर्मी बहुत पड़ रही है, तो पक्षियों के पानी के लिए क्या व्यवस्था करते हैं? क्योंकि
1: ममता जी बहुत भले लोग है, अहमदाबाद हो गए, मुंबई हो, बहुत भले लोग है, पानी पक्षियों के लिए भी रखते हैं, पशुओं के, प्राणियों के लिए और इंसानों के लिए, यानी मानवता अभी भी है और ये मानवता के लिए तो हम जी रहे हैं और हमारा जीवन, यानी एक अच्छा जीवन जी रहा है, तो हमें अच्छा लगता है कि ऐसे इंसानों के बीच हम रहते हैं।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है ये जानकर। और पक्षियों की बात की है आपने, तो जितने श्रोता सुन रहे हैं इससे आपकी बात से प्रेरणा लेंगे कि जो बहुत छोटे छोटे घर होते हैं जहाँ पर जगह नहीं होती पानी रखने के लिए, लेकिन एक छोटा सा बर्तन, मिट्टी का बर्तन रख सकते हैं जिसमें पानी रख दिया, तो बहुत गर्म भी नहीं होता है तो पक्षी आकर वहाँ पानी पी सकते हैं।
1: खुला पानी ममता जी ठंडा ही रहता है। हाँ। जैसे झील है, तालाब है, वो पानी ठंडा ही रहता है क्योंकि पवन रहता है और पानी ऊपर ऊपर से लगे हमें गर्म है, लेकिन नीचे से ठंडा रहता है। ऊपर वाले की देन है, वो भी रखवाली करता है सब जीव जंतु की।
0: लगता है आपके आसपास नदी और झील भी है?
1: नहीं, नदी तो साबरमती नदी है और तालाब देखा जाए तो यहाँ कॉरपोरेशन ने बनाए हुए वही तालाब है
0: जी। और नदी साबरमती नदी का नामकरण हुआ है कैसे, वो भी आपको पता ही होगा ना?
1: जी बिल्कुल जी। बिल्कुल, यानी साबर एक नदी है और इसके पर एक जिला भी है साबरकांठा, और जैसे बनासकांठा है वो भी बनास की नदी पर ही है, लेकिन हमारा जो जिला है वो नदी है सरस्वती, उसको कुंवारिका बोलते है, जो दरिया में नहीं जाती है, रण में जाती, रेगिस्तान में चली जाती है।
0: क्या बात है, बड़ी अच्छी जानकारी दी। तो अब गाना आप कौन सा सुनना चाहेंगे?
1: फकीरा फिल्म का दिल में तुझे बिठा कर लता मंगेशकर के आवाज में गाना सुनना है।
0: तो अब बातचीत करते हैं खत्म और आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना, फिल्म का नाम है फकीरा।

0: हेलो फरमाइश
1: जी। नमस्ते
0: नमस्ते, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं यशवंत साहू बोल रहा हूँ, कर्मा चौक लोहारडिया जिला के विधान छत्तीसगढ़ से।
0: जी बताइए, क्या हाल है आपका और छत्तीसगढ़ का?
1: जी ममता दीदी बहुत अच्छे हैं हम।
0: जी क्या कर रहे हैं?
1: हम आम के बगीचे में अभी आम खाने हैं, मैं अपने बेटे को लेकर।
0: अरे वाह क्या बात है भाई, कौन से आम है, कौन कौन से आम वहाँ पर?
1: अब आम के नाम तो मालूम, लेकिन देसी आम है अपना खुद के, इधर हमारे पूर्वज जो है ना वहाँ पर लगाए हुए हैं आज से 100 साल के पहले ये आम।
0: वही खा रहे हैं?
1: हाँ, लकड़ी के सहारे से पेड़ में मार रहे हैं, उसके हिसाब से आम गिर रहे हैं, उसको हम खा रहे हैं। मतलब अभी 10 आम खा चुके हैं दोनों बाप बेटे।
0: अरे वाह क्या बात है भाई, 10 आम। अब यहाँ महानगरों में, शहरों में तो लोग एक आम खा लेते हैं, उसी से पेट भर जाता है।
1: जी मैं महाराष्ट्र में रत्नागिरी में 2 साल तक वहाँ पर रुका हूँ।
0: जी
1: आम खाने के लिए वहाँ तरसते थे हम आम खाने के लिए।
0: जी और बाग से तोड़कर बाल्टी में भिगो के आम खाने का मजा अलग ही है। ये बताइए कि आपने कहा कि आपके पूर्वजों ने आम लगाया और वो खा रहे हैं, तो आपने भी कोई पेड़ पौधा लगाया है, आपकी आगे आने वाली पीढ़ी भी खाए?
1: हाँ बाड़ी पे लगाया हूँ और खेतों में भी एक दो पेड़ लगाया हूँ।
0: आम का जो बाग है, बाग में ही एक दो पौधा रोप दीजिए, पेड़ बन जाएगा कुछ महीनों में।
1: हाँ लोगों को कहना चाहूंगा कि जैसे कि आम की गुठलियाँ होती हैं, जामुन की गुठलियाँ होती हैं, आप वहाँ पर कहीं भी टूर मतलब रास्ते पार करते हैं, अपने घूमने जाते हैं ना, तो अपने बाइक के डिग्गी में रख ले और कहीं कहीं अपने डाल दे, ताकि वहाँ पर जो बारिश होगी उसके बाद ना अंगूर होकर एक पौधा बन जाएगा, जिसे कोई कोई आम खाएगा तो कम से कम ऊपर वाला देखेंगे।
0: जी बिल्कुल सही बात है। बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म का नाम है साजन की घर और कुमार सानू साधना सरगम जी की आवाज है। गीत के बोल है सावन आया बादल छाए।
0: ठीक है जी, सावन आए बादल छाए, बस इसी उम्मीद के साथ भेज रहे हैं आपके छत्तीसगढ़ में आपकी पसंद का ये गाना आपके रेडियो सेट तक।

0: हेलो फरमाइश
1: जी। दीदी नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी दीदी, मैं रंजीता जांगड़े बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
0: रंजीता जी बताइए, अपने बारे में बताइए, क्या काम काज है?
1: जी दीदी, मैं हाउस वाइफ हूँ, घर का काम करती हूँ और मेरे बच्चे हैं और ऐसे परिवार में है। अभी गर्मी का सीजन है तो इन सारी बातों का ध्यान रखना, जैसे कि जैसे पानी वानी पीना है या कहीं जाना है तो जैसे टावेल लेके जाए, पानी की बॉटल लेके जाए, और साथ साथ में जैसे हमको पता है कि हमें पानी चाहिए, वैसी पक्षी हैं, गाय हैं, इन सभी का जैसे पक्षियों के लिए छोटे छोटे पोला होते हैं मिट्टी के, या फिर मिट्टी के जो घड़े होते हैं उसमें जाके छत के ऊपर पानी रखना, ताकि पक्षी लोग आए और वो भी अपना प्यास बुझा सके।
0: लेकिन आप खुद ये काम करती हैं?
1: जी करते भी हैं, और जैसे बालकनी वगैरह है तो पेड़ पौधे हैं तो पेड़ पौधे भी सूख जाते हैं गर्मी की वजह से, तो उनमें भी पानी डालते हैं ताकि पेड़ पौधे सूखे नहीं।
0: और पेड़ पौधों की देखभाल के लिए और घरेलू स्तर पर भी कुछ ध्यान रखना पड़ता है, सब्जी के जो छिलके होते हैं उसके माध्यम से खाद बनाया जाता है, तो घर पे भी कुछ खाद बनाया जा सकते हैं ना, अगर आप बागवानी करती हैं तो।
1: और हमारे इधर तो हम लोग गाँव में हैं, तो घर में जैसे कि गाय है, भैंस है, तो उन लोग का जो गोबर होते हैं उनको भी जैसे कि ढाकन की मिट्टी में दबा के उनका भी खाद बनाते हैं और उनको भी सब्जी के लिए, खेतों के लिए डालते हैं।
0: ये तो बहुत बढ़िया खाद होता है, गोबर की खाद तो सबसे अच्छी होती है, और जो घरेलू पौधे होते हैं उनमें तो इस खाद का इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा होता है। तो आपके गांव में और क्या क्या है, क्या खासियत है गांव की बताइए, कौन से पेड़ पौधे हैं वहाँ पर, ज्यादातर खेती किस चीज की होती है?
1: हमारे तरफ धान की खेती होती है दीदी, और अभी पानी का इंतजार है, जैसे पानी गिरेगा तो धान की फसल डालेंगे हम लोग।
0: तो आपके यहाँ धान कूटने के लिए ओखली भी है, मूसल और ओखली?
1: नहीं अभी तो नहीं है, बहुत पहले
0: हुआ करता था
1: दादी लोग, हाँ हुआ करता था दादी लोग के समय में। ओखली वगैरह का तो नहीं पता दीदी, लेकिन वो ढेकी वगैरह बोलते है ना, उस टाइप का था,
0: चक्की जात वगैरह, चक्री है ना।
1: जी जी,
0: अब बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहती हैं?
1: जी दीदी, मैं खुद गर्ज फिल्म का दिल बहलता है मेरा आप क्या जाने से।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, सुनते हैं आपके पसंद का यही गाना।

0: दोस्तों, ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं की कॉल आज लगी है उनसे हमारा करबद्ध अनुरोध है कि आगामी 2 माह तक हमें फोन ना करें, ताकि अन्य श्रोताओं को इसमें सहभाग का अवसर प्राप्त हो सके। हेलो फरमाइश के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार दिन में 11 बजे से। इसके लिए हमारे फोन नंबर नोट कर लीजिए। हमारे टेलीफोन नंबर है 2867-0288, मुंबई का STD कोड 022। एक टेलीफोन नंबर और है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं 400-24662, मुंबई का STD कोड वही 022। टेलीफोन नंबर आपको एक बार फिर से बता देते हैं 2867-0288 और दूसरा टेलीफोन नंबर 400-24662, मुंबई का STD कोड 022। और हाँ, चलने से पहले आपको ये भी बता दें, आज के इस कार्यक्रम में हमारे रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, संपादन सहयोग सुशीला बेंगुर लेकर का, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह ने की। तो अब अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

0: आप सुन रहे हैं।
1: विविध भारती कार्यक्रमों का अनुप्रसारण आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है। लीजिए अब सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ।

0: नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 51 है। ये धूरिया, अरचोका, भेलकक्ष, पेंडारी, बोदरई, शाही डांड़ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के प्रतापपुर और सूरजपुर में हाथियों की कुल संख्या 31 है। ये टुकुडांड, चाची डांड, करसी, बूढ़ा डांड, बरबसपुर, सिलफिली, कनकनगर, गणेशपुर, गोडगवां, मदन नगर, कल्याणपुर, कोटबहरा, घाघी, टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वनमंडल के वाड्रफ नगर में हाथियों की कुल संख्या 2 है। ये मेंढारी, फोकली महुआ, करमडीहा, भगवानपुर, नवापारा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वनमंडल के अंबिकापुर, लुंड्रा, उदयपुर, सीतापुर और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 22 है। ये सकालो, किशुनपुर, घंघरी, कुल्हाड़ी, कंचनपुर, खलीबा, पड़ौली, जमीरा, मसगा, डांडपारा, लक्ष्मणगढ़, सुखरी भंडार, सायर, ससकालो, सत्तीमुड़ा, शिवनाथपुर, घासीडीह, बोड़ाझरिया, ढोढ़ा गांव, दांतीढाप, गढ़गांव, बैगहवा, चोर की पानी, कंडराजा, घोड़ा घाट, नर्मदापुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वनमंडल के कुनकुरी, पत्थलगांव में हाथियों की कुल संख्या 33 है। ये नारायणपुर, जामचुआ, बिलासपुर, चरईमारा, रानी कोम्बो, खड़ा माचा, पीठा आमा, राजा आमा, महेशपुर, झिमकी, चट्टानपारा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वनमंडल के छाल, धर्मजयगढ़, बोरो, कापू और बाकारुमा में हाथियों की कुल संख्या 114 है। ये लोटान, पुरुंगा, बनहर, सिंघीछा, बेहरामार, इंचपारा, कंचीरा, कोयलार, सागरपुर, सस्कोबा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। गढ़घोरा वनमंडल के केंदई, जडगा और एतमा नगर में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये लालपुर, कोयलार गढ़रा, परला, चोटिया, कापानवापारा, घुचापुर, बांधापारा, लालडी, झुनकीडी, कुकरी कादर, आमा टिकरा, नवापारा, मड़ई, कोदवारी, कठमोरगा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वनमंडल के रायगढ़ और घरघोड़ा में हाथियों की कुल संख्या 31 है। ये बंगूरसिया, जुनवानी, कशडोल, राट रोड, झिंगोल, नागदरहा, पंडरी पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वनमंडल के बार और कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये पकरी, तालदादर, हरदी, फुरफुंदी, गुड़ागढ़, तेंदुचुआ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये ओड़, अमलोर, ताराजय, डडई पानी, बुडार, सिंहार, छिंदौला, लूठापारा, नारी पानी, डूमर घाट, कोदोमाली, मासुल खोई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दे। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दे।
2: हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोठ।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ FM बैंड पर।

0: गतिविधियों का जैविक नियंत्रण अपनाएं। आज की नसीहत में सुनिएगा, जहां सवाल वहीं समाधान, बस एक कॉल पर किसान कॉल सेंटर। साथ ही आप सुनेंगे आज का टिप, कृषक प्रश्न मंच, आज का मंडी भाव और आज का मौसम। आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रात्रि 8:15 पर हम अनुप्रसारित करेंगे 19 शासकीय भर्ती परीक्षाएं पास कर अनोखा रिकॉर्ड बनाने वाली चारू पांडे से विशेष भेंट वार्ता। फिल्म संगीत सुनेगा रात 8:30 पर। सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विरासत थीम पर विशेष कार्यक्रम सुनिएगा रात 9:25 पर आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। विविध संगीत हम पेश करेंगे रात्रि 10:00 और 10:30 का वक्त होगा फिल्मी गीतों के फरमाइशी कार्यक्रम आपकी फरमाइश का। ये था कार्यक्रम विवरण। हमारे केंद्र से आज की सभा से प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों का।
1: अब FM रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे 3 विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल 3 विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम FM रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र, छोटे अतरमुड़ा, रायगढ़। श्रोताओं, आकाशवाणी रायगढ़ की ईमेल सेवा के माध्यम से अधिक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। आप भी हम तक अपने सुझाव और फरमाइश ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, अनुरोध, तरुणों की पसंद, पत्र मिला और लोक रंजनी के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप ईमेल भेजते हैं उसका नाम सब्जेक्ट फील्ड में लिखना आवश्यक है। कार्यक्रम के नाम के बिना ईमेल शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com, shrotarayagarh, यानी श्रोता रायगढ़@gmail.com।

ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। लीजिए पेश है कार्यक्रम शामे गजल। शामे गजल कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं पंकज उदास की गाई कुछ गजलें।

0: शाम गजल में अभी आप सुन रहे थे मुमताज राशिद की लिखी ये गजल, आवाज थी पंकज उदास की।
1: अब एफएम रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे तीन विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल तीन विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन आदि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम एफएम रायगढ़, तो जल्दी कीजिए। ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र छोटे अतरमुड़ा रायगढ़।
2: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
0: कार्यक्रम शामे गजल की अगली गजल आइए अब सुनते हैं, जफर गोरखपुरी की लिखी हुई, आवाज पंकज उदास की है।

मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रूपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

शामी गजल कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंकज उदास की आवाज में मुमताज राशिद की लिखी ये गजल। इसके साथ ही शामी गजल कार्यक्रम अब समाप्त होता है। एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम घर द्वार।

घर द्वार कार्यक्रम सुनैया सबो श्रोता संगवारी बहनी मल्ला सविता के राम राम जय जोहार। बनी हूँ आओ जानन पहले हमारे आज के कार्यक्रम के बारे में। आज के हमारे गोट के विषय हवे योग से रहें शारीरिक और मानसिक रूप से फिट। चर्चा के अंतर्गत चर्चा करबो कम बर्बादी ज़्यादा पोषण, यही है सतत पाक कला का मिशन। योजना के अंतर्गत जानबो अटल पेंशन योजना के बारे में। आज के हमारे क्रम हमें रांधबो कूटबो, ती क्रम में चर्चा करबो रागी के व्यंजन हमारे पारंपरिक खाद्य, और ये सबो के संगे संग सुनबो कुछ गीत और सुनबो भेंटवार्ता। बनी हो आज हवे जून महीना के 18 तारीख और 15 जून के बाद में मानसून के हल्का हल्का बरसात के शुरुआत हो जाते और हमारे आसपास में भी एक आध दिन हल्का बरसात के शुरुआत होगी। सवे ये महीना के अंत तक मानसून के आय के पूरा संभावना रही थे। मानसून के आय ले वर्षा के शुरुआत होते और वर्षा के शुरू हुए ले खेती किसानी के काम के, तो आप सबो जन भी खेती किसानी के काम बूता के तैयारी शुरू कर दे होइया। एक संगे संग और कई काम होते जिला मल्ला वर्षा शुरू होने के पहले कर लेना चाहिए। घर के आसपास गड्ढा लापाट लेना चाहिए, गंदगी के ढेर के साफ सफाई कर लेना चाहिए। वर्षा शुरू होने सबों में पानी भर जाते और एक कारण मक्खी मच्छर बन पैदा होते हैं और कई प्रकार के बरसाती बीमारी ला फैलाते हैं। देखकर ले बचाव पर हमला एक कामना कर लेना चाहिए। घर में कहीं भी बिजली के तार दी खुला हुए कूला भी ठीक करवा लेना चाहिए। लगातार वर्षा हो ले दीवार मन में सिला ना जाते और इसने में करंट लगने के डर रही थे। ये तो समझ के वर्षा सम के शुरू होने के पहले के काम काज अब आओ चर्चा कर जाए आज के हमारे गोट। बनी आज के भागदौड़ भरे जीवन में हमन कम उम्र में ही कई प्रकार की बीमारी ले परेशान हो जाते हैं। हमारे खान पान रहन सहन के गलत तरीका कई प्रकार के बीमारी के कारण हवे। अभी के समय में योग और ध्यान लापन नियमित दिनचर्या में अपना के हमन शारीरिक और मानसिक रूप ले फिट रह सकत हन और कई ठी बीमारी ले अपन बचाव कर सकत हन या बीमारी हवे तो हमन नियंत्रित रख सकत हन। योग ले शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के लाभ मिलते। तनाव चिंता और शाद में कमी होते, मन शांत और एकाग्र होते और हमारे शरीर स्वस्थ रही थे। शरीर के ताकत और लचीलापन में सुधार होते, मांसपेशी और जोड़ के गतिशीलता में सुधार होते। मैंने उम्र के बढ़े के संग संग जोड़ और मांसपेशी के लचीलापन कम होने लगते जेकर कारण कई प्रकार के हमला दर्द के सामना करना पड़ते। यह योग कर ले ठीक रही थे। नियमित योग कर ले नींद संबंधी समस्या में भी सुधार होते। गाठिया बीपी डायबिटीज हृदय रोग संबंधी सबो समस्या यदि हम नियमित योग करते हैं तो कर ले हमला बचाव हो सकते है। हमारे शरीर के जौन प्रतिरक्षा प्रणाली है वह भी योग कर ले मजबूत होते। मन हमारे जीवन के कई समस्या मन के समाधान नियमित योग कर ले हो जाते। तो योग अपन जीवन के दिनचर्या में शामिल करना चाहिए, लेकिन योग कर समय हमला कुछ बात के ध्यान रखना चाहिए। योग हमेशा खाली पेट रह तब करना चाहिए। सुबह के समय सोच ले आए के बाद के समय हर योग बस सबले अच्छा होते। योग खुला मैदान आंगन या घर के छत पर करना चाहिए। हमेशा आसन पर बैठ के ही योग करना चाहिए, खाली जमीन पर बैठ के नहीं करना चाहिए। योग करे के तुरंत बाद नहाना या खाना हमला नहीं खाना चाहिए। जिन पसीना आते हो पसीना ला भी कूलर पंखा एसी में बैठ के नहीं सुखाना चाहिए। यदि ये कुछ बात के ध्यान रखन और मैं रोज यदि योग करत हन तो हमारे कई प्रकार के समस्या मन ले बांट सकत हन। ये तो ही समाज के गुण अब सुना जाए ये गीत।

0: मैं नहीं, गीत के बाद चल अपन चर्चा आगे बढ़ाया जाए और चर्चा करी जाए नशे से दूरी स्वस्थ भारत के लिए जरूरी। मैं ये कोनो भी देश के विकास पर जरूरी है नशा मुक्त होना। नशीला पदार्थ शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बर्बाद करते, संग संग युवा पीढ़ी और परिवार ला आर्थिक और सामाजिक रूप में भी कमजोर करते थे। एक विकसित समाज पर विकसित देश पर जरूरी है कि वहाँ के सबों जन जागरूक हों और नशाले दूर रहें। नशाला नाश के जड़ कहे जाते। नशा की आदत ले कैंसर, हृदय रोग, लीवर के खराब होना, तंत्रिका तंत्र कमजोर होना जैसे समस्या के हमें सामना करना पड़ते। नशा की आदत ले मानसिक तनाव, डिप्रेशन, निर्णय लेने की क्षमता हर कम हो जाते, याददाश्त कमजोर हो जाते। नशा के कारण घरेलू हिंसा, आर्थिक स्थिति खराब होना, अपराध के दर्द में वृद्धि होना जैसे समस्या हमें देखे बन मिलते। नशा ले मुक्ति पर जरूरी है जागरूकता। अब आजकल तो स्कूल में पढ़े वाले छोटे बच्चा मन भी नशा के आदि हो जाता है और नशा के कारण कई प्रकार के आपराधिक काम करते हैं। तो जरूरी है घर के माता पिता ला जागरूक होना, अपन बच्चा मन पर ध्यान रखना, नशा की आदत ला छुड़ाए बर इच्छा शक्ति के मजबूत होना जरूरी है। और एक बार हमन ध्यान और एक के सहारा भी ले सकत हन। ध्यान और एक ले अपन इच्छा शक्ति ला मजबूत करके हमन नशा की आदत से छुटकारा पा सकत हन। आजकल कई ठी नशा मुक्ति केंद्र भी चलाए जाते जहाँ नशा के लत ला छुड़ाए बर प्रयास करे जाते। यहाँ संपर्क करके भी हमन अपन ये नशा की आदत से छुटकारा पा सकत हन। तो जरूरी है वे हमन सब झलना जागरूक होना और नशा ले दूरी बनाना। मैंने आज की हमारी चर्चा के विषय है वे सतत पाक कला मिशन, कम बर्बादी ज़्यादा पोषण। तो बहनी हो सतत पाक कला या टिकाऊ खाना पकाए की जो कला है यह एक पर्यावरण अनुकूल खाद्य के प्रणाली हवे जिकर उद्देश्य हवे प्राकृतिक संसाधन मन के संरक्षण करना। यह खेती ले लेके हमारे रसोई तक भोजन तैयार करे के हर प्रक्रिया पर ध्यान देते ताकि पर्यावरण ला कोनो भी प्रकार के नुकसान नहीं पहुँचे और आए वाला पीढ़ी पर भविष्य पर हमारे संसाधन मन बचे रहें। बनियो सतत पाक कला पर्यावरण ला बचाए के संगे संग स्वास्थ्य और हमारे स्थानीय अर्थव्यवस्था ला भी बढ़ावा देते। अरे एक ऐसी जीवन शैली हवे जिला अपना के हमन प्रकृति के संग तालमेल बैठा के हमन ला पौष्टिक भोजन पर प्रेरित करते। एक सिद्धांत हवे स्थानीय और जो मौसमी खाद्य पदार्थ हवे ओमन के उपयोग पर हमन ला प्रेरित करना। अपन आसपास उगाए जाए वाला ताज़ा मौसमी फल सब्जी के इस्तेमाल करे जाए ताकि दूर दराज ले भोजन लाए में होए वाला परिवहन और कार्बन के उत्सर्जन में कमी हो सके। खाना बनाते समय पानी की बर्बादी नहीं किया जाए, अच्छा उपकरण के प्रयोग किया जाए ताकि बिजली और पानी की बचत हो सके। मांसाहारी भोजन की जगह शाकाहारी भोजन के प्रयोग ज़्यादा किया जाए ताकि पानी और ऊर्जा की खपत में कमी आए। सतत पाक कला के उद्देश्य हमें खाना की बर्बादी ला रोकना, बचे हुए खाना के सही उपयोग करना, रसोई ले निकले हुए कचरा के सही तरीका ले उपयोग करना और एक कंपोस्ट खाद बनाना, खाना बनाए के पारंपरिक तरीका ला अपनाना ताकि ऊर्जा की खपत कम होए और हमारे भोजन के पौष्टिकता हर बने रहे। पौष्टिक और पर्यावरण के अनुकूल अनाज ला अपन रोज के भोजन में शामिल करना। तो बनी ये तो इस समय की चर्चा अब और सुना जाए। ये भेंट वार्ता विषय हवे शिशुओं के लिए पूरक पोषण आहार का महत्व और वार्ताकार हमें अदिति साहू और बातचीत करते हैं इनका संग गोमती साहू।
1: बनी वो शिशु गर्भवती माता और स्तनपान कराने वाली माता के शारीरिक व मानसिक विकास पर बेहद जरूरी होते पूरक पोषण आहार। ता आज हमन यही विषय में जानकारी लिए बर आमंत्रित करे हन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अदिति साहू जी मन ला। ता स्वागत है अदिति जी हम आप मन के हमर कार्यक्रम घर द्वार में। मोर कति ले राम राम जय जोहार।
2: राम राम जय जोहार।
1: ता अदिति जी सबले पहली आप मन बताहा कि पूरक पोषण का आहार का है।
2: पूरक पोषण आहार है अतिरिक्त पौष्टिक भोजन है जो है शिशु के पाद जो बढ़ते उम्र होते ऊपर पोषण ला समय से पूरा करना, जरूरत ला पूरा करना।
1: हाँ।
2: एक बार माँ के दूध के साथ साथ दिया जाते यह हर आमतौर पर 6 माह के उम्र के शुरुआत में किया जाते। 6 माह के बाद केवल माँ के दूध ही पर्याप्त नहीं हो पाए, जेकर वजह से ये अतिरिक्त पौष्टिक आहार मल्ला दिया जाते हैं।
1: जी आपने सही कहा कि 6 महीना तक केवल माँ के दूध, ओकर बाद वो 6 महीना बाद शिशु ला अतिरिक्त आहार की जरूरत पड़ते, उमा हमन पूरक पोषण आहार ला दे सकत हन, है ना
2: जी।
1: तो शिशु पर पूरक पोषण आहार की शुरुआत कौन से जिनिस से करना चाहिए?
2: शिशु ला शुरुआती समय में पतला दाल, चावल के बने हुए खीर, उबले व मसले हुए आलू दे सकत हन, जेकर में बहुत सारा पोषक आहार थे। साथ ही साथ केला, शुरू से शुरुआती तौर पे केला या और उन्हें जो विभिन्न प्रकार के पोषक आहार होते वो मल्ला शामिल करके दे सकत हैं। अनाज, हरा साग सब्जी, फल लभी उन्हें शामिल कर सकत हैं। साथ ही साथ जब हम खाना बनाते हैं तो खाना बनाए के समय में बर्तन के साफ सफाई, हाथों के साफ सफाई में विशेष ध्यान देना चाहिए।
1: बिल्कुल, साफ सफाई से ही बच्चा स्वस्थ रही और स्वस्थ भोजन पाही, है ना। तो ये बढ़िया बात बताया आपमन। आंगनबाड़ी द्वारा और का दिए जाते हो मतलब सुविधा और का हो सकत है?
2: भारत सरकार द्वारा एकीकृत महिला बाल विकास द्वारा जो पोषण अभियान चलाया गया है उसके अंतर्गत जम्मू हितग्राही मल्ला रेडी टू ईट दिया जाते, साथ ही साथ पके हुए गर्म भोजन और सूखा भोजन पौष्टिक आहार थे वो भी दिया जाते, जो में 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चा मल्ला आंगनबाड़ी केंद्र में नाश्ता, गर्म बने हुए पके हुए भोजन, साथ ही साथ जो गर्भवती माता होते, शिशुवती जो माता होते, जो स्तनपान कर रही माता होते ना, वो मल्ला पोषक आहार दिया जाते, जो में सूखा टेटी के मात्रा थे, जैसे कि मीठा पोषक आहार थे और एक दलिया जो नमकीन आहार थे, वो सब जो शिशुवती माता है ते मल्ला दिया जाते।
1: जी जी जी। तो आपके आंगनबाड़ी में जो छोटे बच्चा है या गर्भवती माता है वो मल्ला और का सुविधा मिलते हैं?
2: आंगनबाड़ी केंद्र में वजन त्योहार मनाया जाते, जो उनमें कुपोषित लेका मन के वजन करते, तो साथ ही साथ जो सुपोषित लेका है ते सबके वजन किया जाते, हाइट और वजन लिया जाते हर महीना में, और टीकाकरण की भी सुविधा है, जो उनमें गर्भवती माता मन भी आकर के अपन टीकाकरण करवा सकते हैं, हर महीना आकर के अपन टीका लगवा सकते हैं। शिशुवती माता मन है जो कल लेकर उनके 1.5 महीना के वर्ष में जो टीका लगाते वो ना लगा सकते, और टीकाकरण में बहुत सारे सुरक्षित के हमारे बताया जाते, जानकारी दिया जाते।
1: तो ये तो बहुत अच्छा बात बताया, जे मन अस्पताल या और आने जगह टीकाकरण नहीं करवा सके उमन निश्चित ही आंगनबाड़ी जाके टीकाकरण के भी लाभ ले सकते हैं, है ना। रेडी टू ईट आहार के साथ साथ उमन टीका संबंधी भी जानकारी आप उनसे ले सकते हैं। तो अदिति जी आप मन बहुत अच्छा बात बताया, लेकिन सामान्य आहार के अतिरिक्त पोषण जो प्रदान करते जो नर कुपोषण से बचाव या स्वास्थ्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण है, काबर पूरक पोषण आहार है?
2: यह बच्चा और गर्भवती माता स्तनपान कराने वाली जो माता है ना, उनके पोषण ला के जो कमी रहते उन्हें दूर करे बर करते, शारीरिक व मानसिक विकास बुला सुरक्षित करे बर किया जाते, जो में माता मल्ला जो पौष्टिक आहार है बच्चा उनके साथ ही साथ देखभाल करना के प्रति जागरूक किया जाते, शरीर ला अतिरिक्त ऊर्जा और सूक्ष्म जो पोषक आहार तत्व रहते।

0: जैसे कि आयरन हो गए, जिंक हो गए, जो आवश्यकता होती है हमके शरीर ला और सब चीज ला होते दिया जाते हैं। साथ ही साथ यदि समय में पूरा पोषण आहार है शुरू कर दिया जाते तो बच्चा मतलब कुपोषित से बचाया जा सकता
1: है। जी, तो पूरक पोषण आहार के मुख्य भूमिका यही है कि हमन जो कुपोषित बच्चा है ओला हमन कुपोषण के शिकार हो से बचा सकत हन। तो बहुत अच्छा जानकारी दे आप मन। तो अदिति जी आप मन बताहा कि शिशु बर का जिनिस से हमन ला सावधानी रखना चाहिए।
0: सबले पहले तो शुरुआत में हमेशा एक तरह के भोजन देना चाहिए ताकि बच्चा ला स्वाद के पहचान हो सके। एक साथ ही साथ 6 माह तक के जो केवल माँ के ही जो दूध लपी करके मतलब अपन
1: पेट भरते
0: हाँ, साथ ही साथ उन्हें 6 माह के बाद ठोस आहार दिया जाते जो में प्रतिदिन में 2 से 3 बार दिया जाना जरूरी है। एक साथ ही साथ बच्चा उनके जो भोजन है उनमें नमक चीनी और शहद ला नहीं मिलाना चाहिए, उनमें उपयोग नहीं करना चाहिए।
1: हाँ। तो ये तो बहुत अच्छा बात बताया कि नमक शहद और चीनी से हमें बचना है, माने कम से कम 1 साल तक तो बच्चा ला देना ही नहीं।
0: हाँ।
1: तो ये विशेष ध्यान रखना है। और 6 माह के पहले ऐसे भी बोले जाते कि बच्चा ला माँ के दूध के अलावा कुछ भी नहीं देना है ना।
0: हाँ।
1: पानी भी नहीं देना है, जैसे कई जन सोचते हैं कि ज्यादा गर्मी पड़त है तो थोड़े थोड़े पानी भी पिला दें, तो ये गलती मत करें, काबर एकर से बच्चा ला इन्फेक्शन हो के खतरा रहते। हाँ। तो अदिति जी आप मन से बहुत अच्छा अच्छा जानकारी मिली। सर निश्चित ही जो भी हमार महतारी मन सुनत हुई तो मन का लाभ जरूर ली। और आप मन हमार कार्यक्रम में आया और हमन से बातचीत करा ओकर बार आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम जय जोहार।
0: राम राम जय जोहार।
2: बनी अभी मन सुने भेंट वार्ता और एक बार अपन चर्चा आगे बढ़ाया जाए और जाना जाए अटल पेंशन योजना के बारे में। मैं नहीं हूँ अटल पेंशन योजना सरकार की एक लोकप्रिय योजना है जो में एक व्यक्ति ला 1,000 ले लेके 5,000 रुपये तक की राशि हर महीना पेंशन के रूप में दिए जाते। यदि पति पत्नी दोनों योजना में आवेदन करत हमें तो दोनों ला योजना के लाभ मिलते। योजना के लाभ लेने पर 18 साल ले लेके 40 साल आयु के कोनो भी व्यक्ति आवेदन कर सकत हवे। योजना के लाभ लेने पर जरूरी है कि उनका नाम लिए बचत खाता होना चाहिए और खाता ले हर महीना एक निश्चित प्रीमियम राशि के भुगतान करना होते। योजना में शामिल होने के बाद यदि मन बीच में यानी 60 साल उम्र होने के पहले भी यदि पैसा निकालना चाहत हन तो निकाल सकत हन। 60 साल आयु पूरा होने के बाद योजना में पेंशन मिलना शुरू होते। योजना में सरकार आयु और हर महीना जितकी पेंशन लेना चाहत हवा उसका हिसाब ले स्पष्ट नीति नियम बनाए हवे। यदि हमन हर महीना 1,000 पेंशन चाहत हन और हमार आयु 18 साल हवे तो हमन ला 42 साल की उम्र होए तक हर महीना 42 रुपया जमा करना हुई। यदि 40 साल की उम्र हवे और हमन ला 20 साल तक 291 रुपया हर महीना जमा करना हुई। यदि हमन 1,000 पेंशन के प्रीमियम शुरुआत करे हन और वैसे व्यक्ति की यदि मृत्यु हो जात हवे तो कर उत्तराधिकारी ला या नामांकित व्यक्ति ला 1.7 लाख रुपया मिलते। ये प्रकार ने बनी हो 2,000, 3,000, 4,000 या अधिकतम 5,000 हर महीना पेंशन चाहत हन अपन उम्र के हिसाब ले हर महीना हमन ला प्रीमियम देना हुई। यदि हमन 30 साल के हमन और हर महीना 5,000 पेंशन चाहत हन तब 577 रुपया प्रीमियम हमन ला जमा करना हुई। यदि ये प्रीमियम लेने वाला व्यक्ति के मृत्यु हो जाता है तो कर उत्तराधिकारी ला या नामांकित व्यक्ति ला 8.5 लाख रुपया मिलते। इस प्रकार हमन अपन उम्र और जितकी पेंशन चाहत हन ओकर हिसाब ले ये योजना के लाभ ले सकत हन। ये तो इस अटल पेंशन योजना के बारे में कुछ जानकारी। और आज के हमारे क्रम हमें रांधबो कूटबो, तो ये क्रम में आओ हम जानबो रागी के व्यंजन हमारे पारंपरिक खाद्य पदार्थ है ओकर बारे में कुछ जानकारी। बनी हो रागी यार पौष्टिकता ले भरपूर अनाज हवे जेकर भोजन में हमन प्रयोग पहले के जमाना में बहुत करते रहन, लेकिन जैसे जैसे आधुनिक जीवन शैली ला हमन अपनात हन ऐसे अनाज मन ले हमन के दूरी हो जाते। एकर उपयोग कम कर देले हमन ला कई प्रकार के समस्या के भी सामना करना पड़ते हैं। बनी हो रागी कोदो कुटकी बाजरा इस सबो हर सुपर फूड कहे जाते काबर की में पौष्टिक रक्ता के मात्रा हर बहुत ही ज़्यादा होते, पौष्टिक लाले भरपूर होते, इनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ही कम होते, एवं के सेवन ले कोलेस्ट्रॉल कम होते। नियमित रूप से यदि हमने कर उपयोग करत हन तो हमन हाई बीपी और हृदय संबंधी बीमारी ले बाँच सकत हन। इनमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में होते, जेहर हड्डी के विकास बर ओला मजबूत बनाए बर जरूरी हवे। एकर सेवन ले पाचन संबंधी समस्या भी नहीं होए और पाचन तंत्र ठीक रहते। कब्ज और गैस जैसे समस्या भी एकर सेवन ले नहीं होए। डायबिटीज के रोगी मन पर भी रागी और जितकी भी मोटा अनाज हवे फायदेमंद रहते, काबर की एकर सेवन ले डायबिटीज हर कंट्रोल भी हो जाती है आसानी ले, काबर की में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा हर बिल्कुल ही कम रहते। बनिए पहले के समय में यह अनाज मन के उपयोग अपन भोजन में नियमित रूप से करे जाते रहे, जेकर कारण आज के जैसे स्वास्थ्य संबंधी समस्या पहले के बुजुर्ग मन ला नहीं होते रहे। लेकिन आज बुजुर्ग हो या युवा सबो जन कई प्रकार के स्वास्थ्य संबंधी समस्या ले परेशान हवे। यदि हमारे रोज के भोजन में रागी या और दूसर मोटा अनाज जैसे कि बाजरा जौ कोदो कुटकी के उपयोग करत हन तो मोटापा डायबिटीज कैल्शियम के कमी जैसे समस्या ले बाँच सकत हन। ये तो ही समय आज के क्रम रांधबो कुटबो। अब आओ सुना जाए ये गीत।

गाय गीत के संगे आपन से विदा लेके के बेला होते हैं। अगले कार्यक्रम में फिर भेंट होगी, तब तक मैया सबो श्रोता बहनी मल्ला सविता के राम राम, जय जोहार।

घर द्वार कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है। 6 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: निर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में उभर रहा है। मिस्त्राल एआई के सीईओ आर्थर मेंश ने कहा कि कंपनी भारतीय भाषाओं के लिए सहयोग बढ़ाने, एआई अनुसंधान साझेदारी का विस्तार करने और संप्रभु एआई पर गहरा सहयोग तलाशने की इच्छुक है। सीएमए सीजीएम के चेयरमैन और सीईओ रडॉल्फ सादे ने कहा कि भारत हरित जहाज निर्माण के केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
1: प्रधानमंत्री मोदी आज फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवाटिक सम्मेलन में शामिल होंगे। श्री मोदी सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय कार्यक्रमों का नेतृत्व करेंगे। विवाटिक सम्मेलन के इस संस्करण में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय मंडप है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। श्री शाह ने बताया कि इस दौरान आतंकवाद और मादक पदार्थों के खिलाफ दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा हुई। गृहमंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प है। प्रधानमंत्री इस समय विवाटिक सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
2: For the 10th edition of VivaTech. This is Europe's biggest technology event. I congratulate President Macron and the organizers for the success of VivaTech. Friends, 2026 is a special year for India and Europe. At the beginning of the year, we concluded the historic India-EU Free Trade Agreement.
1: सरकार ने कहा है कि सभी तेल शोधन संयंत्र पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ उच्च क्षमता पर काम कर रहे हैं। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक बनाया जा रहा है।
3: पत्तन रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर वर्क कर रही है। रिटेल आउटलेट्स पर और डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स पर ऑपरेशन नॉर्मल है। एलपीजी बैकलॉग घटकर 3.1 डेज हो गया है। पिछले तीन दिनों में 1.36 करोड़ बुकिंग्स के अगेंस्ट 1.47 करोड़ डिलीवरीज की गई हैं।
1: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,370 मेट्रिक टन एलएनजी से लदा मालवाहक जहाज दिशा के कल सुबह गुजरात के दाहेज बंदरगाह पर पहुंचने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि मंत्रालय ने अब तक 3,639 से अधिक भारतीय नाविकों की सुरक्षित स्वदेश वापसी की सराहना की है। पिछले तीन दिन में 47 नाविक वापस आए हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। उपराष्ट्रपति और दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति सीपी राधाकृष्णन ने नशा मुक्त परिसर अभियान के अंतर्गत दिल्ली विश्वविद्यालय की महत्वपूर्ण प्रगति की सराहना की है। विश्वविद्यालय के 53,000 से अधिक छात्रों ने देश को नशा मुक्त बनाने की प्रतिज्ञा ली है। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक में आज लगातार पांचवें दिन बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 254 अंक बढ़कर 77,410 पर और निफ्टी 82 अंक बढ़कर 24,168 पर दर्ज हुआ। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आइए हम आपको हमारे केंद्र से आज की सभा से प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। अब से थोड़ी देर बाद शाम 6:20 पर और शाम 7:00 आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। किसान भाई कार्यक्रम किसानवाणी सुन सकेंगे शाम 7:20 पर। किसानवाणी कार्यक्रम में आज की बात का विषय है सब्जियों के प्रमुख कीट एवं व्याधियों का जैविक नियंत्रण अपनाएं। आज की नसीहत में सुनिएगा, जहां सवाल वहीं समाधान, बस एक कॉल पर किसान कॉल सेंटर। साथ ही आप सुनेंगे आज का टिप, कृषक प्रश्न मंच, आज का मंडी भाव और आज का मौसम। रात्रि 8:15 पर आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से हम रिले करेंगे 19 शासकीय भर्ती।

0: विविध संगीत आप सुन सकते हैं रात्रि 10 बजे और 10:30 पर हम आपको सुनवाएंगे फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम अनुरोध। क्षमा कीजिए, फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी फरमाइश। ये था कार्यक्रम विवरण हमारे केंद्र से आज की सभा से प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों का।
1: अब एफएम रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे 3 विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल 3 विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम एफएम रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र, छोटे अतरमुड़ा, रायगढ़। श्रोताओं, आकाशवाणी रायगढ़ की ईमेल सेवा के माध्यम से अधिक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। आप भी हम तक अपने सुझाव और फरमाइश ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, अनुरोध, तरुणों की पसंद, पत्र मिला और लोक रंजनी के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप ईमेल भेजते हैं उसका नाम सब्जेक्ट फील्ड में लिखना आवश्यक है। कार्यक्रम के नाम के बिना ईमेल शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com, shrotarayagarh, यानी shrotarayagad@gmail.com।
0: एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है। 6:10 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार।
2: समाचार। केंद्र सरकार वित्त बच्चर 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्र में 26,000 किलोमीटर ले ज्यादा सड़क के निर्माण करही। युवा और आम मनखे मल्ला नशा के दुष्प्रभाव के प्रति जागरूक करे बर छत्तीसगढ़ समाज कल्याण विभाग डहर ले प्रदेश भर में नशा मुक्त भारत सप्ताह के आयोजन करे जाते। और शक्ति जिला के फगुरम चौकी पुलिसा आज 2 क्विंटल ले ज्यादा गांजा के संग 2 आरोपी मल्ला गिरफ्तार करे है। अब समाचार विस्तार ले। केंद्र सरकार वित्त बच्चर 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्र में 26,000 किलोमीटर ले ज्यादा सड़क के निर्माण करही। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और संबंधित ग्रामीण संपर्क पहल में अवैया ग्रामीण क्षेत्र में सड़क के निर्माण पर 18,900 करोड़ रुपया ले ज्यादा आवंटित करे गए है। ग्रामीण सड़क संपर्क परियोजना के प्रगति के आकलन करे बर ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल के अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित करेगी। बैठक में छत्तीसगढ़ के संग आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और आने राज्य के वरिष्ठ अधिकारी मन भाग लीन। ए दौरान राज्य ला प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और पीएम जनमन में अवैया लंबित परियोजना में सरलक काम करे के निर्देश दे गए है। दल्ली राजहरा रावघाट रेल परियोजना के तहत काली 17 जून ले रावघाट रेलखंड में नियंत्रित गति और सीमित भार के संग तकनीकी ट्रायल शुरू करेगी। ये ट्रायल आने आने चरण में आगू भी जारी रही। ए दौरान रेल लाइन के परिचालन के क्षमता, सुरक्षा और तकनीकी मानक के परीक्षण करे जाही। करीब 95 किलोमीटर लंबा दिल्ली राजहरा रावघाट रेल परियोजना ला सेल भिलाई इस्पात संयंत्र और भारतीय रेलवे के साझा प्रयास ले विकसित करे जाते। युवा और आम मनखे मल्ला नशा के दुष्प्रभाव के प्रति जागरूक करे बर छत्तीसगढ़ समाज कल्याण विभाग डहर ले काली 17 जून ले प्रदेश भर में नशा मुक्त भारत सप्ताह के आयोजन करे जाते। समाज कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव शहला निगारहा मंत्रालय में आयोजित कार्यक्रम में अधिकारी और कर्मचारी मल्ला नशा मुक्ति के शपथ दिलाईन। उमन्हा बतैन कि ए बच्चर नशा मुक्त भारत अभियान विकसित भारत की पहचान थीम में सप्ताह भर आने आने गतिविधि के आयोजन करे जाही। 26 जून चलैया नशामुक्त भारत सप्ताह के दौरान स्कूल कॉलेज और आने शैक्षणिक संस्था में सेमिनार समूह चर्चा शपथ ग्रहण जागरूकता रैली और संवाद कार्यक्रम आयोजित करे जाते। उन्हें स्वास्थ्य विभाग डहल ले नशा छोड़ चुके मन के प्रेरणादायक सफलता के कहानी के प्रचार प्रसार करे

0: एखर अलावा महिला अउ बाल विकास विभाग, पंचायत अउ ग्रामीण विकास विभाग डहर ले मानव श्रृंखला, शपथ कार्यक्रम अउ जागरूकता गतिविधि के आयोजन करे जाही। समाज कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव शहला निगार के अध्यक्षता में आज मंत्रालय में छत्तीसगढ़ शराब व्यसन मुक्ति अभियान पर गठित राज्य स्तरीय समिति के बैठका हुई। बैठका में राज्य के हरेक विकास खंड के 1000 ले ज्यादा जनसंख्या वाला नवा ग्राम पंचायत में भारत माता वाहिनी के गठन और विस्तार संबंधी प्रस्ताव पर विचार विमर्श करेगी। समिति ह नशा पीड़ित मनखे मन के पुनर्वास बर संचालित 15 बिस्तर वाला एकीकृत पुनर्वास केंद्र के क्षमता 15 ले बढ़ा के 50 बिस्तर करे के सुझाव दिन। संगे संग 5 जिला मोहला, मानपुर, अम्बागढ़ चौकी, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, सुकमा, बेमेतरा, कोरबा मा नवा नशा मुक्ति केंद्र खोले के निर्णय लेगी। प्रदेश में कुपोषण के समस्या ला दूर करे बर महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े हा सुपोषण वृक्ष मुनगा के रोपण ला जन आंदोलन के स्वरूप दे के आह्वान करे हे। श्रीमती राजवाड़े हा सबो जनप्रतिनिधि मन ले वर्षा ऋतु के दौरान जल स्रोत के तीर तखार, ग्राम पंचायत परिसर, सार्वजनिक जगह और हितग्राही मन के घर मा मुनगा के पौधा लगाए के आग्रह करे हे। ओमन हा सबो मनखे मन ले ए अभियान मा सक्रिय भागीदारी निभा के सुपोषित छत्तीसगढ़ के निर्माण मा योगदान दे के अपील करीन हे। आकाशवाणी रायपुर के प्रादेशिक समाचार एकांश डहर ले 19 शासकीय भर्ती परीक्षा पास करके अनोखा रिकॉर्ड बनैया चारू पांडे ले लेगी साक्षात्कार के प्रसारण आज रतिहा 8:15 मा करे जाही। ए कार्यक्रम ला छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सबो केंद्र रिले करही। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर लेहे आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता लेहे हमर वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमर समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमर फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमर यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुंचा थन छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगु बाढ़ बाचे समाचार कोती। सक्ती जिला के फगुरम चौकी पुलिस आज 2 क्विंटल ले ज्यादा गांजा के संग 2 आरोपी मल्ला गिरफ्तार करे है। जब्त गांजा की कीमत करीब 1,45,00,000 रुपया बताए जाते। जिला के पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर हा बताइन कि मुखबिर ले मिले सूचना के आधार मा पुलिस हा नाकाबंदी करके गाड़ी के जांच करीन। ए दौरान पुलिस हा ओडिशा ले राजस्थान ले जावत गांजा ला एक ट्रेलर ले बरामद करीन। आरोपी मन के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज करी गए है। एंटी करप्शन ब्यूरो ACB के टीम हा काली प्रदेश की टीम आने आने जिला मा दबिश दे के भ्रष्टाचार के मामला मा 3 लोगन मल्ला गिरफ्तार करे है। ACB के टीम हा काली भिलाई नगर निगम ले सेवानिवृत्त चीफ इंजीनियर ला भ्रष्टाचार के एक मामला मा हिरासत मा लीन। एखर अलावा धमतरी मा विद्युत यांत्रिकी विभाग मा पदस्थ प्रोग्रेस मैन ला 1,00,000 रुपया के रिश्वत लेवत रंगे हाथ गिरफ्तार करीन। उहे ACB हा जशपुर नगर मा RES विभाग के SDO ला घलो 25,000 के रिश्वत लेवत रंगे हाथ गिरफ्तार करे है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हा काली गरियाबंद जिला ला 603,46,00,000 रुपया ले ज्यादा के विकास काम के सौगात दिन। पुलिस परेड ग्राउंड मा आयोजित कार्यक्रम मा मुख्यमंत्री हा 76 विकास काम के लोकार्पण, भूमि पूजन और शिलान्यास करीन। एमा सड़क, सिंचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी और बिजली ले जुड़े काम शामिल है। वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस मा राज्यपाल रमन डे कहा आज लोकभवन मा उखड़ चित्र मा फूल चढ़ा के ओमल्ला नमन करीन। ए अवसर मा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू और सांसद ब्रिजमोहन अग्रवाल के संग लोकभवन के आने अधिकारी कर्मचारी मन घलो रानी लक्ष्मीबाई ला श्रद्धांजलि दीन। कोरिया जिला के कलेक्टर रुक्तिमा यादव हा एक आदेश जारी करके महलापारा, बैकुंठपुर, नौगई के संग भाजपा नेता भरत सिंह घरवार के कटगोड़ी स्थित क्रेशर प्लांट एरिया के 300 मीटर दायरा मा धारा 163 लागू कर दे है। जारी आदेश के अनुसार कोनो भी प्रकार के हथियार और विस्फोटक सामान पाए जाए मा कड़ा कार्रवाई करे जाही। एखर अलावा ए क्षेत्र मा जुलूस, धरना प्रदर्शन और आम सभा मा प्रतिबंध लगाए गए है। जिला दंडाधिकारी हा स्पष्ट करे है कि ये आदेश ओ शासकीय कर्मचारी अधिकारी ऊपर लागू नहीं हुई जेन मन हा अपन शासकीय दायित्व के निर्वहन करे बर लाठी या शस्त्र राखे के जरूरत होते। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मनला इस संवेदनशील क्षेत्र मा लगातार निगरानी

0: आखे अउ कोनो भी अप्रिय स्थिति ले निपटे के निर्देश दे गए हे। जानबा के मुताबिक कोरिया जिला के कटगोड़ी गांव मा भाजपा नेता के संग तीन लोगन के मौत के मामला मा पुलिस आ चार लोगन मन ला गिरफ्तार करे हे। लोरमी मा आयोजित महाराणा प्रताप जयंती समारोह मा उप मुख्यमंत्री अरुण साव हा कहिन हे कि महाराणा प्रताप के जीवन साहस स्वाभिमान और राष्ट्र के भक्ति के अमर मिसाल है। पीएम सेतु योजना के तहत प्रदेश के शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई ला आधुनिक और उद्योग के लायक बनाए जाते। योजना के तहत छात्र मन ला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एआई और ड्रोन जैसन नवा तकनीक के प्रशिक्षण दे जाही। संगे संग पुराना मशीन के जगह मा आधुनिक उपकरण डिजिटल कंटेंट और स्मार्ट क्लासरूम के सुविधा उपलब्ध कराई जाही। मुख्य सचिव विकास सिल की अध्यक्षता मा मंत्रालय मा आयोजित राज्य स्तरीय स्टीयरिंग समिति के बैठक मा पीएम सेतु योजना के प्रगति के समीक्षा करेगी। राजधानी रायपुर में पहली बार ईस्टर्न स्लैम के आयोजन करे जाही। एकर तहत 22 ले 27 जून तक बूढ़ापारा स्थित एक्सक्वेस कॉम्प्लेक्स में प्रतियोगिता आयोजित करे जाही। इमा सिंगापुर के संग भारत के 21 राज्य ले लगभग 350 जूनियर और सीनियर खिलाड़ी भाग लिही। प्रतियोगिता पर 2000 अमेरिकी डॉलर के पुरस्कार राशि निर्धारित करे गए है। उप मुख्यमंत्री और खेल मंत्री अरुण साव हा बिलासपुर के भतराई राज्य खेल प्रशिक्षण के निरीक्षण करीन। ए दौरान ओमनहा निर्माण काम के प्रगति ऊपर नाराजगी जताइन। ओमन कहीन कि खिलाड़ी मल्ला अच्छा सुविधा उपलब्ध कराना सरकार के प्राथमिकता है और एमा कोनो भी प्रकार के लापरवाही स्वीकार नहीं करे जाही। आखिर मा प्रमुख समाचार एक फेर। केंद्र सरकार वित्त बछर 2026-27 मा ग्रामीण क्षेत्र मा 26,000 किलोमीटर ले ज्यादा सड़क के निर्माण करही। युवा और आम मन के मल्ला नशा के दुष्प्रभाव के प्रति जागरूक करे बर छत्तीसगढ़ समाज कल्याण विभाग डहल ले प्रदेश भर में नशा मुक्त भारत सप्ताह के आयोजन करे जाते। शक्ति जिला के फरगुम चौकी पुलिस आज 2 क्विंटल ले ज्यादा गांजा के संग 2 आरोपी मल्ला गिरफ्तार करे है। एक संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन यही सिरावत है। जय जोहार।
1: आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है। डीजी अपसने कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत आइए सुने फिल्म अंजाम से। आवाज है अभिजीत की, गीतकार समीर और संगीत दिया है आनंद मिलिंद ने।

मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।

0: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं निशा भारद्वाज और आप सुन रहे हैं आजादी का जय घोष वंदे मातरम। श्रोताओं, वंदे मातरम गीत भारत के राष्ट्रगीत के रूप में अपनी एक गहरी और महत्वपूर्ण विरासत रखता है और आज इस विरासत के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ऐसे में इस विषय पर हमसे अधिक जानकारी साझा करने के लिए जुड़ रहे हैं श्री हितेंद्र पटेल, जो कि रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कोलकाता में इतिहास के प्रोफेसर हैं। नमस्कार हितेंद्र जी, आपसे जानना चाहते हैं कि वंदे मातरम गीत की रचना किस ऐतिहासिक संदर्भ में हुई थी और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का क्या दृष्टिकोण था।
1: वंदे मातरम गीत जो है वो 1870 के दशक में लिखा गया था। शुरू में इसको संस्कृत में लिखा गया था, इसका दो स्टैंजा,

0: बाद में इसको बढ़ाया गया, 6 स्टेंजा इसका किया गया, और 1882 में पहली बार इसको महत्वपूर्ण उपन्यास बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का आनंद मठ में शामिल किया गया है, जिस उपन्यास में एक सन्यासी विद्रोही भवानंद जो है इसको गाता है और देश प्रेमियों को आह्वान करता है कि अपनी मातृभूमि के लिए वो सोचे और उसके लिए कुर्बानी दे। बाद में 1886 में कलकत्ता अधिवेशन में इसे गाया गया हेमचंद्र द्वारा, और 1896 में रविंद्रनाथ ने इसकी एक धुन बनाई और ये इसको कांग्रेस अधिवेशन में गाया भी था। 1901 में कलकत्ता में श्रीचरण दास ने भी इसे गाया था, और इस समय तक ये देखा जा रहा है कि भारत के विभिन्न हिस्सों के जो बड़े नेता हैं जैसे तिलक वगैरह जो हैं वो इसको एक मंत्र के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, देश प्रेम के एक मंत्र के रूप में। 1905 में बनारस में सरला देवी चौधरानी ने इसको गाया था, और जैसा मैंने कहा कि इसकी जो धुन जो है वो रविंद्रनाथ ने 1896 में बनाई थी, ये बात कई जगह अन्य लोग भी कहते हैं कि यदुनाथ भट्टाचार्य थे जिन्होंने इसकी धुन बनाई थी, लेकिन जो भी हो ये तय है कि स्वदेशी आंदोलन के समय आते आते ये राष्ट्रीय एक मंत्र बन चुका था, जो अंग्रेज विरोधी राष्ट्रीय भावना थी उसका एक नारा बन चुका था। और इसका परिणाम ये होता है कि 1906 में जब बरिसाल में कांग्रेस की एक जुलूस निकली तो उसमें इसको बैन कर दिया गया कि आप वंदे मातरम स्लोगन नहीं दे सकते हैं। भीखाजी कामा ने 1907 में स्टुगार्ट में जब तिरंगा झंडा फहराया तो वहां भी वंदे मातरम जो है वो एक नारे के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। और इस तरह से हम देखते हैं कि 1906-07 तक आते आते वंदे मातरम जो है वो हमारे देश के जो लड़ने वाले थे, जो चाहते थे कि अंग्रेजों से लड़ाई की जाए और अपने देश के देशवासियों को स्वदेश प्रेम के लिए उत्प्रेरित करते हुए कुछ कहना चाहते हैं, उसका रैलिंग सॉन्ग बन गया। सब्यसाची भट्टाचार्य इतिहासकार ने एक किताब लिखी है इसके ऊपर, और उसमें उन्होंने दिखलाया है कि इस गीत मात्र से पूरे देश में किस तरह की भावना जो है उत्पन्न होने लगी थी, और बाद में धीरे धीरे इसको लेकर के कोई संदेह नहीं रहा कि वंदे मातरम जो है भारतीय राष्ट्रवादियों का विशेषकर क्रांतिकारियों का एक स्लोगन बन गया था। रामप्रसाद बिस्मिल जब आत्मकथा लिखते हैं 1929 में तो वहां भी वंदे मातरम का उद्घोष होता है, और ये जो वंदे मातरम है यह निश्चित रूप से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सबसे महत्वपूर्ण गीत बना था, और इसको गाने का मतलब था कि अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय लोग एकजुट होकर अपनी राष्ट्रीय भावना को प्रस्तुत कर रहे हैं। 36-37 में यह तय हो गया कि इसका 2 स्टैंजा जो है जिसमें कि देश प्रेम की बात की गई है उसको ही हम लोग राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार करेंगे। बाद में ये कहा गया कि हम राष्ट्रीय गान के रूप में रविन्द्रनाथ के जन गण मन अधिनायक जय हे को रखेंगे, और वंदे मातरम की चूंकि ख्याति थी, लोकप्रियता थी, इसलिए इसको राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकृति मिली। तो गान और गीत दोनों को बराबर मान्यता दी जाए इसके लिए एक विशेष बात हम लोग को ध्यान में रखनी चाहिए, जो जनवरी 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का एक वक्तव्य है और जिसका करतल ध्वनि से सबने स्वागत किया था कि दोनों ही रहेंगे, जनगण मन भी रहेगा और वंदे मातरम भी रहेगा, एक को गान कहा गया और दूसरे को गीत कहा गया, दोनों का स्टेटस बराबर का होगा। अगर हम इसके ऐतिहासिक महत्व को समझना चाहें तो यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वंदे मातरम ने ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की प्रेरणा के रूप में काम किया था। जनगण मन को गा करके लोग शहीद नहीं हुए थे, फांसी पर नहीं चढ़े थे, ये बाद में एक सॉल्यूशन के रूप में जातीय गान के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। दरअसल हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण गीत और नारा वंदे मातरम ही है, और इसी का जो इसकी इसी की जो स्पिरिट है उसको सेलिब्रेट किया जाना चाहिए, पूरे देश में इस गान और इसकी स्पिरिट को याद किया जाना चाहिए। जब जब हम राष्ट्रीय आंदोलन के स्पिरिट की बात करेंगे तो वंदे मातरम की बात करनी ही होगी, और ये हमारा एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय गीत है जो हमारी राष्ट्रीयता की भावना को स्पष्ट रूप से सामने रखता है, और इसके साथ हमारे क्रांतिकारी आंदोलन की स्मृतियां भी पूरी तरह से जुड़ी हुई हैं।
1: धन्यवाद प्रोफेसर हितेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। एक बार पुनः आपका धन्यवाद।

फिल्म संगीत में अभी आप सुन रहे थे फिल्म जोश का गीत, आवाज थी अभिजीत की, गीतकार समीर थे और संगीत दिया था अन्नु मलिक ने। कार्यक्रम के अंत में आइए सुने कभी हां कभी ना फिल्म का गीत, अमित कुमार, कुमार सानू और उदित नारायण की आवाजें हैं, गीतकार मजरू और संगीत जतिन ललित का है।

0: कभी हाँ कभी ना, इस फिल्म के गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है। 6:45 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
2: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। सूर्य घर।
5: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
6: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
5: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
6: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
5: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
6: क्यों?
5: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
7: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
8: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
9: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
8: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठ कर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
9: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
8: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
9: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
7: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
10: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
9: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
10: क्यों भाई, सिर्फ शहर में?

0: अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
1: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
0: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
3: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में 18,900 करोड़ रुपए की लागत से 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज रायपुर में आयोजित आचार्य पदारोहण और सहस्रावधान तपस्या महोत्सव में हुए शामिल। युवाओं और आम नागरिकों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने प्रदेश भर में नशा मुक्त भारत सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। और सक्ती पुलिस ने 1,45,00,000 रुपये कीमत के गांजे के साथ 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और संबंधित ग्रामीण संपर्क पहलों के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए 18,900 करोड़ रुपए से अधिक आवंटित किए गए हैं। ग्रामीण सड़क संपर्क परियोजनाओं की प्रगति का आकलन करने के लिए ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में छत्तीसगढ़ सहित आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और अन्य राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान राज्यों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और पीएम जनमन के अंतर्गत लंबित परियोजनाओं पर तेजी से काम करने के निर्देश दिए गए हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज रायपुर के सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में आयोजित आचार्य पदारोहण और सहस्रावधान तपस्या महोत्सव में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री बिरला ने कहा कि भगवान महावीर और जैन दर्शन के सिद्धांत आज भी मानवता को शांति, आत्मसंयम, करुणा और अहिंसा का मार्ग दिखाते हैं। वहीं मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की पावन धरती पर पहली बार आयोजित हो रहा आचार्य पदारोहण महोत्सव प्रदेश के लिए गौरव और सौभाग्य का विषय है। इस कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह और केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू भी शामिल हुए। दल्ली राजहरा रावघाट रेल परियोजना के तहत कल 17 जून को रावघाट रेलखंड पर नियंत्रित गति और सीमित भार के साथ तकनीकी ट्रायल शुरू किया गया। ये ट्रायल विभिन्न चरणों में आगे भी जारी रहेगा। इस दौरान रेल लाइन की परिचालन क्षमता, संरचनात्मक सुरक्षा तथा तकनीकी मानकों का परीक्षण किया जाएगा। करीब 95 किलोमीटर लंबी दल्ली राजहरा रावघाट रेल परियोजना को सेल भिलाई इस्पात संयंत्र और भारतीय रेलवे के साझा प्रयासों से विकसित किया जा रहा है। मान में रावघाट स्टेशन भवन, यात्री सुविधाओं तथा सिग्नलिंग और दूर संचार से जुड़े कार्यों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस वर्ष जुलाई के अंत तक स्टेशन परिसर के शेष कार्य पूरे होने की संभावना है। रावघाट तक रेल संपर्क स्थापित होने से बस्तर के दूरस्थ क्षेत्रों की पहुंच राज्य और देश के प्रमुख शहरों तक और अधिक सुगम हो जाएगी। युवाओं और आम नागरिकों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने के लिए छत्तीसगढ़ समाज कल्याण विभाग द्वारा कल 17 जून से प्रदेश भर में नशा मुक्त भारत सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। समाज कल्याण विभाग की प्रमुख सचिव शहला निगार ने मंत्रालय में आयोजित कार्यक्रम में अधिकारियों और कर्मचारियों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई। उन्होंने बताया कि इस वर्ष नशा मुक्त भारत अभियान विकसित भारत की पहचान थीम पर सप्ताह भर विविध गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। 26 जून तक चलने वाले नशा मुक्त भारत सप्ताह के दौरान स्कूलों, कॉलेजों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में सेमिनार, समूह चर्चा, शपथ ग्रहण, जागरूकता रैलियां तथा संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा नशा छोड़ चुके व्यक्तियों की प्रेरणादायक सफलता की कहानियों का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इसके अलावा महिला और बाल विकास विभाग तथा पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मानव श्रृंखला, शपथ कार्यक्रम और जन जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। समाज कल्याण विभाग की प्रमुख सचिव शहला निगार की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में छत्तीसगढ़ शराब व्यसन मुक्ति अभियान के लिए गठित राज्य स्तरीय समिति की बैठक हुई। बैठक में राज्य के प्रत्येक विकासखंड की 1000 से अधिक जनसंख्या वाली नई ग्राम पंचायतों में भारत माता वाहिनी के गठन और विस्तार संबंधी प्रस्तावों पर विचार विमर्श किया गया। समिति ने नशा पीड़ित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए संचालित 15 बिस्तरों वाले एकीकृत पुनर्वास केंद्रों की क्षमता 15 से बढ़ाकर 50 बिस्तर करने का सुझाव दिया। साथ ही 5 जिलों मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, सुकमा, बेमेतरा और कोरबा में नए नशा मुक्ति केंद्र खोलने का निर्णय लिया गया। पीएम सेतु योजना के तहत प्रदेश के शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों आईटीआई को आधुनिक और उद्योग अनुकूल बनाया जा रहा है। योजना के तहत छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और ड्रोन जैसी नई तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही पुरानी मशीनों के स्थान पर आधुनिक उपकरण, डिजिटल कंटेंट और स्मार्ट क्लासरूम की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में मंत्रालय में आयोजित राज्य स्तरीय स्टीयरिंग समिति की बैठक में पीएम सेतु योजना की प्रगति की समीक्षा की गई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
4: छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारे यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार।
3: और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। कोरिया जिले की कलेक्टर रोकतिमा यादव ने एक आदेश जारी कर महलपारा, बैकुंठपुर, नौगई के साथ भाजपा नेता भरत सिंह गहरवार के कटगोड़ी स्थित क्रेशर प्लांट एरिया के 300 मीटर दायरे में धारा 163 लागू कर दी है। जारी आदेश के अनुसार किसी भी प्रकार के हथियार और विस्फोटक सामग्री पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा इन क्षेत्रों में जुलूस, धरना प्रदर्शन और आमसभा पर प्रतिबंध लगाया गया है। जिला दंडाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि आदेश उन शासकीय अधिकारियों कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा जिन्हें अपने शासकीय दायित्वों के निर्वहन के लिए लाठी अथवा शस्त्र रखने की आवश्यकता होती है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को इन संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखने तथा किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के निर्देश दिए गए हैं। गौरतलब है कि कोरिया जिले के कटगोड़ी गांव में भाजपा नेता सहित 3 लोगों की मौत के मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। सक्ती जिले के फगुरम चौकी पुलिस ने आज 2 क्विंटल से अधिक गांजे के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जब्त गांजे की कीमत करीब 1,45,00,000 रुपए बताई जा रही है। जिले के पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर ने बताया कि मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने नाकेबंदी कर वाहनों की जांच की। इस दौरान पुलिस ने ओडिशा से राजस्थान ले जाए जा रहे गांजे को एक ट्रेलर से बरामद किया। आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। एंटी करप्शन ब्यूरो ACB की टीम ने कल प्रदेश के 3 अलग अलग जिलों में दबिश देकर भ्रष्टाचार के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। ACB की टीम ने कल भिलाई नगर निगम से सेवानिवृत्त चीफ इंजीनियर को भ्रष्टाचार के एक मामले में हिरासत में लिया। इसके अलावा धमतरी में विद्युत यांत्रिकी विभाग में पदस्थ प्रोग्रेसमैन को 1,00,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। वहीं ACB ने जशपुर नगर में RES विभाग के SDO को भी 25,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आकाशवाणी रायपुर के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा 19 शासकीय भर्ती परीक्षाएं पास कर अनोखा रिकॉर्ड बनाने वाली चारू पांडे से लिए गए हस्ताक्षात्कार का प्रसारण आज रात 8:15 पर किया जाएगा। इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस पर राज्यपाल रमेश डेका ने आज लोकभवन में उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू और सांसद ब्रिजमोहन अग्रवाल सहित लोकभवन के अन्य अधिकारियों कर्मचारियों ने भी रानी लक्ष्मीबाई को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल गरियाबंद जिले को 603,46,00,000 रुपए से अधिक के विकास कार्यों की सौगात दी। पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 76 विकास कार्यों का लोकार्पण, भूमि पूजन और शिलान्यास किया। प्रदेश में कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने सुपोषण वृक्ष मुनगा के रोपण को जन आंदोलन का स्वरूप देने का आह्वान किया है। श्रीमती राजवाड़े ने सभी जनप्रतिनिधियों से वर्षा ऋतु के दौरान जल स्रोतों के आसपास ग्राम पंचायत परिसरों सार्वजनिक स्थलों तथा हितग्राहियों के घरों में मुनगे के पौधे लगाने का आग्रह किया है। उन्होंने सभी नागरिकों से इस अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाकर सुपोषित छत्तीसगढ़ के निर्माण में योग

0: दान देने की अपील की है। लोरमी में आयोजित महाराणा प्रताप जयंती समारोह में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि महाराणा प्रताप का जीवन साहस, स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति की अमर मिसाल है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आगामी 23 जून को नवा रायपुर अटल नगर स्थित मंत्रालय में राज्य मंत्री परिषद की बैठक होगी। जांजगीर चांपा जिले के कोड़ाभाट गांव में तालाब में डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र कोंडागांव द्वारा कल 19 जून को कलेक्टोरेट परिसर में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में 18,900 करोड़ रुपए की लागत से 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज रायपुर में आयोजित आचार्य पदारोहण और सहस्रावधान तपस्या महोत्सव में हुए शामिल। युवाओं और आम नागरिकों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने प्रदेश भर में नशा मुक्त भारत सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है और सक्ती पुलिस ने 1,45,00,000 रुपए कीमत के गांजे के साथ 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। आइए सबसे पहले सुने फिल्म यस बॉस में अभिजीत और अलका याग्निक को। गीतकार हैं जावेद अख्तर और संगीत जतिन ललित का है।

0: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
1: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
0: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
1: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
0: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
1: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
3: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
4: देश की सुरीली धड़कन
5: विविध भारती,
3: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
4: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत,
3: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
4: वीर सैनिकों की जय माला
3: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
4: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
6: सखी सहेली,
4: बॉम्बे टॉकीज और
7: सेल्यूलॉइड के सितारे,
4: हम क्या कहें, आपको याद सब है जरा जरा,
8: मुझे याद सब है जरा जरा,
3: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
4: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन,
3: मन का सुकून, दिल की आरती,
4: सुरीली संदली।

0: कुमार सानू और साधना सरगम का गाया गीत अभी आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम था दीवाना।
1: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
2: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
3: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
2: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
3: आकाशवाणी से।
4: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
5: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
6: देश की सुरीली धड़कन
7: विविध भारती,
5: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
6: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत,
5: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
6: वीर सैनिकों की जय माला
5: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
6: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
8: सखी सहेली,
6: बॉम्बे टॉकीज और
9: सेल्यूलॉइड के सितारे,
6: हम क्या कहें, आपको याद सब है जरा जरा,
10: मुझे याद सब है जरा जरा,
5: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
6: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन,
5: मन का सुकून, दिल की आरती,
6: सुरीली संदली।

इंदिवर के बोल अभी आप सुन रहे थे राजेश रोशन के संगीत निर्देशन में फिल्म करण अर्जुन के लिए। ये आवाजें थी कुमार सानू और अलका याग्निक की। इसके साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है। लीजिए अब सुनिए किसान भाइयों का कार्यक्रम किसान वाणी।

किसानवाणी सुनैया सबो किसान संगवारी मन ला नीलू प्रधान कोती ले राम राम जय जोहार। संगवारी हो स्वागत हवे हमार कार्यक्रम किसानवाणी मा। किसान साथी हो आज आप मन ला हमार कार्यक्रम मा कृषि संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी सरकारी योजना के बारे में बताथन जेकर लाभ जो है आपन बखत बेरा ले सकत है। संगवारी हो आज के विषय में आज का कोट बात करबो तेकर बारे में थोड़कुन जान लेवन। आज की बात पर हम चर्चा करबो संगवारी हो सब्जियों के प्रमुख कीट एवं व्याधियों का जैविक नियंत्रण अपनाएं। आज के नसीहत में चर्चा करबो संगी हो जहां सवाल वहीं समाधान, बस एक कॉल पर किसान कॉल सेंटर। और आज के टिप में चर्चा करबो संगी हो न्यूनतम प्रीमियम अधिकतम सुरक्षा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। संगे मा आज के किसान मा आप मन ला सुनवाबो ग्राम केसला विकास खंड पुसोर के कृषक सीताराम सतनामी एवं बहुत कम लागत मा अधिक मुनाफे का व्यवसाय बकरी पालन विषय पर मोर गुड बात हो रही संगवारी हो ए लगला आप मन ला सुनवाबो। संगे मा माझा माझा मा आप मन ला सुघर सुघर लोकगीत घलो सुनवाबो। तो हमार कार्यक्रम ला आगे बढ़ाबो संगवारी हो और शुरू करबो आज की बात ले। आज की बात में हम चर्चा करबो संगी हो सब्जियों के प्रमुख कीट एवं व्याधियों का जैविक नियंत्रण अपनाएं। किसान भाई हो सब्जी मन के खेती ले देखा हमन ला जो है बहुत बढ़िया उत्पादन घलो मिलते और बहुत बढ़िया मुनाफा घलो होते। कई बार कहा होते संगवारी हो जैसे मौसम परिवर्तन या माटी में हानिकारक जीवाणु वायरस मन के प्रकोप जो हो जाते तो ओमा हमार आनी बानी के हमार जो सब्जी वर्गीय फसल वो है ओमा आनी बानी के जो है कीट हो जाते हैं, रोग हो जाते हैं जेकर ले हमार फसल जो है हमार किसान भाई मन ला काफ़ी नुकसान उठाए बर पड़ते। संगी वो सब्जी वर्गीय फसल में सबसे ज़्यादा हमार नुकसान जो है फसल ला खरपतवार करते हैं, ओकर बाद जो है कीट और रोग मन करते हैं जेकर नियंत्रण करना संगवारी हो हमन ला बखत बेरा रहत नियंत्रण करना बहुत ही जरूरी हवे। संगी हो रोग कीट के नियंत्रण पर हमार अधिकतर किसान संगी संगवारी मन जो है का करते हैं रासायनिक उर्वरक के जो है रासायनिक कीटनाशक दवाई मन के जो है प्रयोग करते हैं जेकर ले संगवारी हो हमार जो फसल है हमार जो माटी है पानी है और मानव स्वास्थ्य जो है संगवारी हो ओ मल्ला काफ़ी नुकसान होते और हमार पर्यावरण घलो दूषित होते। तो संगवारी हो ऐसन समस्या झन हो तेकर बर हमल्ला जो है हमार मानव स्वास्थ्य बढ़िया रहे माटी दूषित ना हो एकर बर जरूरी हवे कि हमन सब्जी वर्गीय फसल में जो है रासायनिक दवाई के प्रयोग नहीं करके संगी हो हमल्ला जैविक नियंत्रण ला अपनाना हवे। एकर ले का होते संगवारी हो हमार फसल घरों सुरक्षित रही थे और हमार फसल हमार जो खेती है वो हर घलो टिकाऊ बन थे यानी कि सस्टेनेबल फार्मिंग जो है हमन कर सकत हन। तो संगवारी हो हमला जैविक नियंत्रण जो है अगर कीट रोग लगत है तो हमला जैविक नियंत्रण ला अपनाना हावे। जैविक नियंत्रण मतलब का होते साथी हो जैसे कि अपन आस पास मां उपस्थित प्राकृतिक संसाधन लाभकारी जीव जैविक दवाई नीम आधारित उत्पाद गौमूत्र यानी कि किसान दादा हो प्राकृतिक तरीका ले कीट और रोग मन के नियंत्रण करना ही जैविक नियंत्रण कहे जाते। सरल भाषा में समझबो तो संगवारी हो बिना जहर के खेती करना ही जैविक नियंत्रण कहे जाते। किसान दादा हो अभी के वक्त बेरा में आपन बहुत से सब्जी वर्गीय फसल की खेती करे हवा जैसे कि बैगन की खेती है भिंडी है मिर्च तोरई टमाटर लौकी करेला ऐसे बहुत से प्रकार के सब्जी जो है आपन लगाए हवा। किसान साथियों सब्जी में कई प्रकार के कीट व्याधि मन जो है लग जाते हैं जेकर बखत बेरा रहत आपन ला पहचान करना हावे किसान साथियों और ओकर नियंत्रण करना बहुत ही जरूरी हावे। सब्जी वर्गीय फसल में किसान दादा हो कीट के प्रकोप के बात करबो तो मुख्य रूप ले जो है हमार सब्जी वर्गीय फसल में जो मुख्य रूप ले जो कीट लगते संगी हो वो हावे फल और तना छेदक कीट फ्रूट एंड शूट बोरर। संगवारी हो ये जो
कीट हवे वो हमर मुख्य रूप ले बैगन टमाटर और मिर्च के फसल में बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है नुकसान पहुँचाते हैं। ये कीट जो है संगी हो इल्ली मन जो है हमर जो पौधा के कोमल कोमल तना है वो में घुस जाते हैं और ला भीतर ले जो है खोखला कर देते हैं और फल के भीतर घुस के जो है संगी हो छेदा छेदा कर देते हैं जेकर ले हमर फसल हमर फल के जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाते और हमर फसल जो है वो सूख जाते। तो एकर नियंत्रण करना बहुत ही जरूरी हावे। एकर नियंत्रण पर आप मल्ला का करना हावे संगी हो जैसे कि संक्रमित फल है और तना है ओला तोड़ के आप मल्ला नष्ट कर देना हावे। एकर अलावा संगी हो आप मल्ला फेरोमैन ट्रैप के 10 से 12 प्रति एकड़ के हिसाब से आप मल्ला लगाना हावे। और एकर अलावा जैसे आप ज़्यादा प्रकोप होते तो नीम के तेल 5 मिली पर लीटर पानी में घोल के जो है संगवारी हो आप मल्ला छिड़कना हावे। एकर अलावा ट्राइकोग्रामा परजीवी किट के उपयोग घलो आप मन कर सकत है। ये तरीका ला अपना के संगवारी हो आप मन फल और तनाछेदक कीट के नियंत्रण जो है कर सकत है। एकर अलावा संगी हो जैसे सब्जी वर्गीय फसल में और प्रकार के जो है मुख्य कीट लगते हैं जैसे कि माहू कीट है, सफ़ेद मक्खी है, जेसीट है, लाल मकड़ी, कद्दू वर्गीय फसल में जो है फल मक्खी फ्रूट फ्लाई ये मन जो है अत्यंत जो है प्रकोप करते हैं और हमार फसल ला जो है नुकसान करते हैं। एकर नियंत्रण पर भी आपन जैविक नियंत्रण ला अपना सकत है। एकर पर आपन नीम के तेल फेरोमैन ट्रैप पीला चिपचिपा ट्रैप ट्राइकोग्रामा और बीटी जैसन जैविक उपाय आप मन अपना सकत है और अपन फसल ला जो है सुरक्षित और लाभकारी तरीका ला है जो है आप मन अपना सकत है। एकर ले कहो तो संगवारी हो हमार माटी जो है बढ़िया रहते और फसल जो है बढ़िया उत्पादन घलो देते और हमार पर्यावरण जो है वह घलो सुरक्षित रहते। अब बात करबो संगवारी हो रोग व्याधि के तो साथियों जब भी हमन सब्जी वर्गीय फसल में जब फल लगते और ओकर विकास होते तो अधिकतर जो है रोग लग जाते हैं। रोग के प्रकोप जो है हमला ज़्यादा देखे पर मिलते जैसे कि टमाटर के फसल है लौकी के फसल है या मिर्च बैंगन लौकी जैसन फसल में संगवारी हो झुलसा रोग के प्रकोप जो है ज़्यादा हो जाते। झुलसा रोग के जो लक्षण हवे साथियों ये पान जो है सूखा हो जाते और काला काला धब्बा जो है दिखाई देते। एकर ले आप मल्ला समझ जाना चाहिए कि यह झुलसा रोग लगे है। एकर नियंत्रण करना आप मल्ला बहुत ही जरूरी हवे संगवारी हो नहीं तो हाँ आप मन के जो पेड़ है वो सूख जाते और फल जो है झड़ जाते और पान गलो झड़ जाते। तो प्रभावित फसल ला जो है आप मल्ला का करना है रोगी पान मल्ला तोड़ के नष्ट कर देना हावे और नीम के तेल के उपयोग संगी हो आप मल्ला करना हावे। एकर अलावा संगवारी हो जैसे सब्जी वर्गीय फसल में बहुत ही ज़्यादा जो रोग लगते वो हावे पाउडरी मिल्ड्यू सफ़ेद चूर्ण रोग। ये जो है संगवारी हो फसल के पत्ती के ऊपर सफ़ेद सफ़ेद चूर्ण जैसे परत दिखाई देते पान में पियर होके जो है सूख जाते। एकर नियंत्रण पर आप मल्ला निमास्त्र संगवारी हो गौमूत्र के प्रयोग जो है आप मन कर सकत है और एकर नियंत्रण जो है कर सकत है। ये तो रही संगवारी हो हमार आज की गोड़ बात। अब बखत बेरा हो चली से संगवारी हो आज के कृषक प्रश्न मंच के। आज के कृषक प्रश्न मंच में मैं आप मल्ला एक प्रश्न पूछिए जेकर उत्तर हमला लिख भेजिए। किसान साथी हो हमार प्रश्न हावे लिखा सब्जी वर्गीय फसल के कोनो दो मुख्य कीट के नाम

0: बतावा। संगवारी हो, आप मन ला एक बार फिर सुरता दिला देथन। हमार प्रश्न हवे, सब्जी वर्गीय फसल के कोनो दो मुख्य कीट के नाम बतावा। जेकर उत्तर हमन ला लिख के भेज सकत संगवारी हो, हमार पता हवे क्रम कृषक प्रश्न मंच कार्यक्रम किसानवाणी द्वारा केंद्र निदेशक पोस्ट बॉक्स नंबर 21 हमार रायगढ़ के पिन नंबर हवे 496001। ई पता में लिख के भेज सकत है। संगवारी हो, आज के मौसम के जानकारी अपन ला बताबो। आज के अधिकतम तापमान हवे 40 अंश सेंटीग्रेड और आज के न्यूनतम तापमान हवे 25 अंश सेंटीग्रेड। आद्रता बिहनिया 7 बजे 71% रहीस, जोनहर की दोपहर 2 बजे घट के 44% होगी। हवा के गति है संगी हो 2.6 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार ले जो है चलत हवे और हवा के दिशा है दक्षिण ले पश्चिम कोती। ई जानकारी हमला मिलते संगी हो कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र बोईर दादर रायगढ़ के कृषि मौसम वैद्यशाला के यंत्र मन के हिसाब ले। किसान साथी हो, आप मल्ला अगोरा रहे थे आज के किसान के भेंटवार्ता सुने के। आज के किसान महावे ग्राम केसला विकासखंड पुसोर के कृषक सीताराम सतनामी कम लागत में अधिक मुनाफे का व्यवसाय बकरी पालन विषय पर मोर यानी कि नीलावती प्रधान की बातचीत हो रही। संगवारी हो, आवाज सुनन आज के किसान। किसान दादा हो, राम राम, जय जोहार। जैसे कि आप मन जाना था हमार कार्यक्रम चौपाल में आज क्रम रही थे आज के किसान। यही क्रम में आज हम पहुँचे हैं एक ऐसा विकासशील प्रगतिशील किसान संगवारी करा जो मन बहुत सुखर जो है पशुपालन बहुत बखत बेराले करत हवे। तो आप किसान संगवारी ले जानबो कि वो मन किस प्रकार से जो है पशुपालन करत हवे। किसान भैया आप मन ला राम राम, जय जोहार।
1: राम राम, जय जोहार।
0: सबले पहले तो आपन के नाम बताओ और आपन के गांव के नाम बताओ।
1: मोर नाम सीताराम है, गांव केसला है।
0: और आपन के विकासखंड कहाँ पर थे?
1: पुसौर पर थे।
0: अच्छा, मैं देख पा था आपन कतका सुघर जो है पशुपालन करा था और बहुत संख्या में जो है पशुपालन करा था। तो अभी के बेरा में आपन का पशु रखे हैं?
1: अभी छेरी रखे हैं।
0: तो आपन छेरी के पालन करा था?
1: हाँ, छेरी चरा था।
0: जनला की बकरी कथन का?
1: बकरी कथन जनला और कर पालन करें हम।
0: तो अभी के बेरा में अपन केठी बकरी रखे हैं?
1: अभी 10 टी हैं और 2 टी पीला हैं, घर में 12 टी है। सब मिला के?
0: सब मिला के।
1: हां हां,
0: जैसे कि अपन 12 टी रखे हैं।
1: हां
0: हां, और 2 टी पीला हैं और 5-10 टी जो है बड़े-बड़े हैं। हां, तो केठी मादा हैं और केठी नर हैं?
1: माने 2 टी बकरा हैं और 6 टी ये हैं
0: मादा है का।
1: हाँ।
0: तो संगवारी ए मन ला खवाए पियाए बर कैसे करता आप?
1: ओए डहर पान खाते हैं, चरा के लानथन, पानी पर से पियाथन घर में पाले हैं।
0: अच्छा, तो एकर पालन जो है वो बहुत सुखर है कि मैं पाले पर बहुत कठिन लगते हैं?
1: हाँ, कठिन है भी, बरसा महीना नहीं तो बढ़िया है आजकल भी गर्मी महीना में।
0: हाँ हाँ,
1: सच बन कर सब उड़वा जाते थे।
0: हाँ हाँ, तो अभी खेत खाली रहते तो बन मन आराम से। आप मन मल्ला बकरी मल्ला चराए वाला ले जाता?
1: हां, चराए वाला था सुबह शाम दोनों टाइम।
0: दोनों टाइम का?
1: हां हां।
0: तो बिहनिया ले कितने टाइम आप मन निकल जाता चराए पर?
1: ओए 7 बजे ले डिल था ना, माने 10 11 बजे चारा था तब घर ले लन था।
0: अच्छा, अभी देखो बहुत घाम पड़े थे तो आप मन सुबह सुबह ले ले आन था का?
1: हां हां।
0: और संझा के कितने टाइम लन था?
1: और संझा 6 बजे।
0: अच्छा, 6 बजे ले 7 बजे तक चला था का? तो आप मन जैसे चला था तो एकर अलावा आप मन ला पशु मन ला फाइबर लाते कि नहीं लाते?
1: हाँ, पानी पसिया पिला था मन ला, जहाँ भी जो भी रहते और चारा के लान था।
0: तो आप मन के जो पशु है ये हर कतक कतक साल के हो?
1: आप वो मन रहा एक और दूधी तीन तीन साल के पिला मन में है। और मैं मन तो वे होगी ना कहा समझ जा।
0: हाँ हाँ, तो अभी बकरी मन जब गर्भकाल होते तो कितने कितने महीना में बच्चा दे देते?
1: 6 महीना में देते हैं, साल में 2 बार।
0: साल में 2 बार देते
1: हैं? हां
0: हां। और कितने कितने ठी बच्चे देते हैं?
1: 2 ठी, 1 ठी
0: ऐसे करके देते
1: हैं? हां, जो जिसे 2 ठी देते हैं तो 1 ठी भी देते हैं।
0: तो जो बकरी आप पर रखे है यार कितने साल के बाद आप बेचे के लायक हो जाते हैं?
1: हो जाते हैं 2-3 साल में एक बार बेचे हो
0: जाते हैं?
1: हां हां।
0: तो ये में बढ़िया आप मुनाफा मिलते?
1: हां, मस्त मिल जाते।
0: हां हां, और एक ठी हर बकरा हर कतेक रुपया में बेच हो जाते?
1: वही 8-10 इसे बेचते हैं।
0: 8-10 हजार में? तो ये में बढ़िया मुनाफा है का?
1: हाँ बढ़िया नाफा है।
0: तो किसान भैया जैसे गर्मी के महीना चला थे कहा, तो ये मन के रहे वह बसे के व्यवस्था अपन कैसे करते?
1: भरी पत्र पाट दे हनो में और गुड़िया उड़ा चाहते तो पंखा भी चला देता।
0: अच्छा,
1: साफ सुथरा करके रखता।
0: तो साफ सुथरा कतक कतक बार करता?
1: दो बार करता दिन में, एक बार सुबह एक बार शाम के
0: करता का।
1: हाँ हाँ।
0: और जो गोबर होते वाला कैसे करता?
1: वाला रख देता खेत खाद में पालता, नहीं तो बेच देता। हाँ हाँ।
0: तो आप मन खेती का लो करता?
1: हाँ करता एक दुखाड़ी के।
0: अच्छा करता,
1: ज्यादा तो नहीं करा।
0: आप मन छोटे किसान हो कहा?
1: हाँ हाँ।
0: खेती के संगे संग पशुपालन घलो करत है अतिरिक्त आय बर कहा?
1: हाँ हाँ हाँ।
0: तो कतका सुघर जो है किसान भैया देखा अपन पशुपालन करे है कहा?
1: हाँ हाँ।
0: ये में आप मन ला बहुत बढ़िया मुनाफा घलो मिलत है कहा?
1: हाँ बढ़िया मिलते।
0: तो एकर अलावा कुछ और पशु भी रखता कि खाली बकरी चला?
1: नहीं खाली बकरी रखे ना भी, गाय गोरु नहीं रखे ना भी।
0: ये मन के देख रेख जो है बहुत ही आसान है?
1: हाँ बहुत आसान में रखे पड़ते।
0: हाँ हाँ। तो में खर्चा करे बार लगते कि नहीं लगे?
1: खर्चा नहीं लगे, जब बीमार से मार पड़े सूजी माटी तो लगभग करते।
0: हाँ हाँ। तो आप मन डॉक्टर ला बुला था?
1: हाँ डॉक्टर ला बुला था, पशु डॉक्टर ला। सूजी गोली करते।
0: हाँ हाँ। किसान भैया देखा कत का बढ़िया जो है हमन ला जानकारी दे पशुपालन के बारे में, बकरी के पालन में। तो ये ला हमार जो और भी किसान संगवारी बकरी पालन ला आप नहीं तो मन ला मुनाफा है कि?
1: हाँ फायदा बहुत है मैं रखे में तो।
0: हाँ हाँ।
1: और जो मन है हमारे गाँव देहात में?
0: हाँ हाँ।
1: वो मन भी इसे पालन पोषण करके नफा कमा सकत हैं।
0: बहुत सुघर संगवारी देखा हमन ला अपन कतका सुघर बढ़िया जानकारी दे है, तेकर बार आप मन ला बहुत बहुत धन्यवाद है। राम राम जय जोहार।
1: राम राम जय जोहार।
0: किसान संगवारी हो अभी हमन सुनन आज के किसान ग्राम केसला विकास खंड पुसोर के कृषक सीताराम सतनामी से कम लागत में अधिक मुनाफे का व्यवसाय बकरी पालन विषय पर मोर गोट बात हुई रही संगवारी हो। संगवारी हो आज की नसीहत में चर्चा करबो जहां सवाल वहीं समाधान, बस एक कॉल पर किसान कॉल सेंटर। किसान दादा हो आज हमन एक ऐसन सुविधा के बारे में बात करबो जेन हर किसान पर बहुत ही उपयोगी और मददगार हावे। ये सुविधा के नाम हावे किसान संगवारी हो किसान कॉल सेंटर। किसान भाई हो खेती किसानी में देखा कई प्रकार के समस्या आ जाते, कभू फसल में कीड़ा लग जाते हैं तो कभू फसल में बीमारी फैल जाते हैं, तो कभू खाद बीज सिंचाई मौसम या बाजार के भाव के बारे में जानकारी हमला बढ़िया से नहीं मिल पाए। ऐसन समय में किसान भाई मन पर चिंता के विषय जो है पड़ जाते। तो ऐसे समय में संगवारी हो करना का हवे हमला, लेकिन किसान भाई हो अब चिंता करे के कोई जरूरत जो है आपनला निहावे। काबर की भारत सरकार किसान मन पर किसान कॉल सेंटर के सुविधा जो है शुरू करे गए है। किसान कॉल सेंटर का हवे जाना था किसान संगवारी हो, किसान कॉल सेंटर एक राष्ट्रीय सेवा जो है हवे जहां किसान संगवारी मन जो है अपन खेती ले जुड़े हर प्रकार के सवाल जो है ओकर जवाब जो है संगवारी हो सीधा फोन में आप मन पा सकत है। किसान भाई मन पर टोल फ्री नंबर 1800-1855 में कॉल करके अपन समस्या जो है किसान साथी हो बता सकत है। और जानत है किसान दादा हो ये कॉल जो है बिल्कुल फ्री और मुक्त हावे। किसान कॉल सेंटर के फायदा के बारे में बताबो तो संगवारी हो सबसे पहली तो किसान ला कहीं जाए की जरूरत नहीं पड़े, बल्कि घर बैठे मोबाइल या फोन ले जो है आपन ला जानकारी जो है मिल सकत है। दूसर जो फायदा होते किसान दादा हो विशेषज्ञ मन सलाह जो है आपन ला सीधा देते हैं, कृषि वैज्ञानिक कृषि अधिकारी और कृषि विशेषज्ञ मन जो है आपन ला संगवारी हो जानकारी देते हैं, जेकर ले आप मन जो है एकर फायदा जो है ले सकत है और बढ़िया अपन फसल के उपयोग जो है कर सकत है। किसान संगवारी हो आवाज सुनान एक संदेश फिर हमार चर्चा ला आगू बढ़ावो।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: संगवाई हो आवाज सुनान एक ठन सुघर अकन लोकगीत, फिर हमारे चर्चा ला आगू बढ़ावो।

संगवारी हो, अभी हमन सुनन सुग्घर अकन लोकगीत। संगवारी हो, आज की नसीहत में हमन चर्चा करबो न्यूनतम प्रीमियम अधिकतम सुरक्षा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। किसान साथियों, खेती किसानी एक ऐसा बूता है जहां मेहनत के संगे संग जो है मौसम के ऊपर घलो बहुत निर्भर रहना पड़ती। कभू आंधी आ जाते तो कभू सूखा पड़ जाते संगवारी हो, तो कभू ओलावृष्टि बाढ़ और कीट और रोग जैसन समस्या जो है आ जाते और फसल ला जो है भारी नुकसान हो जाते। ऐसन परिस्थिति में किसान के मेहनत और पूंजी दोनों जो है संगवारी हो खतरा में पड़ जाते। यही समस्या के समाधान पर भारत सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है चलाए जाते। किसान दादा हो, ये योजना जो है मुख्य उद्देश्य हवे न्यूनतम प्रीमियम अधिकतम सुरक्षा। मतलब किसान भाई मल्ला बहुत ही कम प्रीमियम जमा करके जो है फसल के नुकसान के स्थिति में जो है अधिकतम आर्थिक सहायता जो है सरकार तरफ ले दिए जाते। संगवारी हो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भारत सरकार के एक महत्वपूर्ण योजना हवे जेन हर की 2016 में जो है लागू किए गए रहिस। ये योजना के तहत जो है प्राकृतिक आपदा कीट प्रकोप रोग मौसम के कारण फसल मल्ला हुए नुकसान में किसान मल्ला जो है बीमा सुरक्षा जो है प्रदान किए जाते। ये योजना की जो मुख्य विशेषता हवे संगवारी हो, कम प्रीमियम में ज़्यादा लाभ एम किसान मल्ला बहुत ही कम प्रीमियम देना पड़ते और वो मल्ला बहुत ही बढ़िया लाभ मिलते। संगवारी हो, खरीफ फसल में जैसे बीमित राशि है वो आप मल्ला केवल 2% तक ही जमा करना पड़ते और रबी फसल में जो है आप मल्ला 1.5% जो है प्रीमियम देना पड़ते। वाणिज्य और बागवानी फसल पर आप मल्ला जो है 5% तक जो है आप मल्ला बीमित राशि देना पड़ते। बाकी प्रीमियम राशि जो है संगवारी हो केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो है मिल के जमा करते। ये योजना के पात्र जो है संगवारी हो सबो किसान संगवारी मन हावे। ये योजना के लाभ ऋणी और गैर ऋणी दोनों प्रकार के किसान जो है एकर लाभ ले सकते हैं। छोटे सीमांत और बड़े किसान सबो ये योजना के लाभ में शामिल हो सकते हैं। संगवारी हो, फसल कटाई के बाद घलो सुरक्षा यदि 14 दिन के भीतर में बेमौसम बरसात हो जाते चक्रवात या अन्य प्राकृतिक कारण ले नुकसान होते तो घलो ये योजना के तहत आप मल्ला सहायता दिए जाते। ये योजना के लाभ जो है संगवारी हो बहुत ही ज़्यादा हावे किसान भाई। ये योजना के सबसे बड़ा फायदा हावे कि फसल खराब होए के बाद घलो आप मल्ला पूरा तरह के ले आप मल्ला आर्थिक संकट ले जो है फंसे ले जो है आप मन बच सकत है। बीमा कराए पर संगवारी हो आप मल्ला जो जरूरी दस्तावेज हवे आधार कार्ड बैंक खाता पासबुक बोनी प्रमाण पत्र मोबाइल नंबर जो है आप मल्ला करवाना हवे और आवेदन पर आप मन जो है नज़दीकी बैंक शाखा में जाके कर सकत है। सहकारी समिति ले कॉमन सर्विस सेंटर कृषि विभाग कार्यालय में जो है जाके एकर आवेदन जो है कर सकत है। तो संगवारी हो आप मन एकर फायदा लेवा और एक योजना के जो है आप मन लाभ ले सकत है। संगवारी हो, ये तो रही हमारे आज के टिप के विषय में। संगवारी हो, आवाज सुनन और एक ठन सुग्घर अकन लोकगीत फिर हमार चर्चा ला आगू बढ़ाबो।

0: टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: संगवारी हो, अभी हमन सुनत रहे संदेश। हमार औ विषय के चर्चा है वे संगवारी हो, मृदा स्वास्थ्य कार्ड खेत बचाओ अभियान। किसान दादा हो, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जो हवे भारत सरकार के एक महत्वपूर्ण पहल हवे, जेकर उद्देश्य खेत के माटी के स्वास्थ्य ले स्वास्थ्य के जानकारी जो है किसान मन तक पहुँचाना और खेती के संतुलन जो है ओला बढ़ावा देना। संगी हो, एला खेत के बचाव अभियान घलो कहे जाते, काबर की स्वस्थ माटी ले ही अच्छा फसल जो है और अधिक उत्पादन जो है मिल सकत है। संगी हो, माटी में कई प्रकार के जो है पोषक तत्व ले भरपूर रही थे, जैसे कि नाइट्रोजन रही थे, फास्फोरस रही थे, पोटास, सल्फर और सूक्ष्म पोषक तत्व जो है भरपूर मात्रा में उपस्थित रही थे। साथ ही हो, लगातार खेती करे के कारण जो है कई बार का होते ये तत्व मन के कमी आ जाती और किसान भाई मल्ला जो है पता नहीं चले कि कौन से खाद के कमी है, कतका मात्रा में हमला डालना हवे और कौन से खाद के जरूरत हवे। यही कारण ले जो है संगवारी हो, हमार फसल के उत्पादन जो है वो कम हो सकत है और लागत जो है बढ़ सकत है। एकर खातिर संगी हो, हमार सरकार डहर ले जो है किसान संगवारी मल्ला जो है स्वास्थ्य जो है मृदा स्वास्थ्य कार्ड के माध्यम ले जो है खेती के माटी के नमूना के जो है जांच करा के जांच के बाद जो है एक कार्ड जो है जारी किए जाते, जेमा माटी के गुणवत्ता, पोषक तत्व के स्थिति और आवश्यक जो खाद है ओकर मात्रा जो है वो सब वो जानकारी जो है वो कार्ड में लिखे रहते, जेकर ले हमार किसान भाई मन जो है वो जानकारी ले जान सकते कि कतका मात्रा में हमला खाद डालना हावे, कौन से पोषक तत्व के कमी हावे। एकर ले जो है पता करके हमार किसान साथी मन जो है अपन माटी में जो है वो पोषक तत्व डाल के जो है अपन उत्पादन ला जो है संगवारी हो बढ़ा सकते हैं और मुनाफा जो है कमा सकते हैं, संगे में अपन लागत ला जो है घटा सकते हैं। एकर ले का होते संगवारी हो, हमार माटी के जो उर्वरता है वो बने रही थे और हमार खेती जो है वो टिकाऊ रहे थे। तो संगवारी हो, ये तो रही हमार आज के चर्चा। हमार और चर्चा के विषय हावे झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई बलिदान दिवस। संगी हो, आज हमन झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस जो है मनाथन। हर बच्छर जो है 18 जून यानी कि आज के दिन हमन मनाथन। संगी हो, 18 जून 1858 के दिन रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेज सेना मल्ले लड़त लड़त जो है वीर गतिला प्राप्त करें। रानी लक्ष्मीबाई भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सबसे बहादुर वीरांगना में शामिल हमें संगवारी हो। रानी लक्ष्मीबाई के जन्म 19 नवंबर 1828 में वाराणसी में हुए रहीस। बचपन में ओ मन के नाम जो है मणिकर्णिका रहीस, जेला सब जन प्यार ले जो है मनु मनु करके बुलाते हैं। बाद में झांसी के राजा गंगाधर राव ले विवाह होइस, ओकर बाद ओमन झांसी के महारानी बनीन। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में संगवारी हो, रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेज शासन के खिलाफ डट के लड़ीन और अंग्रेज मन झांसी जो है राज्य ला अपन कब्जा में ले बर चाहत रहीन। फिर रानी साहस और वीरता के संग ओमन के मुकाबला करीन। ओमन घोड़ा में सवार होके तलवार चलावत युद्ध करीन संगी हो और देश के खातिर अपन प्राण न्यौछावर कर दीन। रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान आज घलो देशभक्ति, साहस और आत्मसम्मान के प्रतीक माने जाते हैं। ओमन के जीवन ले हमला अन्याय के खिलाफ हमेशा डट के रहना चाहिए, ऐसे हमला संदेश दिन संगवारी हो। आज हमन झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई बलिदान दिवस में ओमल्ला नमन करथन। संगवारी हो, ये तो रहीस हमार आज के विषय के चर्चा। संगवारी हो, आवाज़ सुनन आओ एक ठन सुगर अकन लोकगीत, फिर हमार चर्चा के विषय ला आगू बढ़ाबू।

अभी हमन सुनन सुघ्घर अकन लोकगीत। हमर और विषय के चर्चा हवे संगवारी हो गुरु अर्जुन देव बलिदान दिवस। संगी हो, गुरु अर्जुन देव जी के बलिदान दिवस जो है हर बच्छर जो है हमन मनाथन 18 जून के। संगवारी हो, सन 1606 में मुगल बादशाह जहांगीर के शासन काल में जो है गुरु अर्जुन देव जी ला अमानवीय यातना दे के जो है शहीद कर दे गिरीस। संगी हो, गुरु अर्जुन देव जी सिख धर्म के पांचवे गुरु रहीन। ओ मन सिख समाज में प्रेम, सेवा, भाईचारा और मानवता के संदेश दे रहीन। गुरु अर्जुन देव जी हर मंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर के निर्माण में संगवारी हो महत्वपूर्ण योगदान दे रहीन और आदि ग्रंथ के संकलन करीन, जेला आज गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में जो है सम्मान मिलते। संगी हो, गुरु अर्जुन देव जी हमेशा जो है सत्य, शांति और धर्म के मार्ग में चलीन। जब ओमन अपन सिद्धांत ले समझौता करे में मना करीन, तब ओमन ला कठोर यातना दे गिरीस। गरम तवा में बैठाए गे रहीस संगवारी हो और गरम रेत डाले गे रहीस। फिर ओमन अपन धैर्य और आस्था ला नहीं खोइन। आखिरकार मानवता और धर्म के रक्षा खातिर अपन प्राण न्यौछावर कर दिन। गुरु अर्जुन देव जी के बलिदान हमला सत्य, सहनशीलता, सेवा और मानव कल्याण के राह में चलाए के प्रेरणा देते हैं। ये दिन श्रद्धालु मन गुरु जिला श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ओमन के बताए मार्ग में चले के संकल्प लिए जाते हैं। गुरु अर्जुन देव जी के अमर बलिदान ला कोटि कोटि हमन सबो नमन करत हन। संगवारी हो, हमर और विषय के चर्चा हवे महान स्वतंत्रता सेनानी सेलम विजय राघवाचार्यर जयंती। संगवारी हो, सलेम विजय राघवाचार्य भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के शुरुआती दौर के प्रमुख नेता रहीन। ओमन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय जुड़े रहीन, एक प्रमुख व्यक्ति में शामिल रहीन। संगवारी हो, देश में राष्ट्रीय चेतना जगाए और अंग्रेजी शासन के खिलाफ जनमत तैयार करे में ओमन के बहुत जो है महत्वपूर्ण योगदान रहीस। संगवारी हो, शिक्षा, सामाजिक सुधार और राष्ट्रीय एकता के ऊपर विशेष जोर दे रहीन विजय जी। ओमन भारतीय जनता के अधिकतर जो है अधिकार, स्वशासन और स्वतंत्रता पर लगातार आवाज़ उठाइन। अपन लेखन, भाषण और राजनीतिक गतिविधि के माध्यम ले देशभक्ति की भावना ला जो है मजबूत बनाइन। ओमन के जीवन जो है संगवारी हो हमला सिखाते कि देश के सेवा, ईमानदारी और समर्पण ले समाज और राष्ट्र के विकास जो है हो सकत है। स्वतंत्रता संग्राम में ओमन के योगदान ला आज घलो सम्मान के संग जो है याद करे जाते। सलेम विजय राघवाचार्य जयंती के अवसर में हमन ए महान स्वतंत्रता सेनानी ला श्रद्धापूर्वक नमन करथन और ओखर आदर्श मल्ला अपन जीवन में उतारे के संकल्प लेथन। संगवारी हो, ये तो रही हमर वर्षक विषय के चर्चा। हमार और विषय के चर्चा हवे संगवारी हो, योग अपनाए तनाव दूर भगाए। संगवारी हो, आज के भाग दौड़ भरे जीवन में तनाव, चिंता एक आम समस्या बन गई हवे। काम के दबाव, पढ़ाई, पारिवारिक जिम्मेदारी और रोजमर्रा के समस्या में मनखे के कारण मनखे जो है तनाव महसूस करते। ये स्थिति में योग एक सरल और सुरक्षित और प्रभावी उपाय हवे। साफ सुबह योग करके जो है संगवारी हो तन और मन दोनों जो है शांति मिलते। सुबह के ताज़ा हवा और योग और प्राणायाम करे ले शरीर में ऊर्जा के संचार होते। तो संगवारी हो, आप मन जो है रोज योग अपनावा, आप तनावला दूर भगावा। संगवारी हो।

0: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 23वां किस्त हस्ताक्षरण जो है संगवारी हो 20 जून के आपन के खाता में केंद्र सरकार के माध्यम ले पैसा जारी हो ही संगवारी हो जेला आप मल्ला मिल सकत है। तो संगवारी हो अब बखत बेरा हो ना जाए के अपन बहनी नीलू प्रधान ला देव विदा। राम राम जय जोहार।
1: किसानवाणी कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे, यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। अगला कार्यक्रम हम थोड़ी ही देर में रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित करते हैं, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

चित्रपट संगीत अभी आप सुन रहे थे, ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 8:15 हुए हैं। प्रस्तुत है 19 शासकीय भर्ती परीक्षा पास कर अनोखा रिकॉर्ड बनाने वाली चारू पांडे से विशेष भेंट वार्ता। प्रस्तुति प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर की।

0: श्रोताओं नमस्कार, हमारे इस विशेष कार्यक्रम के साथ मैं रीना त्रिपाठी। श्रोताओं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ऐसा अक्सर कहा जाता है। लेकिन इस पंक्ति को छत्तीसगढ़ की एक होनहार बेटी चारू पांडे ने अपने जुनून से सच साबित कर दिया है। महज 23 साल की उम्र में चारू ने वह कर दिखाया है जिसका सपना लाखों एस्पिरेंट्स देखते हैं। उन्होंने एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और पुलिस समेत कुल 19 सरकारी भर्ती परीक्षाएं पास कर एक मिसाल कायम की है। रायपुर जिले के तुलसी तिल्दा की रहने वाली चारू आज लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी हैं। उनकी सफलता यह साबित करती है कि दृढ़ संकल्प, मेहनत और सही रणनीति के साथ कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। उनकी उपलब्धियों की चर्चा अब सिर्फ छत्तीसगढ़ तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश में हो रही है। और श्रोताओं, चारू इस वक्त हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम उनकी उपलब्धियों और उससे जुड़े संघर्ष के बारे में उनसे विस्तार से चर्चा करेंगे। चारू, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: जी, थैंक यू।
0: चारू, सबसे पहले तो आपको बधाई आपकी उपलब्धियों के लिए। चारू, 23 साल की उम्र है आपकी। इस उम्र में आपने एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और पुलिस समेत कुल 19 सरकारी भर्ती परीक्षाएं पास करके एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया है। आप अपनी इस उपलब्धि को किस तरह देखती हैं और क्या आपको कोई सम्मान भी मिलने वाला है इसके लिए?
1: जी, मुझे अभी राष्ट्रपति जी से सम्मान मिलने वाला है एट होम पे 15 अगस्त को। इस उपलब्धि को बस मुझे देख के खुशी होती है क्योंकि मैंने भी कभी ये इमेजिन नहीं किया था कि मैं इतने सारे एग्जाम्स क्लियर कर पाऊंगी।
0: चारू, 19 प्रतियोगी परीक्षाएं पास करना एक बड़ी उपलब्धि है। आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? आपने इसके लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया था?
1: जी, एक्चुअली मुझे मतलब सोची नहीं थी कि कभी इतने सारे एग्जाम्स दूंगी, क्रैक करूंगी। बट ये था मुझे कि एक मुझे अच्छे डिपार्टमेंट पे जाना है। मेरा ड्रीम था कि मुझे फाइनेंस डिपार्टमेंट में

0: तो रेलवे पे जो मेरी पोस्टिंग हुई उदयपुर पे,
1: जी
0: तो स्टेशन मैनेजर पे पोस्टिंग हुई, तो जब मैं उस टाइम इस पे ज्वाइन कर ली थी, मैं असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर पे, तो उस पे मेरा ज्वाइन करने का बहुत मन था। तब
1: जी
0: लगा कि ये छोड़ के वो ज्वाइन करती हूँ,
1: जी
0: बट जब मुझे पता चला कि उस पे मुझे स्टडी लीव नहीं मिल पाएगी
1: जी
0: क्योंकि अभी मैं पीएचडी भी कर रही, सो वो फिर छोड़
1: तो
0: के फिर
1: अभी
0: वही।
1: आपका और लक्ष्य क्या है? अभी और आपको पढ़ाई करना है?
0: हाँ, एक्चुअली अभी मैं पीएचडी कंप्लीट करना चाहती हूँ, उसके
1: जी
0: बाद जैसे कि टाइम मिली तो फिर आगे एमफिल वगैरह करने का सोचा है मैंने।
1: तो अभी और भी प्रतियोगी परीक्षाएं देने का मन है आपका?
0: नहीं नहीं अब
1: तो आप
0: बस।
1: संतुष्ट हैं।
0: हाँ, मैं
1: जब कोई
0: संतुष्ट
1: रिजल्ट
0: हूँ।
1: आता था तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होती थी?
0: मैं तो सबसे पहले पापा से वो शेयर करती थी। मैं को इतनी खुशी नहीं होती थी, बस पापा मम्मी की खुशी देख के मुझे बस वो खुशी होती थी। बस मुझे लगता था कि निकल गया एग्जाम, बस यही होता था।
1: जी बहुत सारे युवा श्रोता आप इस समय आपको सुन रहे हैं प्रदेश भर से, आप उन्हें अंत में क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: मैं बस उनसे यही कहना चाहूंगी कि वो बिल्कुल भी डिमोटिवेट ना हो, बस कोशिश करते रहे, क्योंकि जितना हम मेहनत करेंगे, जैसे कि एक एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, उससे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। वो क्लियर नहीं हुआ कुछ रीजन से, तो बस उस पे जाके देखे कि वो क्लियर क्यों नहीं हो पाया, कहाँ पे उनसे मिस्टेक हो रहा, और उस पे थोड़ा सा हार्डवर्क करके नेक्स्ट अटेम्प्ट दे, वो डिमोटिवेट बस ना हो।
1: चारू, अंत में एक बार आपको हमारे पूरे आकाशवाणी परिवार की ओर से पुनः बधाई। आप हमारे स्टूडियो में आई, आपने श्रोताओं को अपने जीवन और प्रतियोगी परीक्षाओं जुड़ी कई सारी जानकारियां साझा की, हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू।
1: तो श्रोताओं, हमारे इस विशेष कार्यक्रम में नहीं, अब हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत। आइए सबसे पहले सुनिए फिल्म जमाना दीवाना में कुमार सानू और अलका याग्निक को।

ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर। अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मनोरंजन शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना ओटीटी ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स ओटीटी ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।

अभी आप सुन रहे थे चमत्कार फिल्म का गीत। गीतकार थे आनंद बख्शी, संगीत दिया था अन्नू मलिक ने और आवाजें थीं कुमार सानू और अलका याग्निक की। इसके साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रौद्योगिकी में प्रगति तभी हो सकती है जब उसका लाभ सब तक पहुंचे। उन्होंने पेरिस में विवटेक शिखर सम्मेलन में भारत के तेजी से हो रहे डिजिटल परिवर्तन में प्रौद्योगिकी के उपयोग का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने भारत में निवेश के अवसरों और विस्तार योजनाओं पर फ्रांस के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ चर्चा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों का आकलन करने के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौतों का एक ऐतिहासिक दस्तावेज बताया। यूक्रेन ने एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार रूस के मॉस्को में तेल रिफाइनरी पर हमला किया और चीन में विश्व मुक्केबाजी कप में मीनाक्षी हुडा क्वार्टर फाइनल में पहुंची। कल क्वार्टर फाइनल में चार भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस में विवटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत वित्तीय समावेशन, शिक्षा, कृषि और अन्य क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
1: द मैसेज आई शेयर देन एट विवाटेक 2021 वेयर कन्वेंशन फेल्स इनोवेशन कैन हेल्प। इंडिया हैज बीन गोइंग थ्रू अ रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज पावर्ड बाय टेक्नोलॉजी फ्रॉम क्रिएटिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम टू द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स। वी आर यूजिंग टेक्नोलॉजी एट अ मैसिव स्केल फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, एजुकेशन, टेलीमेडिसिन, एग्रीकल्चर एंड मोर।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी से तभी प्रगति हो सकती है जब उसका लाभ सभी तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि उथल पुथल भरे इस दौर में प्रौद्योगिकी का लाभ सभी को मिलना चाहिए।
1: AI must improve lives, widen access, drive growth and also help us sustain a healthy planet. Our participation as the AI country partner at VivaTech 2026 reflects this very vision. For India, AI means all inclusive.
0: प्रधानमंत्री ने वैश्विक नवोन्मेषकों से भारत के साथ मिलकर काम करने और ऐसी नई तकनीक विकसित करने का आह्वान किया जो सबके लिए लाभकारी हो। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समझौता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देगा।
1: 2026 is a special year for India and Europe. At the beginning of the year, we concluded the historic India-EU Free Trade Agreement. This agreement will expand our trade and investment, and it will open up many pathways for the exchange of talent, technology and tourism.
0: इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। बैठक के बाद आकाशवाणी से बात करते हुए इन उद्यमियों ने भारत में बढ़ते अवसरों का उल्लेख किया। एक रिपोर्ट।
2: सेंट कोबा के चेयरमैन और सीईओ बेनवा बेजा ने कहा कि भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए एक बड़े विनिर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में उभर रहा है। मिस्त्राल एआई के सीईओ आर्थर मेंश ने कहा कि कंपनी भारतीय भाषाओं के लिए सहयोग बढ़ाने, एआई अनुसंधान साझेदारी का विस्तार करने और संप्रभु एआई पर गहरा सहयोग तलाशने की इच्छुक है। सीएमए सीजीएम के चेयरमैन और सीईओ रडॉल्फ सादे ने कहा कि भारत हरित जहाज निर्माण के केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
0: प्रधानमंत्री आज भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद श्री मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभी।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को स्वतंत्र और निष्पक्ष पुनर्परीक्षा आयोजित करने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 52 भारतीय संस्थान QS विश्वविद्यालय रैंकिंग 2027 में शामिल हुए हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली वैश्विक स्तर पर 118वें नंबर पर है। ये भारत का सर्वोच्च रैंक वाला संस्थान बना हुआ है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, बम्बई और मद्रास विश्व के शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में शामिल हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रैंकिंग में 52 भारतीय संस्थानों के शामिल होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में कई समीक्षा बैठकों की अध्यक्षता की। इन बैठकों में सहकारी बैंकिंग, जैविक उत्पादों और सहकारी निर्यात को मजबूत करने के राष्ट्रीय प्रारूप की समीक्षा की गई। सहकारी बैंकिंग से संबंधित पहलुओं की समीक्षा के दौरान श्री शाह ने प्रौद्योगिकी अपनाने, साइबर सुरक्षा, डिजिटल भुगतान और बेहतर सेवा वितरण के माध्यम से सहकारी बैंकिंग क्षेत्र की प्रगति की समीक्षा की। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गुर से मुलाकात की। इस दौरान आतंकवाद और मादक पदार्थों के खिलाफ दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा हुई। गृहमंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के प्रसारित कर रहा है। आज बात नक्सलवाद के उन्मूलन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
4: नरेंद्र मोदी सरकार की सुरक्षा अभियान, नक्सलियों की फंडिंग पर रोक और प्रभावित इलाकों में तेज विकास कार्यों की संयुक्त रणनीति के चलते देश को नक्सलवाद और माओवादी आतंक से मुक्त करने में सफलता मिली है। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सुरक्षा अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2022 में झारखंड के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया। इसी वर्ष फरवरी में ऑपरेशन डबल बुल के तहत झारखंड के गुमला, लोहरदगा और लातेहार जिलों को नक्सली प्रभाव से मुक्त कराया गया। ऑपरेशन स्टॉर्म के तहत झारखंड के सरायकेला, पश्चिम सिंहभूम और खूंटी जिलों में नक्सलियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। वर्ष 2025 में तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर चलाए गए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ने बचे हुए नक्सली कैडर को बड़ा झटका दिया। बस्तर के निवासी ने सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए

0: कहा कि सरकार ने देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का अपना वादा पूरा किया है।
1: तो उन्होंने जो प्रॉमिस किया वो पूरा करके दिखाया। तो मोदी सरकार को, अमित शाह जी को, विजय शर्मा जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ।
2: यहाँ पर आजकल कोई डर का माहौल नहीं है, कोई भी बच्चे यहाँ पे फ्रीली अपना काम कर पाते हैं।
0: इन अभियानों के परिणाम भी स्पष्ट रूप से दिखाई दिए हैं। वर्ष 2024 में 217 माओवादी मारे गए, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 256 हो गई। इस दौरान कई बड़े नक्सली नेता का भी खात्मा हुआ, जिनमें हिड़मा, कादरी सत्यनारायण रेड्डी, गणेश उइके और नक्सली महासचिव बसवराजू शामिल हैं। सुरक्षा अभियानों के साथ साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को भी तेजी से आगे बढ़ाया गया। झारखंड के गुमला जिले के रहने वाले टेंबू उराव ने कहा कि जब से मोदी सरकार बनी है तब से नक्सलवाद धीरे धीरे खत्म हो गया और लोग शांति और सद्भाव के साथ रह रहे हैं।
3: हमारा क्षेत्र पूरी तरह से उग्रवाद के गिरफ्त में था, तो वहाँ अमन चैन एकदम नहीं था। हम लोग को दिन में भी निकलने के लिए डर लगता था। 2014 के बाद जब से मोदी सरकार बना है तब से धीरे धीरे करके अब उग्रवाद समाप्त हो गया है और आज हम लोग अमन चैन और बढ़िया से जीवन यापन कर रहे हैं।
0: नक्सलियों की फंडिंग रोकने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने भी अहम भूमिका निभाई। इससे नक्सली संगठनों के संसाधनों और गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ा। विशेष अवसंरचना योजना के तहत स्पेशल फोर्स, राज्य खुफिया शाखाओं और जिला पुलिस को मजबूत बनाने के लिए 1761 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके अलावा नक्सलवाद के खात्मे के लिए प्रभावित क्षेत्रों में 596 सुदृढ़ पुलिस थानों का निर्माण भी किया गया। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।
2: ये आकाशवाणी है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक दस्तावेज और सशक्त ईरान का संदेश बताया है। उन्होंने कहा कि शांति केवल आपसी सम्मान के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने वैश्विक शांति के प्रति ईरान की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए गरिमा, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय सहयोग को बनाए रखने का भी आश्वासन दिया। यूक्रेन ने रूस के एक तेल शोधन संयंत्र पर हमला किया। एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार ऐसा हमला हुआ है। रूस के रोस्तोव क्षेत्र में भी अन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। रूस ने 550 से अधिक यूक्रेनी ड्रोन नष्ट किए। हमले के बाद मॉस्को के 4 हवाई अड्डों से उड़ानें रोक दी गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 21 जून को कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि कार्यक्रम के लिए 38,000 लोगों ने पंजीकरण करा लिया है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने आज आकाशवाणी चेन्नई में पद्मश्री से अलंकृत डॉक्टर आर श्रीधर को सम्मानित किया। डॉक्टर मुरुगन ने कहा कि डॉक्टर श्रीधर ने अपने करियर के दौरान रेडियो प्रोग्रामिंग में असाधारण नवाचार किए। आकाशवाणी और दूरदर्शन के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने भी डॉक्टर श्रीधर को भारतीय प्रसारण में क्रांतिकारी व्यक्ति बताते हुए उनकी सराहना की। बम्बई शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगातार पांचवें दिन बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 254 अंक बढ़कर 77,410 पर और निफ्टी 82 अंक बढ़कर 24,168 पर दर्ज हुआ। मिजोरम की सत्तारूढ़ जोरम पीपल्स मूवमेंट ने आज राज्यसभा में अपना पहला प्रतिनिधित्व हासिल कर लिया। पार्टी नेता के लालत लुआर गकीमा ने राज्य की एकमात्र सीट पर जीत हासिल की। मीनाक्षी हुड्डा चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मीनाक्षी ने पोलैंड की नतालिया कुचेवेस्का को 5-0 से हराया। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। वहीं ज्योति और जुगनू सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्का कर चुकी हैं। उधर मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अनमोल खारब और अस्मिता चलिहा महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मौसम विभाग ने इस सप्ताह पूर्वोत्तर भारत और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र तथा सिक्किम के कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश का

0: पूर्वानुमान व्यक्त किया है। बिहार, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में कल तक ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रौद्योगिकी में प्रगति तभी हो सकती है जब उसका लाभ सब तक पहुंचे। उन्होंने पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन में भारत के तेजी से हो रहे डिजिटल परिवर्तन में प्रौद्योगिकी के उपयोग का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने भारत में निवेश के अवसर और विस्तार योजनाओं पर फ्रांस के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ चर्चा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों का आकलन करने के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक बताया। और चीन में विश्व मुक्केबाजी कप में मीनाक्षी हुड्डा क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। कल क्वार्टर फाइनल में चार भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: नमस्कार। विविध भारती देश की सुरीली धड़कन पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। ला ला ला ला ला। सुरेश वाडकर और आशा भोसले की आवाजों में परिंदा फिल्म से ये गाना, खुर्शीद हलोरी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत।

कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं 1942 अ लव स्टोरी फिल्म से। कुमार सानू की आवाज में जावेद अख्तर के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत।

0: दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी। इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: ये आकाशवाणी है 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए पूर्वोत्तर भारत के तेज विकास और नई संभावनाओं पर पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय के सचिव संजय जाजू के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत।
1: नमस्कार श्रोताओं, पूर्वोत्तर भारत में बीते 12 वर्षों में जो विकास यात्रा का हमने एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण दौर देखा है, नए कीर्तिमान हमने देखे हैं, इस संबंध में आज हम कार्यक्रम में एक खास बातचीत आपके लिए लाए हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के सचिव श्री संजय जाजू। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि बीते 12 वर्षों में जो पूर्वोत्तर भारत की बदलती हुई तस्वीर को हमने देखा है, इस बदलती पिक्चर को आप कैसे देखते हैं और किस तरह से ये संभव हो पाया है, किन कदमों की बदौलत ही हो पाया है?
2: तो पूर्वोत्तर भारत में जो विकास हुआ है उसके मुख्यतः जो कारण है वो सस्टेन्ड फाइनेंशियल कमिटमेंट, दूसरा टारगेटेड प्रोग्राम डिलीवरी और तीसरा स्ट्रांग इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन। और ये सब जो कार्य हुआ है इसमें कोई एक सिंगल स्कीम जो पूरी कहानी को नहीं बताती है, ये मल्टीपल इनिशिएटिव्स का एक साथ समावेश होना, उनका कॉन्वर्जेंस होना जो ये चेंज दिखाई पड़ता है उसको दर्शित करता है। 10% ग्रॉस बजटरी सपोर्ट मैकेनिज्म जो 55 भारत सरकार के मंत्रालय और विभाग इम्प्लीमेंट करते हैं उसमें भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस वर्ष लगभग 1,00,000 करोड़ नॉर्थ ईस्ट में इन मिनिस्ट्रीज ने अपना व्यय किया है। साथ ही साथ ऐसे कई फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं, खासतौर पे नेशनल हाईवेज जहां पर 50,000 करोड़, SARDP नॉर्थ ईस्ट के तहत लगभग 4,800 किलोमीटर के कार्य पूरे हुए। साथ ही साथ भारतमाला परियोजना में 3,000 किलोमीटर के काम लगभग 70,000 करोड़ से की लागत में पूरे हुए। इन सभी कार्यक्रमों से रेल, रोड्स, एयरवेज, इनमें उल्लेखनीय इम्प्रूवमेंट आया है। आज नॉर्थ ईस्ट में जहाँ तक हमारी कनेक्टिविटी का सवाल है, कई कैपिटल्स अब कनेक्ट हो गई हैं। साथ ही साथ 17 एयरपोर्ट्स नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट जब मैं कहता हूं तो मैं सिक्किम को भी उसमें जोड़ रहा हूं, अष्टलक्ष्मी में राज्यों में 17 एयरपोर्ट्स फंक्शनल हैं। उड़ान के तहत 90 रूट्स ऑपरेशनल हैं और कृषि उड़ान स्कीम के तहत एयर फ्रेट चैनल को भी इम्प्लीमेंट किया गया है जिसके द्वारा पेरिशेबल एग्री प्रोड्यूस को फार्मर्स की इनकम्स बढ़ाने में उपयोग में लिया जा रहा है।
1: एक बहुत महत्वपूर्ण योजना रही है जो पूर्वोत्तर भारत के विकास में एक बहुत बड़ा रोल निभा रही है, उसके होलिस्टिक डेवलपमेंट में, पीएम डिवाइन। तो इस योजना के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे, कैसे इस योजना ने पूर्वोत्तर भारत के विकास को एक नई दिशा दिखाई है और कैसे ये योजना काम कर रही है?
2: पीएम डिवाइन स्कीम जो है ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और ये हाल ही में लॉन्च की गई है पिछली फाइनेंस कमीशन साइकिल में। बड़े प्रोजेक्ट्स जिनकी लागत समझ लीजिए एक इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स की 50 करोड़ से ज्यादा, 50 करोड़ से 500 करोड़ तक के बीच के बड़े प्रोजेक्ट्स, ताकि जो बड़ी गैप्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की उनको पूरी की जा सके, उस पर्पस से पीएम डिवाइन को लॉन्च किया गया। और इस योजना के अंतर्गत प्रोजेक्ट्स जो हैं वो राज्य सरकार के साथ में कंसल्टेशन करके लॉन्च किए जाते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे उनकी बहुत डिटेल्ड मॉनिटरिंग करते हैं। ये कोशिश करते हैं कि ये प्रोजेक्ट्स जो हैं विभिन्न सेक्टर्स में रहें, जैसे हेल्थ केयर, टूरिज्म, एजुकेशन, IT पार्क्स, रूरल लाइवलीहुड, वैल्यू चेन प्रोजेक्ट्स। और इसमें ये कोशिश की जाती है कि सारे प्रोजेक्ट्स का साइट सिलेक्शन, एनवायरमेंटल सेफगार्ड्स और टाइमली मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जा सके, ताकि ये प्रोजेक्ट्स अपने डिजाइंड ऑब्जेक्टिव्स को हासिल कर सकें।
1: आपने हाल ही में अभी जून की शुरुआत में ही पूर्वोत्तर भारत ने पीएम डिवाइन योजना के तहत सिक्किम का एक दौरा किया था और इसमें एक स्काईवॉक प्रोजेक्ट का निरीक्षण भी किया था। थोड़ा हमें बताएं हमारे श्रोताओं को कि कैसे ये परियोजना धरातल पर, जमीन पर उतरकर काम कर रही है और कैसे एक नए तरह से इस योजना से विकास को देखा जा रहा है और कैसे इससे और भी चीजों को, जैसे पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है।
2: कई राज्यों में, इनफैक्ट ऑल दी 8 अष्टलक्ष्मी राज्यों का टूरिज्म पोटेंशियल बहुत व्यापक है और उस पोटेंशियल ऑफ डोनर भी अपने फंड्स को इस्तेमाल करती है और ऐसे कई प्रोजेक्ट्स नॉर्थ ईस्ट में इम्प्लीमेंट किए गए हैं।

0: मालेडुंगा में जो ये स्काई वॉक की आप बात कर रहे हैं, अपने आप में एक बहुत ही यूनिक और अनूठा ये एक प्रोजेक्ट है। हाल ही में वहाँ मैं जब गया था तो मैं आश्चर्यचकित था कि जो ना केवल जो स्काई वॉक वहाँ पे तैयार हो रहा है, पर जो ऑलरेडी वहाँ पर एग्जिस्टिंग जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है रोपवे का, वो भी अपने आप में एक बहुत ही अनूठा है। ऑलमोस्ट 45 डिग्रीज का वहाँ पर एक क्लिफ के ऊपर वो स्काई वॉक जा रहा है। मुझे लगता है कि विश्व में इतनी ज़्यादा लीनियर लेंथ और इतना ज़्यादा ऑल्टीट्यूड क्रॉस करने वाली ये रोपवे शायद ही कहीं विश्व में हो। डेफिनेटली ये टॉप 1-3 में कहीं ना कहीं इसका उल्लेख होगा। और ये सब स्कीम्स इसलिए हैं ताकि वहाँ पर लोकल जॉब क्रिएशन हो सके, फुटफॉल बढ़ सके, टूरिज्म का बहुत एडवांटेज मिलता है लोकल एम्प्लॉयमेंट और लोकल जॉब क्रिएशन में। तो ऐसे कई प्रोजेक्ट्स हर जगह पर इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डोनर के द्वारा सिग्नेचर टूरिज्म सर्किट्स भी इम्प्लीमेंट की जा रही है। 2 प्रोजेक्ट्स मेघालय में सोरा सर्किट और माताबारी सर्किट त्रिपुरा में ऑलरेडी सैंक्शन की गई है, उसके प्रोजेक्ट्स अंडर इम्प्लीमेंटेशन है। और उन सब प्रोजेक्ट्स से ये कोशिश की जा रही है जो हमारे माननीय मंत्री जी मिनिस्ट्री ऑफ डोनर में कहते हैं कि एक्सपीरियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये इंफ्रास्ट्रक्चर अकेले नहीं बन रहा है। जब वो एक पर्यटक अपने फ्लाइट से या ट्रेन से उतरता है तो उसका जो पहला कदम पड़ता है, चाहे एक लोकल टैक्सी हो या लोकल टैक्सी ड्राइवर के साथ में उसका इंटरेक्शन हो, या बाद में होटल में उसकी, चाहे वो 5-स्टार हो या 3-स्टार हो, चाहे वो एक छोटी सी लॉज हो या होम स्टे हो, वहाँ जो उसका इंटरेक्शन होता है, उस इंटरेक्शन में एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है फैक्टर, साथ ही साथ गाइड्स। और इसीलिए ऐसे कई प्रोजेक्ट्स को वहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है ताकि हमारे सारे अष्टलक्ष्मी राज्यों में कम्युनिटी लेड लाइवलीहुड को हम प्रमोशन दे सकें, खास तौर पे सस्टेनेबल टूरिज्म को प्रमोट कर सकें। और हाल ही में इस बजट में बुद्धिस्ट सर्किट के लिए भी एक घोषणा हुई है, उसके तहत भी आने वाले समय में एक वृहद कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है जिसका इम्प्लीमेंट अष्टलक्ष्मी राज्यों में होगा।
1: आपने जैसे कि बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो रहे विकास के बारे में बताया, लेकिन पूर्वोत्तर भारत एक और बीड़ा उठा रहा है, वो है पर्यावरण और सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे हो, इस दिशा में वो काम कर रहा है। ग्रीन हब के तौर पर बहुत सारे स्टेट्स उभर रहे हैं, सिक्किम के उदाहरण को हमने देखा। कैसे पूर्वोत्तर भारत के राज्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एक मिसाल छोड़ रहे हैं और ग्रीन हब के तौर पर, ऑर्गेनिक फार्मिंग के तौर पर कैसे सामने आ रहे हैं?
0: हमारे अष्टलक्ष्मी राज्यों का बहुत योगदान है, ना केवल भारत के लिए, मैं तो कहूँगा पूरे विश्व के लिए, कि जो यहाँ पर ट्रेडिशनल सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हैं, जो यहाँ की बायोडायवर्सिटी है, जो यहाँ की ऑर्गेनिक फार्मिंग की टेक्निक्स हैं, यहाँ पर जो कम्युनिटी बेस्ड फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, यहाँ पर जो ओवरऑल एक इको टूरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, ये सब मॉडल्स हमारे सारे ग्रीन मॉडल्स हैं। और इसीलिए कोशिश की जा रही है कि जब जो USP डेवलपमेंट का हमारा प्रोजेक्ट है, उसमें जो यहाँ की प्रीमियम वेराइटीज़ हैं, चाहे वो लेकाडोंग टर्मेरिक हो मेघालय में, या क्वीन पाइनएप्पल हो त्रिपुरा का, या मिजोरम की जिंजर हो, या ऑर्गेनिक स्टेट सिक्किम हो, ये सारी कार्यक्रम जो है, इनका जो मूलभूत आधार है वो सस्टेनेबल एंड डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है। तो ये सारे कार्यक्रम ये डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं कि ग्रीन ग्रोथ हमारे अष्टलक्ष्मी राज्यों के लिए नहीं, विश्व के लिए ही बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है, ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक स्टूवर्डशिप को कंबाइन किया जा सके।
1: आपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की और अष्टलक्ष्मी शब्द से हमारे श्रोताओं को बताया, तो हम ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि सरकार का फोकस है कि पूर्वोत्तर भारत पर्यटन और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट का भी एक बड़ा हब बने, इस दिशा में बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं और पूर्वोत्तर भारत में इस दिशा में काम हो रहा है, तो कैसे आप बताना चाहेंगे कि इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्रीज कितना अहम रोल अदा कर रही है पूर्वोत्तर भारत के डेवलपमेंट में, और सरकार इसे कैसे देख रही है?
0: जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा नॉर्थ ईस्ट में तैयार हो रहा है, उसी के अनुपात में अब बहुत ज़रूरी है कि प्राइवेट सेक्टर और बड़ी कंपनीज और छोटी MSMEs भी जाएं और अपना इन्वेस्टमेंट्स करें। बहुत पोटेंशियल है, ना केवल एग्रीकल्चरल वैल्यू एडिशन में, बट टूरिज्म में, साथ ही साथ चाहे सीमेंट इंडस्ट्री हो, चाहे हाइड्रो पावर हो, हर सेगमेंट में बहुत पोटेंशियल है। तो उसके लिए एक नॉर्थ ईस्ट का इन्वेस्टर समिट लास्ट ईयर हुआ था, लगभग 4.5 लाख करोड़ के कमिटमेंट्स, MOUs और लेटर ऑफ इंटेंट उसमें हासिल हुए थे। उन सभी के इम्प्लीमेंटेशन को भी बड़ी बारीकी से राज्यों के साथ में मॉनिटर किया जा रहा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स आएँ और इकोनॉमिक और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ सकें। कुछ स्टेट्स अपने स्तर पर भी सिंगल विंडो पोर्टल्स, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए जो भी परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए अपना कार्य कर रहे हैं, उससे भी आने वाले समय में अष्टलक्ष्मी राज्यों को बहुत फायदा होगा।
1: एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है पूर्वोत्तर भारत के विकास में, वो है जो बीते सालों में शांति स्थापित हुई है, प्रॉस्परस एक हमने पूर्वोत्तर भारत को होते हुए देखा है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका रही है कि पूर्वोत्तर भारत में जो पहले अशांति और हिंसा थी वो अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। कैसे गृह मंत्रालय के साथ मिलकर आपके मंत्रालय ने इस पर काम किया है और कैसे जो विवाद थे, जो हिंसा थी, अशांति थी, उसको सुलझाने में बीते सालों में मदद मिली है और कैसे इससे और विकास को तेजी मिल रही है?
0: गृह मंत्रालय ने कोऑर्डिनेट किया है समस्त राज्यों के साथ में, सेंट्रल एजेंसीज के साथ में, और उसी का परिणाम है कि आज शांति है। और उस शांति का जो बेसिस है वो एक सस्टेन्ड पॉलिटिकल एंगेजमेंट है, डायलॉग्स हैं और खास तौर पे एग्रीमेंट्स हैं। उन एग्रीमेंट्स के टाइमली इम्प्लीमेंटेशन के लिए डोनर मिनिस्ट्री का बहुत मेजर रोल है। उन डेवलपमेंट पैकेजेस को इम्प्लीमेंट करना जो एग्रीमेंट का पार्ट है, खासतौर पे लाइवलीहुड से रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, और ये इंश्योर किया जाए कि सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट्स उन कम्युनिटीज तक पहुंचे जिन्होंने इस एग्रीमेंट में अपने योगदान दिए हैं। और ये सारे इनिशिएटिव्स हमें हेल्प करेंगे आने वाले समय में वहां पर शांति को बरकरार रखने के लिए और लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी नॉर्थ ईस्ट की इन एग्रीमेंट्स के का एक मेजर आउटकम के तौर पर निकलेगा।
1: पहले कभी जो लुक ईस्ट का नजरिया था पूर्वोत्तर भारत का, वो एक्ट ईस्ट में सरकार ने बदला है, तो कैसे स्ट्रेटेजिक तौर पर इसको आप देखते हैं, इस रणनीति को कैसे सरकार पूर्वोत्तर भारत को इस नजरिए से देख रही है?
0: तो इस सिग्नल का जो अर्थ है वो ये है कि इट इज अ मूवमेंट फ्रॉम पैसिव डिप्लोमेटिक ओरिएंटेशन टू अ प्रोएक्टिव इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट विद द ईस्ट, एंड हियर नॉर्थ ईस्ट इज लाइंग एट द हार्ट ऑफ द एक्ट ईस्ट पॉलिसी। And it means that by strengthening the physical connectivity, promoting cross-border trade, people-to-people links, and integrating the region into a regional value chain with the Southeast Asia. And I think all the state-specific initiatives actually take us to that particular paradigm. And it's also essential that this approach recognizes Northeast as both a national asset as well as a gateway to external markets. And it also helps us balance the strategic and development priorities.
1: So, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय का आप आने वाले समय में किस तरह का कुछ विजन के बारे में बताना चाहेंगे और कैसे जो आज हमारे जो 8 राज्य हैं वो आने वाले समय में विकसित भारत में अपना एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करने वाले हैं?
0: हाल ही में नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का बैठक हुआ था शिलोंग में। माननीय होम मिनिस्टर, गृह मंत्री जी, हमारे डोनर मिनिस्टर, साथ ही साथ समस्त राज्यों के गवर्नर्स एंड चीफ मिनिस्टर्स ने उस बैठक में हमें शामिल हुए थे। और उसका एक सबसे मेजर जिस बार जो योगदान रहा है वो 8 राज्यों में को मिलाकर 8 हाई लेवल टास्क फोर्सेस बनाई गई थी जो चीफ मिनिस्टर्स के द्वारा हेडेड थी, और उनमें दूसरे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स को भी शामिल किया गया था। पहली बार ये प्रयत्न किया गया था कि हर राज्य अपने खुद के राज्य को ही ना देखे, वो पूरे रीजन को देखे, और उस रीजन से रिलेटेड रिकमेंडेशंस इन हाई लेवल टास्क फोर्सेज में आई है। साथ ही साथ एक विजनिंग एक्सरसाइज हुई है जो 2043 का विकसित भारत का जो लक्ष्य है उसमें विकसित नॉर्थ ईस्ट का क्या योगदान रहेगा वो भी इस लक्ष्य का पार्ट है। अब ये सारी हाई लेवल टास्क फोर्सेज जो बनी है इनका इम्प्लीमेंटेशन आने वाले समय में समस्त राज्यों को मिलाकर, यूनियन मिनिस्ट्रीज को मिलाकर, स्टीयरिंग ग्रुप्स के द्वारा होगा, और जिससे हमारे अष्टलक्ष्मी राज्यों में आने वाले समय में ऑलरेडी विकास की जो गति है वो बहुत तेज है। हर स्टेट डबल डिजिट जीडीपी ग्रोथ हासिल कर रहा है, हर स्टेट 5-5, 6-6 साल में अपने आप को डबल कर रहा है इकोनॉमिक साइज में। तो ये सब और आने वाले समय में आगे बढ़ सके और नॉर्थ ईस्ट का जो कंट्रीब्यूशन ओवरऑल नेशनल जीडीपी के कंट्रीब्यूशन में और आगे जा सके, इस सब का इसमें प्रयत्न पूरा शामिल है। तो आने वाले समय में हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा फोकस जो है इट विल रिमेन ऑन कॉन्वर्जेंस, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड ग्रीन डेवलपमेंट, सो दैट द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स आर इंटीग्रेटेड इनटू इंडियाज ग्रोथ स्टोरी, एंड व्हेन दे डू दैट दे ऑल्सो रिटेन देयर यूनिक आइडेंटिटी।
1: थैंक यू सो मच सर,
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बारह साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे पूर्वोत्तर भारत के तेज विकास और नई संभावनाओं पर पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के सचिव संजय जाजू के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
3: दिस इज आकाशवाणी। इन दिस स्पेशल सीरीज 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के. नाउ वी ब्रिंग यू एन इंटरव्यू विद आर मुकुंदन, प्रेसिडेंट कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII.

0: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
1: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
0: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
1: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
0: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
1: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
3: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।

0: विविध संगीत में अभी आप सुन रहे थे नूह नकवी की लिखी गजल, आवाज थी पंकज उदास की।
1: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
2: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
1: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
2: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
1: आकाशवाणी से।
3: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए। ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
2: साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
1: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
2: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
3: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
0: लीजिए अब सुनिए कुमार सानू और सोनाली वाजपेयी की आवाज में रानी मलिक का लिखा ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे अनवर फरुखाबादी का की लिखी ये गज़ल, आवाज़ थी पंकज उदास की। कार्यक्रम के अंत में आइए अब सुने कुमार सानू और अलका याग्निक का गाया ये गीत।

इस गीत के साथ ही विविध संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है। 10:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

आपकी फरमाइश सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। दोस्तों, हमेशा की तरह हाजिर हैं हम आज भी आज का ये कार्यक्रम लेकर, और इस कार्यक्रम के लिए हमारे हाथ में बहुत सारे पत्र हैं, तो आइए पत्रों का सिलसिला शुरू करें। सबसे पहला पत्र है गौशाला पारा रायगढ़ से विनोद कुमार गुप्ता, रीना, नेहा, ईशु और अंशु गुप्ता का। हमारे ये साथी हैं कुल्हारी कोट पांडुका से नरोत्तम कश्यप, नीतू कश्यप, मोहनीश और अनुराग कश्यप। सुंदरखेड़ राजमाता नगर बुलढाणा महाराष्ट्र से हैं नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति नरवाड़े, आकांक्षा और आकाश कुमार। रुआ बांधा शनिचरी बाजार भिलाई से हैं सुशील जैन, कल्पना जैन, सेया जैन, सौरभ जैन, शौर्य जैन और शुभम जैन। आप सभी साथी सुनना चाहते हैं फिल्म स्वीकार किया मैंने में लता मंगेशकर को, गीतकार हैं निदा फाजली और संगीत है उषा खन्ना का। तो आइए सुने आप सभी की फरमाइश पर ये गीत।

कार्यक्रम आपकी फरमाइश में अब बारी है आज के दूसरे गीत की, और इस गीत के लिए फरमाइश आई है छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश, दतरेंगी से विश्राम यदु, पार्वती यदु, प्रतिमा रीना और लक्ष्मीना यदु, यहीं से हैं लालपुर से लुकेश यदु और समीर यदु, राजीव गांधी नगर रायगढ़ से हैं मनोज कुमार यादव, सोनम, विशाल, ज्योति, गणेशी, राधी, गोपी और रामलाल यादव, नेहरू वार्ड भाटापारा से प्रेमलाल साहू, भूपेंद्र साहू, दुष्यंत साहू और राघवेंद्र साहू, अंतिम पत्र है भुरसुदा से भगवानी संतोषी सेन, चंद्रप्रकाश, नेहा सेन, गजेंद्र, चिराग सेन और इनके परिवार के सभी सदस्य। आप सभी सुनना चाहते हैं मोहम्मद रफ़ी का गाया गीत, रचना है राजेंद्र कृष्ण की, संगीत शंकर जयकिशन का है और फिल्म का नाम है धरती।

कार्यक्रम का तीसरा गीत हम ले रहे हैं लता मंगेशकर का गाया हुआ फिल्म अनुराग से। शब्द रचना है आनंद बख्शी की, धुन बनाई है SD बर्मन और फरमाइश है हमारे आप सभी साथियों की, मिट्ठू मुड़ा चौक, दुर्गा चौक रायगढ़ से गेंदलाल श्रीवास, कौशल श्रीवास, लक्ष्मी बरेठ, मनोज यादव, शिव कुमारी, संजय कुमार, दीपक कुमार और गेंदु भाई। जतुका किशनपुर से हैं आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, आलम दिलकश और चांदनी राज। हटरी चौक बिलाईगढ़ से खीकराम दिवांगन, रेनू दिवांगन, रजनी दिवांगन और पिंकी दिवांगन। लक्षणपुर से हैं सरोजनी रजक, सीमा रजक, फनक रजक, पल्लवी रजक, रश्मि साहू और गीता साहू। जतुका किशनपुर से आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, शबाना आलम, चांदनी नाज। सिराजपुर गणेशपुर से वकील राही, फिरोज आलम, नाज प्रवीण और अर्श बाबू। इंदिरा नगर रायगढ़ से हैं शेख अब्दुल सलीम, बेगम परवीन बानो, अब्दुल जमीर, मोहम्मद अलीम, आसिफ नईम राजा। लाल टंकी चौक रायगढ़ से चेतन दास, शीतल दास, सुशीला साहित्या, मनोज, मुकेश और अंकित साहित्या। बाजार पारा बेमितरा से भाई भरत लाल सिन्हा, लव कुमार सिन्हा और बेटी लक्की सिन्हा। तो आइए सुने आप सभी की फरमाइश पर अनुराग फिल्म से ये गीत।

फिल्मी गीतों के फरमाइशी कार्यक्रम आपकी फरमाइश की अगली कड़ी में आइए सुनते हैं फिल्म मुगले आजम का गीत लता मंगेशकर और शमशाद बेगम की आवाजों में। फरमाइश है गरीब नवाज कॉलोनी वंदना नगर इंदौर से रेखा संतोष रघुवंशी, शोभा भूपेंद्र रघुवंशी, बबीता सुरेंद्र रघुवंशी, पूजा विक्की रघुवंशी, स्वाति प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी, गणेश कार्तिक खर्चे, संजना परी खर्चे और ललिता नारायण खर्चे। बोरसुदा से भगवानी संतोषी सेन, चंद्रप्रकाश नेहा सेन, गजेंद्र चिराग सेन और सभी साथी। ताजपुर मोरबा से भाई कारी राय कारी, श्रीमती मीना कारी, पुंज राज आर्यन, आरती पुंज, आकर्षण पुंज, जयश्री, पिंकी, रिंकी, रिक्की, नीतू, मोहम्मद फारूक, ललन मिश्रा। ढोली साकरा से जयंत कुमार वैरागी। सेक्टर 7 मोहाली चंडीगढ़ से हैं टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा। कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और सभी साथी। महामाया पारा ग्राम दरचुरा से फिरंता साहू, दुलौरीन साहू, कामेश्वरी कुमारी और प्रीतम कुमार साहू।

और अब बारी है आज के कार्यक्रम के अंतिम गीत की, यानी पांचवें नंबर के गीत की। और इस गीत के लिए हमारे पास में बहुत सारे पत्र हैं। पहला पत्र हम लेते हैं छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र वर्मा। शिवाजी चौक राजिम से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव। अमरपुर पेंड्रा से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लबी श्रीवास्तव। ग्राम दरचुरा से ददवा साहू, भोरी साहू, रेखा और मोतीलाल साहू। आदर्श नगर मलोट से हैं राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरव शर्मा, शाइना शर्मा और निवान शर्मा। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हैं हरदेव मीका, बलविंदर वीरक, जयतेग वीरक और मीका वीरक। श्री झूलेलाल कॉलोनी रायगढ़ से लक्ष्मण वाधवानी, श्रीमती विमला वाधवानी, मास्टर हर्ष, खुशी और शुभम वाधवानी। यहीं से हैं कन्हैया लाल तीर्थानी। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहराज जबा जहां आप हैं आज़ाद।

नगर लक्सर हरिद्वार से श्री श्रृंगी ऋषि महानदी सिहावा पर्वत अंचल ग्राम बेलर गांव से हैं मिथिलेश देवांगन मधु देवांगन हिमांशु और अंकित देवांगन सुरेश कुमार सारथी भाई कमलकांत सारथी वीरेंद्र ब्रिजकांत सारथी आप सभी हैं बेमेतरा से मयंक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा चंद्रकांत वर्मा सीमा शारदा और दामिनी वर्मा और ये गीत है फिल्म दाग से किशोर कुमार की आवाज़ में गीत लिखा है साहिर ने और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

दोस्तों, इस कार्यक्रम में आप भी अगर अपनी पसंद के गीत सुनना चाहते हैं तो हमें पत्र और मेल के माध्यम से लिखें। और अब इस कार्यक्रम से मुझे दीजिए इजाज़त। आप सुनते रहिए आकाशवाणी रायगढ़। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी फरमाइश। एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। रात्रि के 11 बजने वाले हैं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस में वीवाटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
1: The message I shared then at VivaTech 2021, where convention fails, innovation can help. India has been going through a rapid transformation that is powered by technology. From creating the world's largest digital identity system to the world's largest digital payment platforms. We are using technology at a massive scale for financial inclusion, education, telemedicine, agriculture and more.
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी से तभी प्रगति हो सकती है जब उसका लाभ सभी तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि उथल पुथल भरे इस दौर में प्रौद्योगिकी का लाभ सभी को मिलना चाहिए। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये समझौता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देगा। इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। बैठक के बाद आकाशवाणी से बात करते हुए इन उद्यमियों ने भारत में बढ़ते अवसरों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पेरिस में भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत के प्रति भारतीय समुदाय का गहरा लगाव और भारत फ्रांस के मजबूत संबंधों में उनका योगदान प्रशंसनीय है। श्री मोदी ने कहा कि हर देश ऐसे सहयोगी तलाश रहा है जिस पर दीर्घकाल तक भरोसा किया जा सके। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में भारत विश्व में एक विश्वसनीय साझेदार के तौर पर उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल फ्रांस यात्रा के मुख्य नतीजों की जानकारी दी है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने पेरिस में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा तीन मुख्य स्तंभों, व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर केंद्रित रही। उन्होंने बताया कि भारत और फ्रांस ने मिलकर नीस में भारत इनोवेट्स पहल शुरू की है जो भारतीय डीप टेक स्टार्टअप्स के लिए वैश्विक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका पर आज अपना फैसला सुरक्षित रख लिया जिसमें नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम की सेवा फिलहाल रोकने के सरकार के फैसलों को चुनौती दी गई है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने ईरान और अमरीका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक दस्तावेज और सशक्त ईरान का संदेश बताया है। उन्होंने कहा कि शांति केवल आपसी सम्मान के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। यूक्रेन ने रूस के एक तेल शोधन संयंत्र पर हमला किया है। एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार ऐसा हमला हुआ है। रूस के रोस्तोव क्षेत्र में भी अन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। रूस ने 550 से अधिक यूक्रेनी ड्रोन नष्ट कर दिए। हमले के बाद मॉस्को के 4 हवाई अड्डों से उड़ानें रोक दी गईं। मीनाक्षी हुड्डा चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मीनाक्षी ने पोलैंड की नतालिया कुचेवस्का को 5-0 से हराया। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। वहीं ज्योति और जुगनू सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्का कर चुकी हैं। उधर मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अनमोल खरब और अस्मिता चलिहा महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

भोर सुहानी प्रोग्राम सुन रहे हैं आप सुरभि के साथ और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। जिंदगी सिर्फ बोलने में नहीं सुनने में भी खूबसूरत होनी चाहिए। जब हम दूसरों को समझना सीख जाते हैं तब रिश्ते मजबूत होने लगते हैं और दिलों के बीच की दूरियां कम होने लगती हैं। हर मुलाकात और हर बातचीत कुछ नया सिखा कर जाती है, इसीलिए जब भी किसी से मिलिए या बातें कीजिए, खुले दिल से उसे सुनिए भी और मुस्कुराते हुए आगे बढ़िए।